मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 15वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 8 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है आज की ये सभा।

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आज खेत खलियान कार्यक्रम में चर्चा का विषय है गेंदा की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। विशेषज्ञों की सलाह है कि गुलाब की फसल से शुद्ध लाभ दो गुना से अधिक है, लेकिन गेंदा की खेती यदि आप करते हैं तो वो चार गुना तक लाभ दे सकता है। एक अनुसंधान के अनुसार गेंदे के एक हेक्टेयर खेत से औसतन 45,000 रुपये की कमाई की जा सकती है, जबकि धान से 27,000 रुपये और अरहर से 12,000 रुपये ही प्राप्त होते हैं। गेंदा की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके फूल लंबे समय तक रहते हैं, जिसके कारण इसकी खेती व्यावसायिक ढंग से लाभदायक है। उत्तर भारत में गेंदा की तीन फसलें ली जाती हैं, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शीतकालीन। गेंदा की आप कुछ किस्में जो हैं उन्हें आप उगा सकते हैं, उनमें अफ्रीकन गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, फ्रेंच गेंदा प्रमुख हैं। इस समय मौसम चल रहा है, गेंदा के पौधे आप लगा सकते हैं। गेंदा की खेती के लिए बलुई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 7 से 7.5 हो अच्छी होती है। मिट्टी में जल निकासी एवं वायु संचार का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। गेंदा के पौधे की वानस्पतिक बढ़वार के लिए औसतन तापमान अच्छा होता है, औसत तापमान अच्छा होता है। तापमान बढ़ने से पौधे की बढ़वार रुक जाती है और फूलों का आकार छोटा होने लगता है। भूमि को आप 2-3 बार गहरी जुताई करके उसमें अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें और फिर छोटी छोटी क्यारियाँ एवं सिंचाई तथा जल निकास की नालियाँ भी बना दें। गमले में भी गेंदा के पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए, सिंचाई आप हल्की दें। गेंदा दो विधि से बोया जा सकता है, एक बीज द्वारा, दूसरा कलम कटिंग द्वारा। बीज द्वारा उगाए गए पौधे लंबे, बढ़िया और ज़्यादा पैदावार देते हैं, इसलिए गेंदे की व्यावसायिक खेती बीज द्वारा उगाए गए पौधों से ही की जाती है। इसके बीज शीघ्र और आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। गेंदे की नर्सरी तैयार करने के लिए भूमि को अच्छी तरह से 30 सेंटीमीटर गहरा खोद लेना चाहिए। उसमें पत्ती की सड़ी खाद या गोबर की खाद आप मिलाकर मिट्टी को भुरभुरी कर लें। इसके बाद उसमें नर्सरी क्यारियां 15 सेंटीमीटर ऊंची, 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 से 6 मीटर लंबी बनाते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 700 से 800 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज बोने से पूर्व नर्सरी में 0.3% की दर से कैप्टान का भुरकाव करने से पौधे कम से कम नष्ट होते हैं। क्यारियां तैयार करते समय बीज को 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर गहराई पर बोते हैं। इसके बाद बीजों को हल्की मिट्टी, पत्ती एवं गोबर की छनी हुई खाद से हल्के मिश्रण से ढक देते हैं। गेंदे की खेती वर्ष में 3 बार ली जाती है, इसलिए इसके लगाने का समय भी 3 बार होता है। जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर में आप उपयुक्त ढंग से पौधे लगा सकते हैं, तो इस समय आप अपने खेत में पौधे की रोपाई कर सकते हैं। खेत की तैयारी के समय 300 क्विंटल गोबर की खाद, इसके अलावा 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डालें। यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। गेंदा एक ऐसा पौधा है जिसे सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो आप वर्षा ऋतु में जब वर्षा हो उस समय सिंचाई तो नहीं करनी है, लेकिन जाड़ों में 7 से 10 दिन के अंतर पर और गर्मी में 1 सप्ताह पर आप सिंचाई करते रहें। पौधे के ऊपरी भाग को तोड़ना गेंदा के पौधे में पिचिंग कहलाता है। इससे पौधे में अधिक शाखाएँ निकलती हैं, जिससे फूलों की पैदावार भी ज़्यादा होती है। यह क्रिया रोपाई के 40 दिन बाद आप कर लें। जैसा कि हमने पहले कहा कि नर्सरी में कुछ दवाएं डाली जाती हैं जिससे कि रोग जो है वो नहीं होता है, क्योंकि गेंदा में एक ऐसा फफूंद जनित रोग लगता है कि अंकुरण के समय ही पौधे जमीन पर गिरने लगते हैं, तो इसके लिए आप कैप्टान दवा से उपचारित करके बीजों को बोवें। यदि यह रोग हो जाए तो 0.3% बेसिकॉल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। कली सड़न रोग भी गेंदा के पौधे में होता है, तो उसके लिए भी आपको रोकथाम करनी है। कभी आप देखते हैं कि गेंदा के पौधे की पत्तियां जो है वो सिकुड़ने लगती हैं, तो लाल मकड़ी के कारण ऐसा होता है। आप पत्तियों की निचली सतह पर देखेंगे तो लाल मकड़ी दिखाई देगी। यदि बड़े पैमाने पर आप खेती किए हैं तो कैल्थिल दवा का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप गमले में लगाए हैं तो पाइप से जो पानी आप देते हैं तेज धार पत्तियों पर डालें पानी की, तो इससे जो है जो कीड़े हैं या जो मकड़ी है वो नीचे गिर जाती है और पौधा आपका सुरक्षित रहता है।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए अब सुनें दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।
2: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
4: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल

0: अपनी 2 दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपके लिए प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
2: मनुष्य की जीवन पद्धति, उसके आचार विचार, उसके रहन सहन पर यूं तो अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है, परंतु सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उसकी विचारधारा का, जीवन और जगत के प्रति उसके दृष्टिकोण का, जिसको वह दृढ़ता पूर्वक अपनाता है। भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दो ऐसी ही विचारधाराएं हैं जिनका मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये दोनों विचारधाराएं तत्व मीमांसीय सिद्धांत हैं, जो एक दूसरे के विरोधी हैं। भौतिकवाद जहां भूत या जड़ तत्व को मूल तत्व मानता है, वहीं आध्यात्मवाद चेतना, मन, आत्मा या परमात्मा को परम तत्व मानता है। जो व्यक्ति भौतिकवादी विचारधारा को अपनाता है, वह भौतिक या शारीरिक सुख सुविधा को, इंद्रिय सुख को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है, और आध्यात्मवादी विचारधारा को अपनाने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है। वर्तमान युग भौतिकवादी युग है। भूमंडलीकरण और तज्जन्य उपभोक्तावाद ने भौतिकवाद को और सुदृढ़ कर दिया है। परंतु यहां एक प्रश्न उठता है, क्या भौतिक सुख प्राप्त कर हम वास्तव में सुखी होते हैं? महात्मा गांधी ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में इस प्रश्न का एक अत्यंत सटीक उत्तर दिया है। उन्होंने लिखा है, मनुष्य की वृत्तियां चंचल हैं, उसका मन बेकार की दौड़ धूप किया करता है। उसका शरीर जैसे जैसे ज्यादा दिया जाए वैसे वैसे ज्यादा मांगता है, ज्यादा लेकर भी वह सुखी नहीं होता। भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती जाती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने भोग की हद बांध दी। गांधी जी ने यह भी बतलाया कि अगर हम अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं तो हम वास्तव में नैतिकता का ही अनुपालन करते हैं। नैतिकता का अनुपालन कर्तव्य

0: पालन से भिन्न नहीं है और कर्तव्य पालन के लिए इंद्रिय संयम आवश्यक है। इंद्रिय संयम से इच्छाओं पर नियंत्रण होता है और इच्छाओं पर नियंत्रण कर्तव्य पथ को प्रशस्त करता है। यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करे तो फिर उनकी पूर्ति के लिए वह किसी भी मार्ग को अपनाने में कोई संकोच नहीं करेगा। परिणामतः उसे अपवित्र साधनों को अपनाने से कोई परहेज नहीं होगा। और जैसे ही अपवित्र साधनों का सहारा लेते हैं, हम नैतिकता के मार्ग से च्युत हो जाते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित के विचार का तब हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता। हम येन केन प्रकारेण अपनी इच्छाओं को तृप्त कर लेना चाहते हैं। गांधी जी इसीलिए साध्य से अधिक साधन को महत्व देते थे। उनका मानना था कि अपवित्र साधन पवित्र साध्य को भी अपवित्र बना देता है, दूषित कर देता है। हम सदैव पवित्र साधनों को ही अपनाएं। इसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि मनुष्य की शारीरिक जरूरतें पूरी करने का, यहां तक कि उसकी संकुचित बौद्धिक जरूरतें पूरी करने का भी एक हद के बाद अंत होना चाहिए, क्योंकि इस मर्यादा को लांघने पर वह प्रयत्न शारीरिक और बौद्धिक विलास का रूप ले लेता है। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि अभ्यास से, आदत डालने से आदमी अपनी जरूरतें घटा सकता है, और ज्यों-ज्यों उन्हें घटाया जाता है त्यों-त्यों वह सुखी, शांत और सब तरह से तंदुरुस्त होता जाता है। उनका स्पष्ट मानना था कि जो चीज लाखों लोगों को नहीं मिल सकती, उसे लेने से हम भी दृढ़ता पूर्वक इनकार कर दे। त्याग की यह शक्ति हमें कहीं से एकाएक नहीं मिल जाएगी। पहले तो हमें ऐसी मनोवृत्ति पैदा करनी चाहिए कि हमें उन सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करना है जिनसे लाखों लोग वंचित हैं, और उसके बाद तुरंत ही अपने इस मनोवृत्ति के अनुसार हमें शीघ्रता पूर्वक अपना जीवन बदलने में लग जाना चाहिए। सच्ची सभ्यता।
1: चिंतन मनन का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। आइए अब आनंद लें भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। आरंभ करेंगे देश वंदना के साथ।

प्रातःकाल की पहली किरण के साथ जब हमारी आंखें खुलती है तो हमारे मन में पहले विचार की जो किरण आनी चाहिए वो ईश्वर की किरण आनी चाहिए, जिससे हमारा तन मन पवित्र हो जाए। हमारे मन में केवल और केवल ईश्वर के ही विचार आने चाहिए प्रातःकाल में, और हमें अपने दिन की शुरुआत उनके नाम के सुमरण के साथ करना चाहिए। कहते हैं कि जो उनके नाम को सुमरते हैं, जो उनके नाम को याद करते हैं, उन्हें विश्वास की शक्ति मिलती है, और विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर मन में विश्वास हो तो किसी भी मैदान को फतह किया जा सकता है, और अगर मन ही हार गया हो तो फिर छोटी से छोटी

सुमिरन कर ले मेरे मना। और जब हम ईश्वर को सुमरते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो हम अपने बारे में तो उनसे प्रार्थना करते ही हैं, अपने अपनों के बारे में उनसे प्रार्थना करते हैं, पर इस दौरान हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने अलावा अपने देश की, अपने आसपास के लोगों की उन्नति की भी प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करें तो अपने आप के लिए, अपने अपनों के लिए और अपने देश के लिए, अपने देश बंधु के लिए प्रार्थना ज़रूर करें और ईश्वर से करें, कहें, हे ईश्वर, हे हरि, तुम जन की पीर हर लो। क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें तो अराजकता है, कई सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिन्हें कहीं से तो उन्हें उनका फल मिलना चाहिए। और हम ईश्वर से कहें, हे ईश्वर, हमारे साथ कुछ गलत ना हो, और अगर हो तो तुम हमारी रक्षा करना, हमें शक्ति देना और साथ ही हमें इतना संयम देना कि हम बदले में कुछ गलत कदम ना उठाएं। आइए ईश्वर से, हरि से कहें, हे ईश्वर, हे हरि, तुम जन की पीर हर लो।

हम प्रार्थना करना कई बार भूल जाते हैं ईश्वर से, और कहते हैं जब सुख के दिन आते हैं तो अक्सर मानव की ये प्रवृत्ति होती है कि सुख के दिनों में वो ईश्वर को भूल जाते हैं या कई बार अपने साथी संगी को भी भूल जाते हैं। लेकिन वहीं जब दुख के दिन आते हैं तो फिर वो ईश्वर का नाम जपने लगते हैं, और तब ऐसा लगता है जैसे कोई प्यासा पपीहा किसी अपने को पुकार रहा हो। कोई प्राणी जो अत्यंत कष्ट में है वो अपने को पुकार रहा हो।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में भेंट वार्ता का विषय है हेड इंजरी लक्षण बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर विकास शर्मा, भेंट करता है सचिन कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बातें कर रहे हैं हेड इंजरी के बारे में और हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण और बचाव शहर के जाने माने न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर विकास शर्मा से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेड इंजरी से हम क्या समझे।
2: हेड इंजरी से ये समझ सकते हैं कि अगर सर पे चोट लगे
1: जी,
2: तो उससे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस या जो उसके लक्षण होंगे
1: जी,
2: उसको हेड इंजरी माना जा सकता है।
1: जी जी, तो अमूमन हम जानते हैं कि सर में चोट लगना किसी एक्सीडेंट से लग सकता है या खेलते कूदते भी लग सकता है।
2: गिरने से, जैसे फिसल के गिर गए या छत से गिर गए, उससे भी हेड इंजरी होने के चांसेस रहते हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, बाहरी रूप से जो चोट लगा वो तो दिख जाएगा, अगर चोट गंभीर है और अगर बाहर में कुछ हुआ नहीं, अंदर में भी क्या इसका चोट लगने की संभावना हो सकती
2: है?
1: जी, तो वो कैसे हो सकता?
2: जैसे अगर बाहरी चोट लगा
1: जी,
2: और बहुत बार होता है कि चमड़ा फट गया
1: जी,
2: और हड्डी फट गई तो टूट जाती है तो दिख जाता है कि खून आ रहा है, लेकिन बहुत बार होता है कि चोट ऊपर जो है चमड़ा और हड्डी ठीक रही, अंदर चोट आ जाता है, उसको कंट्यूजन कहते हैं। और
1: अच्छा।
2: बहुत बार काउंटर कूप मैकेनिज्म से चोट जहां लगा उसके विपरीत जगह पे अंदर अंदरूनी चोट आ जाती है।
1: जी जी जी,
2: तो वो ये जो अंदरूनी चोट है ये तो बिना सीटी स्कैन के बहुत बार बताना मुश्किल होता है, तो इसके लिए स्कैन जरूरी है।
1: बाहरी कोई लक्षण नजर नहीं आता है, कुछ ऐसा महसूस नहीं?
2: तो रहेगा, लेकिन बाहरी जैसे लक्षण होता है उल्टी
1: जी,
2: फिर आपका चक्कर आना
1: जी,
2: बेहोश होना और मिर्गी
1: जी,
2: ये सब जो है, ये सब बहुत ज्यादा अगर सीवियर हेड इंजरी है, बहुत गंभीर चोट लगी है
1: जी,
2: तब ये सब लक्षण आते हैं, नहीं तो बहुत बार हल्का चोट में ये बाकी लक्षण नहीं आते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हेड इंजरी और बेहोशी का कैसा संबंध है? जरूरी है कि बेहोश होंगे लोग या बिना बेहोशी का भी हो सकता?
2: बहुत बार बेहोश नहीं भी होते हैं
1: जी,
2: अगर चोट बहुत सीवियर है
1: जी,
2: तब चक्कर आना, उल्टी होना और बेहोशी, ये गंभीर चोट की निशानी है। इसके अगर ऐसा होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, हमने इसके कारण लक्षण तो जान लिए, अब हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को सीवियर हेड इंजरी हो गया है तो क्या उसका इलाज संभव है?
2: इलाज संभव है, जैसे उसमें है कि चोट लगा, सबसे पहले तो सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है
1: जी,
2: उसके बाद सीटी स्कैन से देखते हैं कि चोट की मात्रा कितनी है, कितना सर पे चोट लगा है
1: जी।
2: उसमें चोट लगने में भी दो तीन तरह के होते हैं, जैसे इंजरी जो होती है, एक तो SDH होता है, सब ड्यूरल हेमरेज, और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, ये सब में खून जो है बाहरी हड्डी और ब्रेन के बीच में खून जमा होता है, तो इसको निकाला जा सकता है ऑपरेशन के द्वारा।
1: अच्छा।
2: बाकी जैसे एक होता है सब रेक्नॉइड हेमरेज, इसमें मैक्सिमम मेडिकल मैनेजमेंट ही किया जाता है, और एक है कंट्यूजन होता है जिसमें कि ब्रेन का जो कोशिका है उसमें खून हल्का आया है, तो उसके लिए भी मेडिकल मैनेजमेंट से रोगी ठीक हो जाता है। बहुत बार इन रोगियों को मिर्गी की दवाई भी देनी पड़ती है ताकि उनको दौरा ना आ जाए।
1: यानी कि हेड इंजरी का ये एक दुष्परिणाम हो सकता है कि उस व्यक्ति को अब
2: मिर्गी
1: भी
2: आ सकती है।
1: जी जी, तो अंत में डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हेड इंजरी ना हो इसके लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या करना चाहेंगे?
2: हेड इंजरी से बचाव के लिए सरकार और आम आदमी और मीडिया तीनों को मिल के काम करना होगा
1: जी।
2: जैसे सरकार को चाहिए कि सख्त नियम कानून ट्रैफिक के लिए और यातायात के लिए बनाए
1: जी,
2: और उसका सख्ती से पालन भी करवाए
1: जी,
2: और आम लोगों को चाहिए कि जो भी नियम कानून हैं उसको सही से पालन करें, हेलमेट जरूर पहने और सीट बेल्ट का प्रयोग करें
1: जी जी,
2: और शराब और मादक द्रव्यों का इस्तेमाल बिना किए गाड़ी चलाएं। बाकी मीडिया का रोल मेनली जागरूकता फैलाने में, जैसे इस तरह के कार्यक्रम रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर में हमेशा आने चाहिए, और बाकी जो स्कूल में भी हमें चाहिए कि जो बच्चों को शुरू से ही यातायात के नियम और कैसे ट्रैफिक रूल्स हैं उसको बचपन से ही और कॉलेजों में भी पढ़ाया जाए।
1: जी जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी ही ये जिम्मेदारी बनती है एक अच्छे नागरिक होने के नाते कि हम ट्रैफिक के रूल्स का पालन करें और हेड इंजरी जैसे।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपने जाना हेड इंजरी के लक्षण एवं बचाव के बारे में भेंटवार्ताकार डॉक्टर विकास शर्मा से। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी महेंद्र कपूर के स्वर में।

वानर सम्राट सुग्रीव की अपने चरणों में भक्ति और समर्पण देख श्रीराम ने उन्हें भरत की भांति अपना लिया और उनसे वे सभी उपाय करने का आग्रह किया जिससे सीता का समाचार प्राप्त किया जा सके। सुग्रीव के आदेश पर वानरों की विशाल सेना एकत्र हो गई। पार्वती को यह कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, वानरों की वो सेना मैंने देखी थी। उनकी संख्या इतनी थी जिसकी गिनती करने वाले को मूर्ख ही कहा जा सकता है। सभी वानर श्रीराम के सम्मुख आकर सिर झुकाते हैं। प्रत्येक वानर से श्रीराम उसकी कुशल क्षेम पूछकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। सुग्रीव ने असंख्य वानरों की विशाल सेना को सभी दिशाओं में जाकर सीता जी को ढूंढने का आदेश दिया और इस काम के लिए एक माह का समय दिया। अपने राजा के सामने एक बार फिर सिर नवाकर वानर श्रीराम का स्मरण करते हुए विभिन्न दिशाओं में चल दिए। सबके अंत में जब पवन सुत हनुमान ने सिर नवाया तो श्रीराम ने उन्हें अपने पास बुलाकर अपने कर कमलों से उनका सिर स्पर्श किया तथा अपना अनन्य सेवक जानकर उन्हें अपनी अंगूठी उतार कर दी। बोले, सभी प्रकार से सीता को समझा बुझाकर शीघ्र लौट आना।

रामचरितमानस गान आपने सुना महेंद्र कपूर के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त रूप से।

प्रातः 7 बजे आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जानिए मौसम का मिजाज, रेल सूचना, आज का इतिहास, समाचार पत्रों की सुर्खियां और आनंद लीजिए सुगम संगीत और फिल्मी गीतों का। साथ ही काव्यांजलि सुनिए। आज फिल्मी गीतों का प्रसारण समय है प्रातः 9:06, 10 बजे, 11 बजे, 11:30, दोपहर 2:30, शाम 5:30, रात 8 बजे, रात 10 बजे आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और रात 10:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से होगा। सुगम संगीत प्रस्तुत होगा प्रातः 9:30 पर, कलाकार होंगे सुनील कुमार मिश्र। रात 7:52 पर कलाकार उदय नारायण राय के स्वर में सुगम संगीत होगा। लोकगीतों का प्रसारण समय आज है प्रातः 10:30, कलाकार होंगे पवन कुमार राम। 1 बजे सुनिए किरदार प्रसाद कुशवाहा के स्वर में लोकगीत। बहने अपना विशेष कार्यक्रम नारी लोक सुनती हैं दोपहर के 12 बजे। श्रोताओं आपको बता दें कि आज प्रातः 10:45 पर पटना केंद्र से अनुप्रसारित समन्वित कार्यक्रम आओ साथ चले होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनना न भूलें दोपहर 12:30 पर। 1:30 पर घर आंगन कार्यक्रम होगा।

प्रस्तुत होगा रविंद्र संगीत दोपहर के 3 बजे। कलाकार होंगी लोपा मुद्रा मित्रा। 3:20 पर आप सुनते हैं समूह स्वर में देशभक्ति गीत। 3:25 से शाम 5 बजे तक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम होंगे। हमारे केंद्र के शेष कार्यक्रम प्रसारित होंगे शाम 5 बजे से। शाम 5 बजे युवाओं को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम युववाणी होता है। शाम 6 बजे ग्रामीण भाई बहनों का विशेष कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर सुनिए विशेष भेंटवार्ता में समेकित कृषि के लाभ विषय पर भेंटवार्ताकार श्री मृगेंद्र प्रसाद सिंह के विचार। हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। हमारी आज की ये सभा संपन्न होगी रात 11:10 पर।

आपने सुना कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शांति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्याम् परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तरी आंतरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेंधनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉ जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉ जयशंकर बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। असौ उपप्रधानमन्त्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। एतासु सभासु विदेशमंत्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। प्रधानमंत्री कार्यालयेन विविध क्षेत्रेषु एल नीनो इत्यस्य संभाव्य प्रभावानां सज्जतोपायानां च समीक्षार्थं प्रधानमंत्री कार्यालये उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवस्य डॉ पीके मिश्र वर्यस्य अध्यक्षतायां सेवातीर्थे ह्यः इयं सभा आयोजिता। अस्यां सभायां पञ्चदशतोप्यधिकानां मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। फुटबॉल क्रीडायां स्विट्जरलैंड देशः वैंकूवर नगरे पेनल्टी शूटआउट इत्येतस्यां क्रीडायां कोलंबिया देशं 4-3 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य 54-29 वर्षात् प्रथमवारं फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के साथ बज चुके हैं, आइए आनंद ले मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला का।

गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना, अपने अपनों का और अपने आसपास का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, साथ ही अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया सीखने की, कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बस आपकी इसी कोशिश में आपका थोड़ा सा साथ देने के लिए लेकर आ गए हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। आप सभी का बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दूं कि कार्यक्रम में मनोरंजन की पोटली में ढेर सारी जानकारी लिपटी हुई है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। एक एक कर बहुत सी जानकारी निकलने वाली है मनोरंजन के बीच में से। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही छोटे पर बेहद ही ज़रूरी जानकारी के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं आपको बताने वाली हूँ वक्त का हाल। अगर वक्त का हाल बताऊँ तो आज अभी समय हो चुका है 7:02, और दिन की बात करें तो दिन है आज बुधवार का और तारीख है 8 जुलाई 2026। और देखिए 7 बज चुके हैं तो यकीनन आपने अपने दिन की शुरुआत कर ही ली होगी और अब तक कर भी लेना चाहिए। और वैसे भी बच्चों के मॉर्निंग स्कूल हैं और ऐसे में उन्हें बहुत जल्दी जगना पड़ता है, तो घर वाले भी जाग जाते हैं और इस मौसम में इतनी देर तक शायद ही कोई सोता है। तो दिन की शुरुआत, हमारे कार्यक्रम की भी शुरुआत हो चुकी है और आप सभी से बस एक ही बात आज कार्यक्रम के आरंभ में कहना चाहूँगी कि अपने दिन की शुरुआत करें ना तो चिंताओं से मुक्त होकर करें। एकदम कल जो हुआ उसके बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हो चुका हो चुका। बस उससे आपने जो भी सीख लेनी है वो ले लीजिए, जिन चीज़ों को आप सुधार सकते हैं सुधार लीजिए, पर चिंता में, व्यर्थ के चिंता में मत पड़िए। और आज जो होने वाला है उसकी चिंता करके क्या फ़ायदा, उसके बारे में आपने अपनी जो हिसाब से जो प्लानिंग करनी है वो कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, वैसा हुआ तो कैसा होगा, क्योंकि होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा। तो इतना ज़्यादा सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, बस चिंता से मुक्त होकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और जो भी आप चाहते हैं, जो भी जिनसे भी आप मिलना चाहते हैं और जो भी आप अपने अपने लिए करना चाहते हैं उसे खुलकर करें, खुलकर अपने जीवन को जिए। और क्या, बस इतनी सी बात। और कहते हैं कि हमारे पास जो पल हैं बहुत ही ज़्यादा नहीं होते हैं और ये भी नहीं होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि कितने पल हैं या फिर कितना वक्त होता है हमारे पास। अगले ही क्षण क्या होगा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, तो हर पल को खुलकर जिए, क्योंकि जब तक सांस है तभी तक आस है और तभी तक आप अपनी सारी आशाओं को, सारी इच्छाओं को पूरा कर लीजिए। हर पल को जिए और हर पल के साथ आनंद उठाइए। फिलहाल आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़िए, बहुत सारा मनोरंजन, बहुत सारी जानकारी आपका इंतज़ार कर रही है।

0: अभी तो फिलहाल हम सभी को ये आशा है कि बारिश हो, मानसून आ चुका है और बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी हो। फिलहाल अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम का हाल अगर मैं आपको बता दूं तो हालांकि अभी तो बारिश अचानक भी हो जाती है, कुछ पता नहीं लगता और बारिश हो जाती है। और मौसम तो ऐसा है कि हर 5 मिनट में लगता है मौसम बदल गया है। अभी मौसम कुछ और है, 5 मिनट बाद मौसम कुछ और होगा। लेकिन तापमान की अगर बात करें तो आज दिन में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, वहीं रात में यानी कि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और बारिश भी हो सकती है। और अगर हम बात करें सापेक्ष आर्द्रता की तो सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85% रहने की संभावना है और दोपहर में 50-55% रहने की संभावना है। और अनुमान है कि 15-16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। ये है मौसम का हाल, मौसम का मिजाज और बारिश होने की संभावना तो है, तो कहीं भी निकलें तो अपने साथ एक छाता लेकर ज़रूर निकलें ताकि आपके काम में कोई बाधा ना हो। फिलहाल हम चलते हैं एक छोटे से अंतराल पर। अंतराल के उस पार बहुत सी बातें, बहुत सी जानकारियां आपका कर रही है इंतज़ार। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

0: मन दोबारा तिवारा पुकारा करे। जी, जब कोई दूर चला जाता है या फिर ऐसा होता है कि किसी वजह से हमारी उनसे बात नहीं हो पाती, उनकी जो सूचनाएं हमें नहीं मिल पाती, तो मन थोड़ा विचलित तो हो जाता है। और अगर आप किन्हीं से बहुत दिनों से नहीं मिले हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि जाना है, मिलना है, तो ज़्यादा सोचिए मत। अगर किन्हीं से मिलना है तो मिल लीजिए, और कुछ बातें कहनी है, कुछ बातें करनी है तो कर लीजिए, गिले शिकवे दूर कर लीजिए। और कहीं दूर जाना है तो ट्रेनों का सफ़र सबसे अच्छा होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रेनों का हाल, कौन सी ट्रेन सही समय से चल रही है और कौन सी ट्रेन है लेट लतीफ़। ट्रेन संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस सुबह 7:50 पर, यानी कि अपने सही समय पर भागलपुर से रवाना होगी। 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस 7:45 पर भागलपुर आएगी। 12368 आनंद बिहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने तय समय से चलते हुए 8:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। 15658 ब्रह्मपुत्र मेल अपने निर्धारित समय से 16 की देरी से चलते हुए 8:21 पर भागलपुर आएगी। 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर बिल्कुल सही समय से चल रही है, 8:37 पर भागलपुर आएगी। 15648 भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 56 की देरी से चलते हुए 9:26 पर भागलपुर आएगी। और आपको बता दें 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस अपने तय समय से चल रही है, इसका सही समय है 9:00। 63431 साहिबगंज जमालपुर मेमू बिल्कुल अपने सही समय से चलते हुए 9:15 पर भागलपुर आएगी। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी 9:35 पर भागलपुर पहुंचेगी। 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, इसका सही समय है 10:15, बिल्कुल सही समय से चल रही है। 12367 भागलपुर आनंद बिहार विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने तय समय यानी कि 11:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। तो ये था ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का मिजाज। और अगर आप ट्रेन पे सफ़र करने जा रहे हैं तो इस बार फ़ोन मत चलाइएगा, कोई किताब लेकर जाइएगा। और ट्रेन पर बिल्कुल शांति से किताब पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। अगर आपको कहानी पसंद है, अगर आपको कविताएं पसंद है, तो ये सारी चीज़ें एक अलग ही सुकून देती है। और ट्रेन पे तो हमें बहुत सारा वक्त होता है, फ्री बिल्कुल होते हैं हम, तो उस वक्त पे ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती है। फिलहाल कहानी और कविताओं की बात है तो आज बुधवार है और बुधवार को आप सुनते हैं काव्यांजलि। काव्यांजलि में आज कवि हैं देवानंद गुप्ता। आइए इन्हीं की आवाज़ में सुने इनकी लिखी कुछ कविताएँ।
1: मेरी पहली कविता है भावों की जननी। भावों की जननी हिंदी, हिंदी से हिंदुस्तान है। भावों की जननी हिंदी, हिंदी से हिंदुस्तान है। एक सूत्र में बंधी हमारी संस्कृति पर अभिमान है, संस्कृति पर अभिमान है। भावों की जननी हिंदी, अवधि में बाबा तुलसी ब्रज भाषा के रस खान है। अवधि में बाबा तुलसी ब्रज भाषा के रस खान है। राजस्थानी में देखो मीरा की भक्ति।

ज्ञान है, मीरा की भक्ति महान है, भावों की जननी हिंदी। छंद अलंकारों से सज्जित गजब के रूप विधान है, छंद अलंकारों से सज्जित गजब के रूप विधान है। पद्मावत की विरह वेदना छायावादी विख्यात है, छायावादी विख्यात है, भावों की जननी हिंदी। भोजपुरी अंगिका मैथिली हिंदी की संतान है, भोजपुरी अंगिका मैथिली हिंदी की संतान है। नहीं कोई मतभेद हमारा, यह तो एक विस्तार है, हिंदी का ही प्रसार है, भावों की जननी हिंदी। 57 की आग लगाने वाले कवि गुमनाम है, 57 की आग लगाने वाले कवि गुमनाम है। वीर सुभद्रा के पद पद में स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम है, भावों की जननी हिंदी। पढ़े लिखे हिंदी बोले यह शुभ प्रभात की मांग है, पढ़े लिखे हिंदी बोले यह शुभ प्रभात की मांग है। पश्चिम का आकर्षण छोड़े पूर्व ही पहचान है, पूर्व ही पहचान है, भावों की जननी हिंदी। संविधान में भी गुंजित महिमा हिंदी की अपार है, संविधान में भी गुंजित महिमा हिंदी की अपार है। ज्ञान भक्ति करुणा का संगम मानव का कल्याण है, मानव का कल्याण है, भावों की जननी हिंदी। भागलपुर हिंदी विभाग के दिनकर स्वाभिमान है, भागलपुर हिंदी विभाग के दिनकर स्वाभिमान है। शरत चंद्र की ज्ञान स्थली

हिंदी, हिंदी से हिंदुस्तान है भावों की जननी, हिंदी हिंदी से हिंदुस्तान है एक सूत्र में बंधी हमारी संस्कृति पर अभिमान है, संस्कृति पर अभिमान है भावों की जननी हिंदी। और हमारी आखिरी रचना गंगा अविरल। गंगा अविरल गंगा निर्मल निश्चलता का पर्याय है, गंगा अविरल गंगा निर्मल निश्चलता का पर्याय है, सरयू सिंधु से भी सुंदर, सरयू सिंधु से भी सुंदर यह तपस्वियों का ताप है, गंगा अविरल गंगा निर्मल निश्चलता का पर्याय है। तू कहीं जानवी मैया है, कहीं भागीरथी तिवैया है, तू कहीं जानवी मैया है, कहीं भागीरथी तिवैया है, त्रिलोक रमे हरिहर की प्रिय, त्रिलोक रमे हरिहर की प्रिय इस धार में ही संसार है, गंगा विरल गंगा निर्मल निश्चलता का पर्याय है, जिस तट का तू स्पर्श करे शमशान बने शिव धाम रहे, क्या पापी पुण्य महान आत्मा सब जाकर एक समान बने, जिस तट का तू स्पर्श करे शमशान बने शिव धाम रहे, क्या पापी पुण्य महान आत्मा सब जाकर एक समान बने, है महाआरती की बेला, है महाआरती की बेला तब तीर्थ राज प्रय

गंगा निर्मल निश्चलता का पर्याय है। उत्तराखंड उत्तरवाही उत्तम तेरी उज्ज्वल धारा, उत्तराखंड उत्तरवाही उत्तम तेरी उज्ज्वल धारा, उत्तर का यह उत्कर्ष लगे, उत्तर का यह उत्कर्ष लगे जब कांवरिया प्रयाण करें, बाबा अजगैवी नाथ लगे तब अंग देश का मान बढ़े। गंगा अविरल गंगा निर्मल निश्चलता का पर्याय है। जिस घर जल तेरा कुंभ कलश वह द्वार नहीं हरिद्वार लगे, जिस घाट पे तू माँ स्वच्छ रहे सब स्वस्थ रहे संताप हरे। जिस घर जल तेरा कुंभ कलश वह द्वार नहीं हरिद्वार लगे, जिस घाट पे तू माँ स्वच्छ रहे सब स्वस्थ रहे

रहे, तन मन से कोई ना छीन रहे, हमको क्या मतलब स्वर्ग लोक से, हमको क्या मतलब स्वर्ग लोक से, गंगा वैकुंठाधार है गंगा, विरल गंगा निर्मल निश्चलता का पर्याय है, कल कल करती तेरी धारा, हर रागों में वैराग लगे, सेवा निस्वार्थ भावना की।

0: सेवा निस्वार्थ भावना की सत्संग तत्व का सार लगे। जीते जी तुझे जो ना पाए, जीते जी तुझे जो ना पाए, वह चिता में जल कर पछताए। रैदास जी का गुणगान है, गुरुओं में इनका मान है। गंगा अविरल गंगा निर्मल निश्चलता का पर्याय है। गंगा को गंगा रहने दो, मत उसमें गंदा जल घोलो। जब भी तुम अपना मुख खोलो, गंगा माता की जय बोलो। गंगा को गंगा रहने दो, उसमें मत गंदा जल घोलो। जब भी तुम अपना मुख खोलो, गंगा माता की जय बोलो। रुद्राभिषेक हो यज्ञ एक, रुद्राभिषेक हो यज्ञ एक, रस मुक्ति मुक्त मजधार है। गंगा विरल गंगा निर्मल निश्चलता का पर्याय है। गंगा विरल गंगा निर्मल निश्चलता का पर्याय।
1: काव्यांजलि में आपने सुना, आपने सुनी कुछ कविताएं, और कवि थे देवानंद गुप्ता। कविताओं में बहुत शक्ति होती है। कुछ ही लाइनों में वो कितनी सारी बातें बता देती है, कितनी सारी बातें कह देती है। कभी हमें पुराने जीवन की याद दिला देती है, कभी बचपन की याद, और कभी हमें हमारे देश की याद दिला देती है, हमारी संस्कृति की याद दिला देती है। वाकई कुछ ही लाइनों में कितनी सारी बातें कह जाती है कविताएं। और अभी फ़िलहाल हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जी हाँ, आपको अभी मैं बताने वाली हूँ आज के इतिहास के बारे में। लेकिन उससे पहले वर्तमान के बारे में जान लेते हैं। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में समय का हाल अगर मैं आपको बता दूँ तो 7:31 हो चुके हैं, और बस कुछ ही सेकंड्स में 7:32 भी हो जाएंगे। और जी हाँ, वर्तमान की बात हो गई। अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या कुछ दर्ज हुआ है। आज ही के दिन 1497 में वास्को द गामा ने यूरोप से भारत की प्रथम जल यात्रा आरंभ की थी। 1858 में ग्वालियर के किले के पतन के बाद लॉर्ड केनिंग ने शांति की घोषणा की थी। 1918 में भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। सतलज नदी पर निर्मित भाखड़ा नांगल पनबिजली परियोजना से बनी सबसे बड़ी नहर का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था 1954 में। 1994 में शिमाकी मुकाई जापान की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। 2002 में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत क्रिकेटरों के लिए कोटा प्रणाली समाप्त किया गया था। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समूह 8 देशों में सहमति बनी थी आज ही के दिन 2005 में। पेरिस की सरकार ने बांग्लादेश की विवादग्रस्त लेखिका तस्लीमा नसरीन को मानद नागरिकता देने का प्रस्ताव दिया था 2008 में। और 2012 में असम में भयावह बाढ़ ने विश्व प्रसिद्ध कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 13 गैंडों समेत 500 से अधिक वन प्राणियों को समाप्त कर दिया था। अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन निधन हो गया था, जिन्होंने आज के ही दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप का निधन 2020 में हो गया था। चंद्रशेखर सिंह का निधन 2007 में हुआ था। चंद्रशेखर सिंह भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। सुभाष मुखोपाध्याय भारत के बंगला कवि और साहित्यकारों में से एक थे। इनका निधन 2003 में हुआ था। अब बात उन व्यक्ति की जिनका आज के दिन हुआ है जन्म, जो आज के दिन अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1991 में जन्म हुआ था अनीता कुंडू का। अनीता कुंडू भारत की प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। चेतन आनंद भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी, इनका जन्म 1980 में हुआ था। 1972 में सौरभ गांगुली का जन्म हुआ था, और आप सभी को पता है कि सौरभ गांगुली हमारे भारत के मशहूर और काफ़ी पसंद किए जाने वाले क्रिकेटर हैं। और बात करें तो 1958 में जन्म हुआ था नीतू सिंह का। नीतू सिंह हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री, इनकी बहुत सारी फिल्मों को आपने देखा होगा। इन्होंने बाल कलाकार के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और फिर इन्होंने लीड रोल में भी काम किया और लीड रोल में भी इन्होंने बड़ी अपने अपने अदाकारी के लिए इन्होंने तारीफ़ें बटोरी थी। और इनकी ही फिल्मों के आज गाने हम सुनेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1937 में जन्म हुआ था गिरिराज किशोर का। गिरिराज किशोर हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, सशक्त कथाकार, नाटककार और आलोचक थे। 1912 में जन्म हुआ बनारसी दास का। बनारसी दास भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और बात करें विष्णु डे का, तो विष्णु डे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बंगला साहित्यकार थे। इनका जन्म 1909 में हुआ था। तो ये थे आज के इतिहास की बातें। आज के इतिहास में क्या कुछ दर्ज हुआ इसके बारे में हमने बात की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज नीतू सिंह का भी जन्मदिन है। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। अगर बात करें 1960, 1970, 1980 के दशक में इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और बाद में इन्होंने ऋषि कपूर से शादी कर ली। हालाँकि उसके बाद ये फिल्मों में बहुत कम नज़र आई, लेकिन अब अगर बात करें तो अब ये फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल हैं। और इनकी ही कुछ फिल्मों के अभी हम कुछ गाने सुनेंगे। और आइए कुछ फिल्मों के गाने सुनते हैं।

वैसे अभी जो आपने गाना सुना वो फिल्म यादों की बारात फिल्म से ये गाना था, और इस फिल्म में नीतू कपूर ने अभिनय नहीं किया था लेकिन एक गाने में वो नज़र आई थी, और वो गाना था लेकर हम दीवाना दिल। हालांकि इस गाने में वो नहीं नज़र आई थी, लेकिन आपको मैं सुनाऊंगी, नीतू कपूर के कुछ गाने भी सुनाऊंगी। और अगर उनकी फिल्मों के बारे में बात करें तो उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर अपने अभिनय की शुरुआत की थी, सूरज, 10 लाख और दो कलियों के बारे में, दो कलियाँ जो फिल्म आई थी 1968 में, इसके बारे में तो आज भी लोग बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया था नीतू कपूर ने, तब ये नीतू सिंह हुआ करती थी। 1970 में पवित्र पापी, फिर घर घर की कहानी, और मुख्य अभिनेत्री के रूप में अगर हम बात करें तो 1972 में इन्होंने रिक्शा वाला फिल्म से शुरुआत की, और 1973 में यादों की बारात में एक गाने में नज़र आई थी ये, और 1973 में आज की ताज़ा खबर, जहरीला इंसान, खेल खेल में, रफू चक्कर, दीवार में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी, फिर कभी कभी में भी ये नज़र आई, अदालत, परवरिश, अमर अकबर एंथोनी, धर्मवीर जैसी ढेर सारी फिल्मों में ये नज़र आई। और उसके बाद ऋषि कपूर से शादी के बाद उन्होंने, आपको बता दूं कि फिल्मों से दूरी बना ली, और हालांकि साल 2009 में इन्होंने वापसी की लव आजकल फिल्म के साथ, इसमें इनका एक कैमियो था एक छोटा सा। फिर 2010 में दो दूनी चार, और अभी हालिया फिल्म की बात करूं तो दादी की शादी में नज़र आ रही हैं नीतू कपूर। और अगर इनकी फिल्म के कुछ गाने हम सुने तो आइए हम सुनते हैं कभी कभी फिल्म का ये गाना, और इस गाने के बाद और भी बहुत सी बातें होंगी, आप हमारे साथ बने रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कभी कभी फिल्म का ये गाना। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हम, और इतिहास के बारे में तो हमने जान लिया है, अब जानते हैं कि वर्तमान समय में देश दुनिया में हमारे आसपास में क्या हो रहा है, यानी कि अब देखते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां क्या कहती है। आज मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार में अपराधी और घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं, स्टेट हाईवे पर सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर टोल लगेगा। 24 घंटे पहले सरकार ने टोल रेट जारी किए, सिर्फ दो पहिया तीन पहिया ट्रैक्टर को छूट दी थी। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज के स्थान पर स्थायी निर्माण होगा, आज कल रात में यातायात बंद रहेगा, IIT पटना की टीम जाँच करेगी। 8 से 9 को रात 10 से सुबह 5 बजे तक नहीं चलेंगे विक्रमशिला सेतु पर वाहन। ओपीडी और सामान्य वार्ड की सेवाएं ठप, पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सेंडस कंपाउंड के परिसर में पत्थरों में छिपा है करोड़ों साल पुराना इतिहास। 22 से 25 इंच व्यास वाले जीवाश्म का वजन 200 किलोग्राम से अधिक। सेंडस कंपाउंड उद्यान में मिले दुर्लभ वृक्ष जीवाश्म लखनऊ के पूरा विज्ञान संस्था की टीम करेगी जांच। पार्टी के दिग्गज नेता दरकिनार युवा पर भरोसा जताया, बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने चौंका, युवा मोर्चा के अभिषेक कुमार बने प्रत्याशी। T20 में भारत की सबसे बड़ी हार, इंग्लैंड ने 125 रनों से पराजित किया। राम मंदिर मामले में SIT ने बड़े आयोजनों के खर्च की जाँच शुरू की, ध्वजारोहण 6,000 लोग 10 करोड़ खर्च, प्राण प्रतिष्ठा 8,000 लोग 113 करोड़ खर्च। SIT की फाइनल रिपोर्ट आने पर जवाब दूंगा, चंपत राय ने कहा। तापमान बढ़ने का असर, कभी 25 दिन तक दर्शन देते थे बाबा बर्फानी, अब 5वें दिन ही अंतर्ध्यान हो गए। शिक्षा विभाग की बैठक में TRE 4 की भर्ती के लिए 25 तक BPSC को जाएगी अधियाचना, अगस्त के पहले सप्ताह में आ सकती है वैकेंसी। केंद्रीय टीम करेगी बिहार का दौरा। पीएम मोदी दौरा, साबांग पोर्ट विकसित करने का करार, इंडोनेशिया से डिफेंस डील, 5,000 करोड़ में ब्रह्मोस खरीदेगा। तेल कंपनियां अब 11 रुपए प्रति लीटर कमा रही, पर आम लोगों को राहत नहीं, क्रूड 68.69 डॉलर प्रति बैरल, कंपनियां 36 दिन से लगातार मुनाफे में। इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने मिस्र, स्पेन ने पुर्तगाल को हराया। 78 मिनट तक 2 गोल से पिछड़ रही अर्जेंटीना ने 15 मिनट में 3 गोल दागे। टीम मेसी के नाम 4 बड़े रिकॉर्ड दर्ज हो गए। रोनाल्डो ने कहा, ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था। रफ्तार और लापरवाही, अनियंत्रित परिचालन जानलेवा बना, ज्यादातर मासूम व बुजुर्गों की जांच गई। 6 माह में हादसों में 100 से अधिक जाने गई हाईवा और बाइक बने काल। 8 बजे शुरू होनी थी OPD, 9 बजे तक डॉक्टर नहीं, मरीज करते रहे इंतजार। सदर अस्पताल में 7 में 6 OPD खाली, अल्ट्रासाउंड व पैथोलॉजी में भी कर्मी नहीं। डीप बोरिंग की खराबी दूर, जलापूर्ति बहाल, देवी बाबू धर्मशाला की बात। डबल टेकर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है, DM ने कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। श्रावणी मेला के अवसर पर कांवरियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन का ये बड़ा फैसला। क्राइम मीटिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 27 पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। नगर निगम में दोनों और लगने वाली दुकानों के लिए 2 लाख निर्धारित किए गए। श्रावणी मेले में पहली बार बरारी घाट की अस्थायी दुकानों की होगी ई नीलामी, बंदोबस्ती प्रक्रिया शुरू। सख्ती, पूर्णिया में DEO की अनुशंसा पर की गई कार्रवाई। 65 करोड़ रुपए के भुगतान में DPO पर आरोप पत्र गठित। भागलपुर के रौनित राज का बिहार रग्बी टीम में चयन हुआ। नए नियमों के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में गेस्ट फैकल्टी, अब पूर्व से कार्यरत गेस्ट फैकल्टी सामान्य अभ्यर्थियों की श्रेणी में रहेंगे। TMBU के स्थापना दिवस पर 12 को ओवरऑल टॉपर्स होंगे सम्मानित। PG के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 16 और MED की 13 जुलाई से होगी।
अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल दिवस पर प्रदर्शनी मैच में भागलपुर ब्लू जीता। अस्थायी स्वास्थ्य शिविरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों, कर्मियों और शिव भक्तों को परेशानी होगी। मेला क्षेत्र में 13 हेल्थ कैंप में से 2 में बिजली की व्यवस्था नहीं, 4 जल जमाव की समस्या से ग्रसित। श्रावणी मेला में अब सिर्फ 22 दिन बचे हैं। सहयोग शिविर में कहलगांव में आयोजित जनता की समस्याएं सुनी गई। 30 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं करने वाले अफसर निलंबित होंगे, डीएम का कहना। बीमारी के उन्मूलन में अररिया, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज ने पूरा किया कड़ा पैमाना। राज्य के 1,35,00,000 लोगों ने एक दिन में खाई फाइलेरिया की दवा, यूएन ने सराहा। सेंसेक्स के कमजोर प्रदर्शन के बीच नए शेयरों में रैली, 6 महीनों में आए 27 आईपीओ, इनमें 74% मुनाफे में 124% तक रिटर्न पर औसत लिस्टिंग गेन 7 साल में सबसे कम 1.3% रहा। विदेशियों ने शेयर बेच इशू में लगाए पैसे, रफ्तार, एक साल में डार्क स्टोर्स 1.5 गुना बढ़ा, 1,00,000 करोड़ का बाजार। झटपट डिलीवरी, पेय पदार्थ, आइसक्रीम और फेस केयर की बिक्री सबसे ज्यादा। कमजोर मानसून से ग्रामीण मांग सुस्त पड़ने का खतरा बना हुआ है। गोल्ड रिजर्व की बात करें तो ऊंची कीमत के बीच केंद्रीय बैंक बढ़ा रहे निवेश। आरबीआई के सोने की कीमत 11,00,000 करोड़ रुपए 2 साल में दुगनी हुई। एप्पल के सेफ्टी फीचर्स में बड़ा बदलाव। डेटा शेयरिंग के लिए यूजर्स की मंजूरी लेगी अब। एआई शेयर फिर क्रैश हुआ, डीप सीक के चीप के डर से लुढ़का नैसडैक। स्विगी अब बनी भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी। अब बात खेल जगत की। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने 3-2 से जीता। 75 मिनट से ज़्यादा तक 2 गोल से पीछे होने के बाद भी कोई टीम रेगुलर टाइम में जीती, ऐसा नॉकआउट में पहली बार हुआ। स्पेन वर्सेस पुर्तगाल में 1-0 से जीत, 16 साल बाद अंतिम 8 में खेलेगा स्पेन। अमेरिका वर्सेस बेल्जियम में 1-4 से हार, टूर्नामेंट के सभी मेजबान देश से बाहर। बेल्जियम ने अपनी आक्रामक फुटबॉल के दम पर मेजबान अमेरिका को 4-1 से करारे शिकस्त दी। पहली बार अंतिम 16 खेल रहा मिस्र बाहर हो गया है। अगली खबर, एटिगा टेस्ट में ग्रिप्स 180 होप, 112 के शतक, 499 पर सिमटा विंडीज, 500 के आंकड़े से 1 रन से चूका विंडीज। विंबलडन में डिफेंडिंग चैंपियन सिनर लगातार सेमीफाइनल में। टेनिस की बात हो रही है, 25 साल की उम्र से पहले 10वां ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल खेलेंगे सिनर। क्रिकेट में भारत की चरणी बॉलर्स में शीर्ष पर कायम। रैंकिंग T20 चैंपियनशिप बेथ मूनी 5वीं बार दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बने। मुंबई से दिल्ली तक बारिश, आज 27 राज्यों में बारिश होने की संभावना। फिर तनाव, ट्रंप के तेवर, घंटे भर में ईरान को तबाह कर देंगे ईरान का जवाब, ट्रंप सपने नहीं देखे। होर्मुज फिर गरमाया, भारत आ रहे कतर के टैंकर पर ड्रोन हमला, 24 घंटे में 3 जहाजों पर निशाना। दुनिया के शीर्ष 100 में रहने लायक शहरों में भारत का एक भी नहीं, लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट, दिल्ली 120वें नंबर पर। ये थे आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब समय कह रहा है कि मुझे लेनी चाहिए आपसे इजाज़त और हमारे आज के कार्यक्रम यानी कि गुड मॉर्निंग विक्रमशिला को यहीं विराम देना चाहिए, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना अपने अपनों का रखें विशेष ध्यान और ध्यान रखें कि जहां भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। आप साफ़ सफाई रखेंगे तो आपके परिवार और आपका समाज तो स्वस्थ होगा ही, साथ ही हमारे समाज की तस्वीर भी बदलेगी। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए कुछ संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। ये समय होता है दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का। समाचार प्रभात के बाद आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज और खबरनामा। आपको बता दें खबरनामा के थोड़ी ही देर बाद आप पटना केंद्र से सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
0: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक पूर्वी राजस्थान गुजरात कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साक का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश, आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक्वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। और फुटबॉल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अलाक्वामी कानून के मुताबिक इस खतरे से निपटने के लिए फैसलाकुन मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया, जिनमें वो दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जिन्हें अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की 1267 बंदिशों की कमेटी ने नामजद किया हुआ है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इसके लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम,

0: गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने आरंभ कर।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर मेलबर्न पहुंचने वाले हैं। जनाब मोदी

0: ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथनी एल्वनीज के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बाहमी बातचीत से कई अहम शोबों में इश्तराक को फरोग हासिल होगा। दोनों के ताल्लुकात में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। अशिया और खिदमात के शोबे में दोतरफा तिजारत 2025 में पहले ही $33 अरब से तजावुज कर गई है और अब 2030 तक इसे $1 खरब तक पहुंचाने का निशाना रखा गया है। दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक तेजी के साथ साझेदारी के एक अहम सुतून के तौर पर उभरा है। गुज़श्ता महीने नई दिल्ली में वज़राए दिफा के दूसरे मुज़ाकरात के तनाजुर में दोनों मुल्क सनअती इश्तराक और बहरी सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बना रहे हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पीएमओ ने मुख्तलिफ शोबों पर एल नीनो के मुमकिना असरात और तैयारी से मुतालिक इकदामात का जायजा लेने के लिए आला सतह की जायजा मीटिंग मुनाकिद की। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी के मिश्रा की सदारत में यह मीटिंग सेवा तीर्थ में हुई। इस मीटिंग में 15 से ज्यादा वजारतों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदार मौजूद थे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस मीटिंग में डॉक्टर मिश्रा ने यह हिदायत दी कि मजमू सूरत हाल पर लगातार नजर रखी जाए और रियासतों के साथ तालमेल कायम करके जल्द मुतासर होने वाले जिलों पर मानसून या ताखिर से पहुंचने वाले मानसून के असरात का जायजा लिया जाए ताकि जरूरत पेश आने पर जरूरी इकदाम किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन जिलों में पीने के पानी की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दस्तियाब पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से किए जाने की जरूरत उजागर की। इधर भारतीय मौसमियात महकमे के अफसरों ने जून और जुलाई में बारिश की मजमूई सूरत हाल का खाका पेश किया। पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे ने बताया कि वो लगातार नजर रखे हुए हैं और फिलहाल सूरत हाल मुस्तहकम है। दिल्ली से प्रिया वंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोलकाता और उसके अतराफ 5 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बाज बैंक खातों के जरिए मुश्तबा रकूम की मुंतकली गैर कानूनी तरीके से रकम इकट्ठा करने और मुबैना गैर कानूनी माली लेन देन के सिलसिले में की गई है। तलाशी की यह कार्रवाई एविएशन के शोबे में काम करने वाली प्राइवेट फर्म केयरवेल ग्रुप और उसके डायरेक्टर्स और एक मुबैना इलेक्टोरल ट्रस्ट से वाबस्ता ठिकानों पर की गई। ईडी की इब्तदाई छानबीन के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मशकूक मकासद के लिए एविएशन और ट्रेवल कंपनियों के तवस्सुस से मुंतकिल की गई। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2023 और इस साल जून के दरमियान तृणमूल कांग्रेस के खातों से तकरीबन 160 करोड़ रुपए प्राइवेट एविएशन फर्म और उससे वाबस्ता इदारे को मुंतकिल किए गए। अमरीकी फौज ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले आबनाए हुरमुज में 3 तजारती जहाजों पर हमले के कुछ ही घंटे बाद किए गए हैं। अमेरिका की मरकजी कमान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि अमेरिकी फौजों ने ये हमले एक बैन अलावामी गुजरगाह में कमर्शियल जहाजों पर हमले करने के का सख्त बदला लेने के लिए किए हैं, जिनमें बेकसूर शहरी सवार थे। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी किशम और बंदरगाह और बंदर अब्बास में इन धमाकों की इत्तला दी है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका की तरफ से ये ताजा हमले माहदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने एक लाइसेंस को भी मनसूख कर दिया है, जिसके तहत अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई को खत्म करने से मुतालिक एक अबूरी समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान के तेल की फरोख की इजाजत दी गई थी। अमरीका के अफसर ने बताया कि यह लाइसेंस इसलिए मनसूख किया गया है कि आबनाए हुरमुज में ईरान की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और जरूरत है कि ईरान इसका नतीजा भुगते। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वंकूवर में पेनल्टी शूट आउट में कोलंबिया को 3-4 गोल से हराकर 1954 के बाद से पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इजाफी वक्त के बाद भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थी। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में एटलांटा में अर्जेंटीना ने मिस्र को 2-3 गोल से हरा दिया। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 2 गोल से पीछे चल रहा था। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की तरफ से क्रिस्टियानो रोमारो ने 79वें मिनट में पहला गोल किया।

0: इसके बाद 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया और एंजो फर्नांडेज ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके अर्जेंटीना की जीत की राह हमवार कर दी। मर्दों की क्रिकेट में नॉटिंगम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर कल रात तीसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। इस तरह इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने भारत के सामने 202 रन का निशान रखा था, लेकिन भारत की पूरी टीम 11 ओवर्स और चार गेंदों में सिर्फ 76 रन बनाकर आउट हो गई। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत इंडोनेशिया में शराकतदारी के सुनहरे बाब का आगाज। वजीर आजम मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजे जाने की खबर को भी अखबारात ने पहले सफ़े पर पेश किया है। माहौलियाती तहफ़ के बगैर तरक्की सरासर बेमाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को इनकलाब और दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने केरलम के वायनाड में बड़े पैमाने पर चट्टान खिसकने के वाकये में कम से कम 3 अफराद के हलाक और मुतादे के जख्मी होने की खबर को अपने पहले सफ़े पर शाये किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद बैन अलाक्वामी खबरों की सुर्खियाँ इस तरह हैं, धमकियाँ जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुजाकरात शुरू नहीं होंगे, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का बयान, अमेरिका का तुर्किया पर आई पाबंदियां खत्म करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक़वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वजीर आजम के दफ्तर ने अलनीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाब्तगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
3: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
4: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
3: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
4: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
3: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बिहार समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना की शुरुआत की। 20 लाख से अधिक किसान और कृषि उद्यमियों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। कहा, इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ मिलेगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए नियमों के तहत होगा पीएचडी में प्रवेश। 7.5 सीजीपीए पर सीधे होगा पीएचडी में दाखिला। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए नियमों के तहत पीएचडी में प्रवेश दिया जाएगा। लोक भवन ने इस संबंध में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज पीएचडी ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट।
3: नए नियमों के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी 7.5 सीजीपी या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1 वर्षीय मास्टर डिग्री के बिना ही सीधे पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे। वहीं 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को 2 वर्षीय स्नातकोत्तर या 4 वर्षीय स्नातक के बाद 1 वर्षीय मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी। ये नियम 4 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। नई व्यवस्था के तहत पीएचडी में प्रवेश केवल यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। पीएचडी की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष से अधिकतम 6 वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में शोधार्थियों को 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। समाचार कक्ष से राहुल।

0: कुमार।
1: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद आएगा। श्री तिवारी ने विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभाग के सभी कार्य तय समय के भीतर पूरा करने और प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई पर वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। ये राज्य आकांक्षी वन श्रेणी में बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ ने इस सूची में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। इसमें लगभग 15 लाख स्कूल, 1 करोड़ से अधिक शिक्षक और 25 करोड़ छात्र शामिल हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन साक्ष्य ही स्वीकार्य करने का निर्णय लिया है। विभागीय सचिव जय सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देश के अनुसार राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली RCMS के तहत दायर किसी भी वाद की सुनवाई के दौरान आवेदक या विपक्षी से भौतिक साक्ष्य अथवा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। इनके स्थान पर ऑनलाइन साक्ष्य ही स्वीकार्य होंगे। साथ ही सभी राजस्व न्यायालयों को निर्देशित किया गया है कि सुनवाई के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य या दस्तावेज की आवश्यकता होने पर संबंधित पक्षकारों को उसे RCMS पोर्टल पर ही अपलोड करने के निर्देश दिए जाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य में लागू विकसित भारत जी राम जी योजना के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है। इसी सिलसिले में मंत्रालय का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मुख्य लेखा नियंत्रक अखिलेश झा, उप सचिव डॉक्टर मोनिका और वरीय लेखा पदाधिकारी विपिन बांगर ने पटना के मुख्य सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। टीम आज पश्चिम चंपारण जिले का दौरा कर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। श्री नवीन पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही एनडीए घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। श्री नवीन 10 जुलाई को पटना में आयोजित एनडीए के 5 घटक दलों की बैठक में भाग लेंगे। अररिया, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज जिले ने लिम्फेटिक फाइलेरिया हाथीपाव मुक्त जिला बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। ये जिले अब फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के निगरानी चरण में प्रवेश कर गए हैं। इन जिलों ने वर्ष 2026 के ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे 1 के सभी पात्रता मानदंड को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कार्यक्रम के तहत अब यहां दवा वितरण की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज बुलाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अपराह्न 5 बजे ये बैठक सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 1 सप्ताह तक बारिश की अनुकूल परिस्थितियां

0: बनी रहेंगी। विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों में, उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के कुछ स्थानों में, जबकि उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा राज्य के अररिया, भभुआ, किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना समेत कई स्थानों पर बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों का अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इस बीच विभाग ने अगले 4 से 5 दिन के दौरान कई स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर आज और कल रात के समय यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने सेतु के बेली ब्रिज के स्थान पर किए जाने वाले स्थायी पुनर्स्थापना कार्य के मद्देनजर यह फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IIT पटना की विशेषज्ञ टीम पुल की तकनीकी जांच और निरीक्षण करेगी। यह निरीक्षण रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किया जाएगा। समस्तीपुर सहरसा रेलखंड के मानसी सहरसा स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण के लिए जल्द ही निविदा का प्रकाशन किया जाएगा। समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया कि दिसंबर महीने से दोहरीकरण का काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा और इस पर 499 करोड़ रुपए की लागत आएगी। DRM श्री मिश्रा ने बताया कि दोहरीकरण परियोजना के तहत 8 बड़े पुलों का निर्माण होगा। लखीसराय के समाहरणालय परिसर में 21 जुलाई से 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की ओर से आयोजित इस शिविर में प्रतिदिन 55 आवेदन का निष्पादन किया जाएगा। इच्छुक नागरिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल www.passportindia.gov.in पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेकर पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर लखीसराय को स्थल के रूप में चुन सकते हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने वैशाली जिले के हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय के लिपिक सुमन सौरभ को 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। लिपिक पर लाइसेंस बहाल करने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। भोजपुर जिले की स्थानीय अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी देवभूषण को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727 पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक 4-पहिया वाहन से 100 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये शराब वाहन के चेचिस में छिपाकर ले जाई जा रही थी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 क्रिकेट श्रृंखला के 3रे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। मैच में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 13 रन बनाए। श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को नहीं लगेगा टोल। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने चौंकाया, युवा मोर्चा के अभिषेक कुमार बने प्रत्याशी। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, ग्राहकों को मिल सकता है बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदने का विकल्प, चल रहा है अंतर मंत्रालय विमर्श। प्रभात खबर लिखता है, अयोध्या की तरह संवरेगा बाबा धाम, बनेगा कॉरिडोर, NIT पटना बना रहा है मास्टर प्लान। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार मानवाधिकार आयोग का बड़ा फैसला, भरत तिवारी के माता पिता को मुआवजा।

0: मुआवजा दे बिहार सरकार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बिहार समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना की शुरुआत की। 20 लाख से अधिक किसान और कृषि उद्यमियों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। कहा, इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ मिलेगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए नियमों के तहत होगा पीएचडी में प्रवेश। 7.5 सीजीपीए पर सीधे होगा पीएचडी में दाखिला। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: और इस गीत के बाद
5: छाया की

मीडियम वेव 205.6 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुने फिल्म संगीत कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का पहला गाना तुलसी कुमार और राहत फतेह अली खां के स्वर में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म से, संगीत प्रीतम का, गीतकार इरशाद कामिल।

अगला गाना गीतकार फैज अनवर का लिखा, श्रेया घोषाल और कुमार सानू के स्वर में। राउडी राठौर फिल्म के इस गीत को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी भागल

0: पुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग
1: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है लव ब्रेकअप जिंदगी फिल्म।

ये गीत आपने सुना लव ब्रेकअप्स जिंदगी फिल्म से। आइए अब सुने आरजू फिल्म का ये गाना उदित नारायण और साथी के स्वर में, बोल आनंद बख्शी के संगीत अनु मलिक ने तैयार किया है।

0: इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।
0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं शैलेश कुमार। आइए इनकी आवाज में सुने ये सुगम संगीत।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

सुगम संगीत में कलाकार थे शैलेश कुमार। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रातः के 10 बज चुके हैं। ये समय होता है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुने गीता दत्त की आवाज में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गाना। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है ओमकार प्रसाद नैयर ने।

आइए अब सुने किशोर कुमार को मिस्टर एक्स इन बॉम्बई फिल्म के इस गीत के लिए। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगला गाना संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का, मोहम्मद रफी और नंदा के स्वर में। जब जब फूल खिले फिल्म के इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

आइए आप सुने मुकेश और सुमन कल्याणपुर को साथ ही फिल्म के इस गीत के लिए। संगीत तैयार किया है नौशाद ने, अल्फाज हैं मजरूह सुल्तानपुरी के।

अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा ये गाना फर्ज फिल्म से। फर्ज फिल्म के इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

श्रोताओं, गुलजार के लिखे इस गीत को आवाज दी है आरती मुखर्जी ने। संगीत तैयार किया है राहुल देव वर्मन ने। फिल्म है मासूम।

0: फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। आइए सुने लोकगीत पवन कुमार राम के स्वर में। आरंभ में सुनिए पूर्वी।

लोकगीत आप सुन रहे थे पवन कुमार राम के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रातः के 10:45 होने वाले हैं। आइए अब सुने पटना केंद्र से समन्वित कार्यक्रम आओ साथ चलें।

के कार्यक्रम का प्रतिभा निखारने के लिए पढ़ाई के साथ साथ NSS जरूरी। आइए सुनते हैं इस विषय पर डॉक्टर अनुज कुमार से ली गई एक भेंटवार्ता। आपसे बातचीत कर रहे हैं हरेंद्र आजाद। तो लीजिए प्रस्तुत है आज का ये कार्यक्रम। आओ साथ चलें एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: नमस्कार, मैं हरेंद्र आजाद, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम आओ साथ चले में। और आज हम बातचीत करेंगे प्रतिभा निखारने के लिए पढ़ाई के साथ साथ NSS विषय पर। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं किसान कॉलेज शोहसराय नालंदा से NSS के प्रोग्राम ऑफिसर, साथ ही साथ आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर हैं, डॉक्टर अनुज कुमार सिंह जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर।
3: धन्यवाद
2: सर। इससे पहले कि हम लोग विषय पर बातचीत करें, हम जानते हैं कि हमारा देश भारत एक युवा राष्ट्र है और हमारे देश में तमाम प्रतिभावान युवा हैं, लेकिन युवाओं को सही डायरेक्शन मिल सके और युवाओं में खास करके वैसे छात्र जो महाविद्यालयों विद्यालयों के छात्र हैं, उनके जीवन में उनके विषय के ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, सेवा की भावना, परोपकार की भावना, राष्ट्रीय एकता चेतना की भावना कैसे डेवलप हो, इसको लेकर तमाम स्कीम चलती है हमारे देश में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि NCC है, स्काउट गाइड है और एक प्रमुख रूप से NSS है। तो आज हम विशेष रूप से फोकस करते हैं NSS पर। तो सबसे पहले हम आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि NSS आखिर होता क्या है और NSS से कैसे विद्यार्थी जुड़ते हैं, थोड़ा NSS के बारे में विस्तार से जानकारी दें सर।
3: धन्यवाद हरेंद्र जी, और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। सबसे पहले राष्ट्रीय सेवा योजना के अगर

0: फिलोसफी की बात की जाए तो यह एक गांधीयन बेस्ड फिलोसफी है।
1: जी
0: गांधी जी का जो दर्शन था कि सेवा भाव से सारे राष्ट्र में एक तरह से जो भी युवा वर्ग हैं खासकर वो आगे आने चाहिए, उसी बेस पर ये एस्टेब्लिश किया गया था। ये भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन आता है, योजना है। और बेसिकली ये 10+2 और जो महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इन सब के अंतर्गत ये प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया जाता है। और इसमें वो सारे बच्चे आते हैं जो वहाँ एडमिशन लेते हैं।
1: जी जी
0: ठीक है। इनका मेन उद्देश्य होता है कि शैक्षिक समुदाय की सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना।
1: जी जी।
0: इसका मतलब प्राथमिक अगर उद्देश्य देगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सेवा के माध्यम से शिक्षा
1: जी जी
0: किस तरह से वो हो उसके बदले। और 1969 में इसका एस्टेब्लिश हुआ जब गांधी जी का एक तरह से जन्म शताब्दी मनाया गया, उस समय इसको एस्टेब्लिश स्थापित किया गया था और उसी समय से ये चल रहा है।
1: जी जी।
0: और अगर अभी की हम बात करें तो 657 विश्वविद्यालय और लगभग 51 10+2 परिषदों और निदेशालय में विस्तृत हुआ है, जिसमें लगभग 20,669 कॉलेज और जिसमें 11,988 उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। लगभग 7.5 करोड़ से अधिक छात्र इसके वॉलंटियर बने हुए हैं।
1: जी जी। जो वॉलंटियर की बात हो रही है, एनएसएस में जो छात्र जुड़ते हैं उनको हम लोग स्वयं सेवक बोलते हैं और सेवा की भावना के साथ वे लोग ओतप्रोत होते हैं, तो इंट्री लेवल जैसा कि आपने बताया कि 11th से शुरू होता है, मतलब एनएसएस में कोई विद्यार्थी जुड़ना चाहता है तो 11th का छात्र होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी। और महाविद्यालय में जिस स्तर पे पीजी पीएचडी तक।
0: हाँ, पीएचडी तक।
1: जी जी।
0: पूरा ऊपर ओवरऑल होता है,
1: मतलब 11th क्लास के ऊपर के जितने छात्र हैं चाहे वो जिस हायर एजुकेशन तक जहाँ तक पहुँचे हों वे लोग एनएसएस के सक्रिय स्वयंसेवक बन सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसका मेन जो मोटो ही यही होता है कि जब छात्र जीवन स्टार्ट होता है एक तरह से और जब आप एक मैच्योर हायर एजुकेशन में जाते हो जहाँ से कि आपको शायद समझ होती है कि समाज में किस तरह की समस्याएं हैं, क्या परेशानी है, उसके प्रति किस तरह से आपको जागरूक बनाया जाए।
1: जी, जी।
0: देखेंगे तो इसको एक कुशल सामाजिक नेता बनाने का प्रयास किया जाता है, एक कुशल प्रशासक बनाने का प्रयास किया जाता है और एक व्यक्ति जो मानव स्वभाव को समझे,
1: क्या बात,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सारी चीजें दी जाती हैं।
1: जी जी। तो अब थोड़ी जानना चाहेंगे सर कि जो ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं, कुशल प्रशासक, नेतृत्व के गुण की क्षमता और सोसाइटी को जोड़कर एक साथ आगे बढ़ने की सेवा की भावना आप लोग डाल रहे हैं, तो जो आपकी तमाम गतिविधियां हैं एनएसएस वर्ष पर्यंत किस तरह की गतिविधियों का आयोजन करती है और कैसे बच्चे उसमें प्रतिभाग करते हैं?
0: देखिए, इसमें तो दो तरह की एक तरह से एक्टिविटी होती है। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर जो बनाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर बेसिकली चार तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। एक राष्ट्रीय एकता दिवस, इसमें 200 राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेलेक्ट होते हैं।
1: जी जी।
0: दूसरा होता है साहसिक कार्यक्रम, जिसमें आप जो भी हिमालयी क्षेत्र है या उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इसमें आप ट्रैकिंग, वाटर राफ्टिंग, पैरा सेलिंग, इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं।
1: जी जी।
0: तीसरा जो है एनएसएस गणतंत्र दिवस पर परेड शिविर का भी आयोजन करवाया जाता है।
1: जी जी।
0: जो दिल्ली में 26 जनवरी को परेड होता है उसमें इनको बुलाया जाता है। और चौथा होता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो विवेकानंद के 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। तो इसके अलग अलग वो देखेंगे, अगर एकता शिविर के आप पूछेंगे कि क्या इससे लाभ है, तो इसमें यह है कि एक जगह बहुत सारे जगह से लोग जुटते हैं तो एक समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को देखने को मिलता है, विविधतापूर्ण सांस्कृतिक इतिहास को जानने का मतलब समझ में आता है।
1: जी जी।
0: भारत के बारे में ज्ञान के जो राष्ट्रीय गौरव है उनके बारे में समझने का वो मिलता है। अगर आप साहसिक कार्यक्रम को देखेंगे तो ऑब्वियस है, इसमें जिस तरह का जोखिम लेने की क्षमता बढ़ाने की बात की जाती है, शारीरिक मानसिक शक्तियों में सुधार किस तरह से उसके प्रति अवेयर किया जाता है।
1: जी जी।
0: ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम किया जाता है। अगर आप कॉलेज स्तर पर बात करेंगे तो कॉलेज स्तर पर पूरा 1 ईयर का एक कैलेंडर बनता है।
1: जी जी।
0: जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करिकुलम तय होता है। अब उसमें है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा सप्ताह जो 12 से 19 जनवरी होता है, महिला दिवस है, वन दिवस है, स्वास्थ्य दिवस है, मजदूर दिवस है, पर्यावरण दिवस है, शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस जो 24 सितंबर को मनाया जाता है, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस, इस तरह से लगभग हम लोग मतलब 30-35 प्रोग्राम कैलेंडर में निर्धारित करते हैं जो कि फिक्स है। इसके अलावा टाइम टू टाइम कुछ कुछ चीजें करंट अवेयर को लेके भी हम लोग कराते हैं। जैसे अभी भारत सरकार का प्रोग्राम आया हुआ है मेरा वोट मेरा देश।
1: जी जी।
0: इस तरह करके
1: मतलब मतदान को लेकर के जागरूकता अगर बढ़ानी हो तो उसमें भी एनएसएस वॉलंटियर सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल करेंगे कि क्या एनएसएस के जो भी वॉलंटियर हैं एनएसएस से जुड़ते हैं तो उन्हें निसंदेह एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता होगा, तो उन्हें आगे चलकर नौकरी में या अन्य कार्यों में उसके माध्यम से उन्हें किस तरह का सहयोग मिलता है?
0: जी उनको मैं बताता चलूं कि नो डाउट इसके एनएसएस के जो भी वॉलंटियर जो भी संस्थाएं हैं उनको एजुकेशन लेते समय तो फायदा मिलता ही है कि एक सामाजिक सांस्कृतिक एकता को बनाए किस तरह से अवेयर रहे। साथ में आने वाले जिसे आगे आपको एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी में, अगर आप बीए में हैं पीजी में जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी उनको 2% का वो मिलता है छूट। ठीक है, जॉब में भी अगर एनएसएस वॉलंटियर है तो अलग अलग संस्था अलग अलग तरह से उनको ट्रीट करती है। ठीक है, जॉब में भी उनको एनएसएस की मार्फत अगर एनएसएस के आप वॉलंटियर हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता है।
1: निश्चित रूप से तो विद्यार्थियों के जीवन में तमाम लाभ हैं एनएसएस से जुड़ने के बाद, उन्हें जॉब में तो हेल्प मिल ही रहा है, साथ ही साथ सबसे बड़ी जो खूबी है कि वह अन्य विद्यार्थियों से अलग दिखते हैं, उनकी एक अलग पहचान होती है और समाज में वे लोग अलग तरीके से अपने कार्य करते हैं और लोगों में उनकी एक अलग छाप बनती है। आज इस संदर्भ में विशेष जानकारी देने के लिए डॉक्टर अनुज कुमार सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: आइए हम कार्यक्रम में आगे बात करते हैं, हमारे साथ कुछ एनएसएस वॉलंटियर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। अब हमारे साथ कार्यक्रम में नालंदा कॉलेज से जुड़ रही हैं मानसी कुमारी, आप एनएसएस वॉलंटियर हैं, आइए हम मानसी से जानते हैं। मानसी, आपने एनएसएस कब ज्वाइन किया?
2: सर एनएसएस मेरा 2021 में।
1: आपका लगभग 2 साल पूरे हो गए एनएसएस में काम करते हुए, और किस तरीके से आपके जीवन में एनएसएस में जुड़ने के बाद बदलाव हुए हैं, थोड़ा अपने बदलाव के बारे में बताएं।
2: पहले जो हमारे कॉलेज में हुआ तो बहुत सारा इस चीज से रिलेटेड एनएसएस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलने लगे, जैसे कि डिबेट हो गया, स्पीच कंपटीशन हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया और एक कम्युनिटी हेल्प हो गया। तो पहले इन सब चीजों में बहुत ये अंडर कॉन्फिडेंट थे, फिर धीरे धीरे एक कॉम्पिटिशन का आया भावना की नहीं लेना है लेना है, फिर सर लोग भी बोलते थे कि ये ट्राई किया जाए, तो लेकर के ये एक स्पीच वगैरह में तो ये काफी पहले बोलने में बहुत झिझक होता था, तो प्रोग्राम वगैरह में लेते लेते एक बोलने का कॉन्फिडेंस आया, फिर नुक्कड़ नाटक हमने किया था तो वो एक पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था जो कि ये बहुत ज्यादा एक पर्सनैलिटी में बहुत बूस्ट देता है कि हाँ किस तरीके से आप एक पब्लिक में जाकर के इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं कोई भी टॉपिक को लेकर के। फिर जाकर के हम लोग ने कम्युनिटी हेल्प किया था जो कि मैंने पहले नहीं किया था, इस चीज में जुड़ करके फिर सर लोग के हेल्प से भी हम लोगों ने बहुत सारा कपड़ा वगैरह बांटा था जाकर के, फिर उन लोगों से बात भी किया था कि क्या अभी क्या इशू चल रहा है, कैसा दिक्कत होता है ग्राउंड लेवल पे आकर के, क्योंकि हमेशा हम लोग ने किताबों में पढ़ा था कि ये दिक्कत होती है ये दिक्कत होती है, लेकिन फिर जाकर के ग्राउंड लेवल पे पता चला कि इस तरीके का भी दिक्कत आता है, तो वो लोग हम लोगों ने जाकर के वो मदद की।
1: क्या बात है, बहुत सही कहा मानसी आपने, यहाँ से जुड़ने के बाद आपको देश और समाज में जो आवश्यकताएं हैं जिस तरह की सहयोग की लोगों को जरूरत होती है उसको बखूबी समझने का आप लोगों को अवसर मिलता है और आप लोग इस चीज को करते हैं। चलिए हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
1: अब हमारे साथ कार्यक्रम में एक और एनएसएस वॉलंटियर पीयूष राज हमसे जुड़ रहे हैं, आइए हम पीयूष से जानते हैं कि उनके जीवन में एनएसएस ज्वाइन करने के बाद किस तरीके के बदलाव आए।
3: सर हम जब स्कूली शिक्षा जब ग्रहण कर रहे थे उसी दरमियान ऐसा देखते थे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आपस में मिल के बहुत सारे साफ सफाई वाले कैंपेन चलाते थे, प्लांटेशन करते थे, उसी समय से हमारा एक अंदर से भावना ऐसा जागृत होता था कि हम भी ऐसा कुछ करें ताकि लोगों के बीच में सोशल हो पाए। जब हम कॉलेज में जब आए तो वहां हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक समूह बना करके आगे बढ़ रहे, कहीं प्लांटेशन कर रहे, तो हमने भी उनसे जाके बोला कि हमें भी यह सब करना है, मतलब हमें भी सीखना है, तो उन्होंने बोला कि एनएसएस को, वही दरमियान एक भैया थे जो हमें बताए कि ज्वाइन करो, और इसमें ज्वाइन करने से हमारा ये भी फायदा हुआ सर, इसमें हमने ग्रुप वर्क को बहुत अच्छे से सीखा, और ग्रुप वर्क में किस तरीके के लोग होते हैं, जैसे अलग अलग माइंडसेट के बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें सबों के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के साथ चला जाए, उसमें लीडरशिप एक स्किल भी बहुत अच्छे से सर डेवलप हुआ कि हम लोग किस तरीके से एक समूह में बन करके एकत्रित होकर के आगे बढ़े एकदम, और जब ऐसे जब इंडिविजुअल बढ़ेंगे और टीम वर्क के साथ बढ़ेंगे तो टीम वर्क हमेशा ज्यादा प्रोग्रेस करता है, तो इसमें हमने टीम वर्क को भी बहुत अच्छे से सीखा, और चेंजेस भी हमारे अंदर बहुत आए। पहले जो एक होता है सर हेजिटेशन होता है कि लोगों के सामने हमें बोलना किस तरीके से, डिबेट वगैरह से अच्छे खासा स्किल डेवलप किया है।
1: क्या बात है, मतलब कुल मिलाकर पीयूष आपके अंदर एक तरह से लीडरशिप डेवलप हुआ, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ, और आप किसी भी मौके पर बोलने में आपकी जो झिझक थी वो दूर हुआ, और सोसाइटी से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं लोगों के साथ, कैसे समूह में कार्य करते हैं, ये सारे फायदे आपके जीवन में हुए। आज हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए पीयूष आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
1: अब हमारे साथ एक और NSS वॉलंटियर आशीष रंजन जुड़ रहे हैं। आशीष, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: सर, मैंने NSS कैंप लगभग 2 साल पहले NSS को ज्वाइन किया था। अगर मेरे व्यक्तिगत के तौर पर देखा जाए कि मेरे अंदर कौन कौन से चेंज आए, तो अगर मैं कहूँ तो मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति था। इंट्रोवर्ट कहने का मतलब अंतर्मुखी। मैं अपने बातों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता था, अपने बातों को दूसरों के सामने रख नहीं पाता था। मगर जब से मैंने NSS ज्वाइन किया तो बहुत सारे कैंप होने लगे और बहुत सारे हम लोगों ने प्रोग्राम किया, बहुत सारा हम लोगों ने डिबेट प्रोग्राम रखा। उसमें हम लोगों ने इंट्रैक्शन किया एक दूसरे के साथ, अपने साथियों के साथ। कुछ मैंने बातें सुनी और कुछ मैंने अपनी बातें कही। उस दौरान मैंने अपने झिझक को दूर किया और दूसरा जो पैमाना कि मैंने अपनी सोच में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। क्योंकि जो NSS का मोटो होता है कि हम लोग नॉट मी बट यू के बारे में सोचते हैं, यानी मैंने अपने से पहले दूसरों को रखना सीखा कि हम कैसे दूसरे की मदद कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने ये सीखा कि टीम वर्क में कितनी ताकत होती है, क्योंकि इंडिविजुअली आप सोच सकते हैं, मगर अगर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है और एक्सक्यूट करने की बात आती है तो आप टीम वर्क में ही फोकस कर सकते हो, क्योंकि टीम वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने देखा कि कैसे आप अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्रों में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप अपने आप को, अपने दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, ये सब मैंने सीखा।
1: निसंदेह आशीष, आप लोग सोसाइटी के एक एसेट बन जाते हैं, एसेट के रूप में, और तमाम जो अन्य छात्र हैं उनमें और एक NSS का जो वॉलंटियर होता है उसमें डिफरेंस नजर आने लगता है। और जैसा कि आप अपनी आप बीती या अनुभव बता रहे हैं, उस हिसाब से आप काफ़ी बेहतर पहले से महसूस कर रहे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल आशीष आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको NSS ज्वाइन करने के बाद और NSS के जो तमाम गतिविधियाँ हैं उनमें पार्टिसिपेट करने की वजह से क्या आपके पढ़ाई पर कभी प्रतिकूल असर पड़ता है? पढ़ने में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होता है?
4: नहीं सर, पढ़ने में तो कोई डिस्टरबेंस आया नहीं, क्योंकि आप दोनों को साथ में लेकर के चल सकते हैं। NSS कैंप आपको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है और आपको कई सारे स्किल आपके साथ जोड़े हुए चलते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ अपने कुशलता पर भी आप फोकस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से और मेरे मद्देनजर पढ़ाई पर हम लोग कोई बोझ नहीं पड़ता इससे जुड़ने के बाद।
1: तो अन्य जो छात्र हैं आज हम लोगों को सुन रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे NSS के बारे में?
4: अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर ना करें, अपने कॉलेज में जाकर के संपर्क करें, जो इसके प्रधान है, जो इसके हेड है। अगर वो अपने समाज के प्रति कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ कुशलता को जोड़ना चाहते हैं, अपनी योग्यता को और निखारना चाहते हैं, तो NSS को ज्वाइन करें और सोसाइटी के प्रति अपने डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ योगदान कर सके।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आज हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे प्रतिभा निखारने के लिए पढ़ाई के साथ साथ NSS, और इस विषय पर हमारे साथ कई NSS वॉलंटियर और NSS के कार्यक्रम अधिकारी जुड़े। और आज इस कार्यक्रम को अब हम यहीं अलविदा कहते हैं, फिर एक नए जानकारी के साथ कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे अगले बुधवार को इसी समय। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से के तहत नई फिल्मों के संगीत को। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बॉर्डर 2 के इस गीत से, जिसे गाया है सोनू निगम और पलक मुछाल ने।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म धड़क 2 का ये गीत, जिसे गाया है दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक कोहली ने। गुरप्रीत सैनी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है रोचक कोहली ने।

अभी आपने सुना फिल्म धुरंधर का गीत अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे शरद कामिल ने, धुन बनाई थी शाश्वत सचदेव ने। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए फिल्म सैयारा से। इस गीत को गाया है जुबिन नौटियाल ने। गीत और संगीत द रिश का है।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म नाम का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हिमेश रेशमिया।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय।
4: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत गुलदस्ता।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम गुलदस्ता। मैं हूं आपके अपने मीनू और आज फिर लेकर आई हूं फिल्म संगीत के ऐसे महकते हुए फूल जिनकी खुशबू कभी पुरानी नहीं होती। दोस्तों, फिल्म गीत सिर्फ सुर और शब्द नहीं होते, ये तो हमारी जिंदगी के अनगिनत एहसासों के साथी होते हैं। कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिलते हैं तो कभी याद बनकर आंखों में ठहर जाते हैं। इन्हीं अनमोल नगमों को पिरोकर हमने सजाया है आज का ये खूबसूरत गुलदस्ता। तो आइए कुछ पल रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर चलते हैं और संगीत के इस सुरीली दुनिया में खो जाते हैं।

दोस्तों, कुछ इंतज़ार ऐसे होते हैं जो मौसम से भी लंबे हो जाते हैं। सावन आता है, बादल बरसते हैं, हवाएं खुशबू बिखेरती हैं, लेकिन जब कोई अपना साथ न हो तो हर फुहार अधूरी सी लगती है। कहते हैं कि विरह की भी अपनी एक खूबसूरती होती है। वो दिल को तो तड़पाता है, मगर उसी तड़प में कुछ ऐसे गीत जन्म लेते हैं जो बरसों बाद भी दिल की धड़कनों में गूंजते रहते हैं। बरसते बादलों से बस इतनी सी इल्तिजा है कि मेरे महबूब तक मेरी तन्हाई की सदा पहुंचा देना। बरसते बादलों से बस इतनी सी इल्तिजा है कि मेरे महबूब तक मेरी तन्हाई की सदा पहुंचा देना। कहना, सावन तो हर साल लौट आता है, मगर उसके बिना हर मौसम अधूरा रह जाता है।

हवा ने छेड़ा जब सावन का तराना, दिल ने फिर याद किया वही पुराना फसाना। बरसात तो आई मगर ये कमी रह गई, भीगता रहा मौसम और सूना रहा आशियाना। दोस्तों, प्रेम जब अपनी सीमाएं पार कर जाता है तो वो केवल एक रिश्ता नहीं रह जाता, वो भक्ति बन जाता है, समर्पण बन जाता है। शायद इसलिए राधा का नाम श्याम के साथ लिया जाता है और मीरा का प्रेम सदियों बाद भी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। बांसुरी की धुन में एक ऐसी पुकार होती है जो कानों से ज्यादा दिल सुनता है। उस पुकार में कभी मिलन की खुशी होती है तो कभी विरह की मिठास। यही तो प्रेम का सबसे सुंदर रूप है, जहां चाहत में कोई स्वार्थ नहीं, केवल अपनापन और विश्वास होता है। बांसुरी की तान में जब श्याम का संदेश उतरता है तो हर धड़कन में राधा का ही नाम बिखरता है। न राधा ने प्रेम की कोई शर्त रखी, न मीरा ने दुनिया की परवाह की। जिसे श्याम मिल जाए मन के मंदिर में, उसके लिए हर सांस ही एक आरती बन जाती है।

कहते हैं दोस्तों कि समय बदलता है, लेकिन कभी कभी समय से पहले इंसान बदल जाते हैं। वही चेहरे, वही मुस्कानें, वही रिश्ते, पर उनके मायने कुछ और हो जाते हैं। जिन पर कभी आंख मूंद कर भरोसा था, वक्त की धूप छांव में वही अजनबी से लगने लगते हैं। जिंदगी शायद यही सिखाती है कि बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन हर बदलाव खूबसूरत नहीं होता। कुछ बदलाव मुस्कुराहटें छीन लेते हैं, कुछ भरोसे और कुछ रिश्तों की गर्माहट। इन्हीं बदलते चेहरे और बदलते व्यवहार की सच्चाई को बेहद सादगी और गहराई से बयां करता है अगला गीत। चेहरे तो वही रहे मगर किरदार बदल गए। कुछ अपने थे जो वक्त के साथ अजनबी निकल गए। शिकायत आईने से कैसी करें हम, बदलने वाले तो अपने ही चेहरे थे। बस चेहरे नहीं, इरादे बदल गए।

वो खत कभी आया ही नहीं, मगर इंतजार आज भी जिंदा है। उसके नाम का एक मौसम दिल में आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं भूल जाओ उसे, मगर कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो उम्र भर अधूरी रहकर भी जिंदा रहती हैं। बिछड़ना हमेशा नाराजगी का नाम नहीं होता दोस्तों। कभी कभी मोहब्बत इतनी गहरी होती है कि इंसान अपने सबसे अजीज को रोकता नहीं, बस उसकी सलामती की दुआएं करता है। कुछ रिश्ते साथ चलने के लिए नहीं, बल्कि दिल में उम्र भर बसे रहने के लिए होते हैं। विदा के लम्हे बड़े अजीब होते हैं। होठ मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, मगर आंखें सच कह देती हैं। उस पल दिल के पास शब्द नहीं बचते, सिर्फ दुआएं बचती हैं।

जहां भी रहो खुश रहो आबाद रहो। रोक लेते अगर मोहब्बत सिर्फ चाहने से मिलती, मगर कुछ सफर दुआओं के सहारे ही पूरे होते हैं। दोस्तों, हमने तो बस इतना कहा था, खुश रहना और तुम्हें अपनी हर दुआ में खुदा के हवाले कर दिया।

दोस्तों, हर खूबसूरत सफर की तरह आज का ये संगीतमय सफर भी यही अपनी मंजिल पर पहुंचता है। उम्मीद है आज के इन सदाबहार नगमों ने कभी आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी होगी तो कभी किसी भूली बिसरी याद को हल्के से छू लिया होगा। संगीत को तो यही खूबी है दोस्तों कि बिना कुछ कहे भी ये दिल की बात कह देता है और कभी कभी हमारे उन जज्बातों को भी आवाज़ दे देता है जिन्हें हम खुद शब्द नहीं दे पाते। इन्हीं मीठी यादों और सुरों की महक के साथ अब मुझे आपसे इजाज़त दीजिए। दुआ है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों, सुकून और मोहब्बत के सुरों से आबाद हो। फिर मुलाकात होगी गुलदस्ता के अगले अंक में कुछ नए पुराने सुरीले नगमों और ढेर सारे दिल की बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे प्यारी धुन वही है जो दिलों को जोड़ती है।

अभी आप सुन रहे थे कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक।

0: नारी लोक सुन रही सभी बहनों को भारती का नमस्कार। बहनों, आज के इस नारी लोक को आरंभ करने से पहले हम बता दें कि आज इसमें क्या खास है। बहनों, आज हम सुनेंगी कंपेयरिंग आधारित कार्यक्रम। आज की कंपेयरिंग का विषय होगा अपने हुनर को पहचाने। बहनों, आइए अपने कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले सुनते हैं कुछ खास बातें और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, अंतराल के बाद हम अपने कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करते हैं। बहनों, हर व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी है। ये बातें सैद्धांतिक रूप से ही नहीं वरन व्यावहारिक रूप में भी सत्य है। हर व्यक्ति बहुत कुछ खास हुनर रखता है, ज़रूरत है तो सिर्फ इसको पहचानने की। वैसे कार्य हम मनोयोग पूर्वक करते हैं जिसे करने में हमारा मन ज़्यादा लगता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसे करने में हमें थकान नहीं होती, हम बार बार उसे करना चाहते हैं या उसे कर हम खुशी महसूस करते हैं, या यूं कहिए कि हमें उस चीज़ की खास प्रतिभा होती है। तो अपने बारे में ज़रा सोचिए बहनों, कब तक हम अपनी अभिरुचियों को दबा कर रखेंगे। बहनों, आप इस पर विचार करिए और सुनते हैं हम एक प्यारा सा गीत।

बहनों, हम महिलाओं के साथ यह बात ज्यादा सोचने की है कि हमें ऐसी कौन सी छिपी प्रतिभा है जिससे हम अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो वक्त हम महिलाओं को जैसे खाने दौड़ता है और अचानक हमारे जीवन में खालीपन आ जाता है और हम तब अपने लिए काम ढूंढते हैं। हम तब सोचते हैं कि हमारा वक्त कैसे बीते। बहनों, यहीं पर हमें अपने हुनर के बारे में सोचना है ताकि हम अपने हुनर को पहचान कर खुद के लिए व्यस्तता ढूंढ सकें। ऐसा करके हम खुद के लिए काम नहीं ढूंढते, वरन अपने हम अर्थोपार्जन भी कर सकते हैं। हमारी छिपी प्रतिभा हमारे परिवार के लिए आर्थिक आधार साबित हो सकती है। बहनों, इस पर विचार कर हम अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। जरूरत है कि अपनी प्रतिभा को पहचाने। बहनों, चलिए थोड़ा रुकते हैं और उठाते हैं संगीत का आनंद।

बहनों, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अपने हुनर को पहचाने कैसे। तो बहनों, हमें इसकी पहचान के लिए उन गतिविधियों की सूची बनानी होगी जिन्हें करते हुए हम समय का ध्यान भूल जाते हैं, या जो काम दूसरों को मुश्किल लगते हैं आपको आसान, ऐसे विषयों पर ध्यान दें जिसकी आप अक्सर तारीफ सुनते हैं, और अलग अलग चीज़ों को याद करें। बहनों, बचपन के शौक को याद करें, हो सकता है आज वैसा करना आपके लिए आज भी आकर्षक हो। अक्सर बचपन के शौक बाद की जिम्मेदारियों में दब जाते हैं, अतः अपने को समय दें, दूसरों की सलाह लें। अक्सर हम कुछ भी करते हैं तो वह कैसा है, उसमें क्या बेहतरी की संभावना है, इस पर लोगों की राय लें। लोगों की सलाह हमारे लिए नई दिशा देने का काम करती है, और उससे उचित मार्गदर्शन पाकर हम काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। तो आइए बहनों, इस बात पर आप भी ज़रा गौर करें और इस गीत को सुनते चलें। इसे हम खास आपके लिए ही लेकर आए हैं।

बहनों, हम बहुत कुछ कर सकती हैं। हम में से कुछ अच्छा खाना बनाती हैं, तो कुछ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि गृह कार्य अच्छा करती हैं। तो कोई इंटीरियर डेकोरेशन अच्छा कर सकती हैं, तो किसी को पशु पक्षी की सेवा, समाज सेवा में दिलचस्पी है। तो बहनों, डरिए मत, इन चीज़ों के बारे में सोचिए, काम आरंभ करिए, समाज में आपकी पहचान बनेगी, आप अपने काम से, नाम से जानी जाएंगी। यह आपका और आपके हुनर का ही तो सम्मान है, यही हमारी सही पहचान होगी। और बहनों, प्रकृति से सीखें। आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से ही सीखने की ज़रूरत है, जहाँ हर तरह के मौसम की विविधता है, चाहे वह पतझड़ हो, ग्रीष्म हो या कठोर शीत। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी प्रकृति स्वयं को हरा भरा रखने का सामर्थ्य रखती है और पूरी जिजीविषा के साथ विपरीत मौसम के बावजूद उल्लास में खड़ी मिलती है। आइए बहनों, हम भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य का दामन थामे रखें, खुद को संयत रखें और खुद की प्रतिभा को पहचानें, अपनी क्षमता को समझें। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। बहनों, आइए चलते चलते सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
1: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
1: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
1: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
1: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
1: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
1: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
1: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
1: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
1: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
1: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
1: जी। विमलेश जी श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
1: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
1: जी। तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओं आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
3: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
3: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
3: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर, इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नेजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आइए।
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?
2: धन्यवाद।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
0: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं, एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग में सुनिए केदार प्रसाद कुशवाहा के गाए लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनते हैं शिव भजन।

श्रोताओं, हमें खेद है कि तकनीकी खराबी के कारण इस लोकगीत को हम आपको नहीं सुनवा सके। आइए अब सुनते हैं रणवीर सिंह की आवाज में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं रणवीर सिंह।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग। श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम को हम पुनः जारी रखेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद दोपहर 1:20 पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने शुरू की प्रगति परियोजना, झारखंड समेत 8 राज्यों के 20 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची को देंगे बड़ी सौगात, 2 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3.5 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 3 महीने की राशि एक मुश्त हस्तांतरित। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को डीवीसी के स्थापना दिवस पर मिले 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर से सम्मानित। और जमशेदपुर के चर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मैनेजर समेत 3 और आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश के 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची में 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वे आज मधुकम में 1,87,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली RCC नाली और सड़क कालीकरण का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा हातमा में 34,00,000 रुपए की लागत से आयुष्मान आरोग्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नई दिल्ली में आज से आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन को राज्य में निवेश बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पहल से देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
2: हम लोगों ने तो देखा है, हाथी उड़ाने वाली सरकार भी हम लोगों ने देखा है। नौकरियों देने के नाम पर करोड़ों करोड़ों की लूट हुई और नौकरियां मिलती थी ATM में गार्ड। तो पहली बार एक ईमानदार सरकार पिछले 6-6.5 वर्षों में और जिस सोच के साथ माननीय हेमंत जी आगे बढ़ रहे हैं, निसंदेह झारखंड राज्य अग्रणी राज्य, जो अगुआ राज्य है, विकसित राज्य है, उस श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में होंगे।
0: वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि ध्वस्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के बीच सरकार दिल्ली में सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है।
3: यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को रोजगार मिले, लेकिन मुख्यमंत्री जी इससे पहले डावोस, स्वीडन, स्पेन और इंग्लैंड की यात्रा कर आए थे। करोड़ रुपए फूके गए थे उस यात्रा में, 1,00,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने की बात हुई थी। तो मुख्यमंत्री जी को इस समिट के पहले, जो इनकी पहले की यात्रा है जिसमें करीब 20 करोड़ रुपया फूका गया है, उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट आया।
0: रांची जिले की 3,66,000 से अधिक महिला लाभुकों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 3 महीने की राशि एक मुश्त भेज दी गई है। आधार आधारित DBT के माध्यम से प्रत्येक लाभुक को 7,500 रुपए मिले हैं। इस मद में कुल 274 करोड़ रुपए से अधिक का पारदर्शी भुगतान किया गया है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख संजय कुमार ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में MRMR 2.0 अभियान के तहत राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने तसर उत्पादन की नवीन तकनीकों, डिजिटल मॉनिटरिंग और गुणवत्ता सुधार पर

0: विचार विमर्श किया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के केंदुआडीह में भू धसान और गैस रिसाव को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी बैठक की है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि बंद पड़ी धनबाद बोकारो मुख्य सड़क को खोलने से पहले BCCL, IIT और सिम्फर की निगरानी में वैज्ञानिक जांच कराएगा।
1: घटना है ये भूदशान की या गैस निकलने की, ये बहुत पुरानी घटना है, 1980 से बता रहे हैं, लगातार हो रही है, तो डेंजर जोन तो है, तो इसमें कोई मिडिल पाथ निकलना चाहिए। तो हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि जो टेक्निकल एजेंसीज हैं, BGMS है, ITISM है, सिम्फर है, उनके भी एक्सपर्ट थे, तो हम लोगों ने सब में मिलकर एक ओपिनियन दिया है कि हम लोग एक SOP देंगे, जिस SOP के तहत BCCL और जिला प्रशासन मिलकर उस जगह को चेक करेगा।
0: जमशेदपुर के चर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस ने मैनेजर समेत 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। SSP एहतिशाम वकारिब ने बताया कि इनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, चापड़ और गुप्ती जैसे घातक हथियार बरामद किए गए हैं। इस मामले में अब तक 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं।
2: पूर्व में 5 अभियुक्त को भेजा गया है और आज 4 अभियुक्त को भेजा जा रहा है। जो हमारी SIT बनी थी वो लगातार इस पे काम कर रही है पिछले 1 वीक से, और इसमें हमें लगातार सफलता मिली है, जिसमें अब तक जो भी नामजद अभियुक्त थे गिरफ्तार किए गए हैं, 2 बच गए हैं जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 465 अंक फिसल कर 77,716 पर, जबकि निफ्टी 141 अंक गिरकर 24,258 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,38,000 रुपये प्रति किलो है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्र की अध्यक्षता में यह बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारी संवाददाता ने बताया कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
3: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कल राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार से मुलाकात की। खेल मंत्री के आवास पर हुई इस बैठक में झारखंड में हॉकी के विकास और स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने शुरू की प्रगति परियोजना, झारखंड समेत 8 राज्यों के 20,00,000 किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची को देंगे बड़ी सौगात, 2 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले के 3.5 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 3 महीने की राशि एकमुश्त हस्तांतरित। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को DVC के स्थापना दिवस पर मिले 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर से सम्मानित। और जमशेदपुर के चर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मैनेजर समेत 3 और आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग, कलाकार थे रणवीर सिंह। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

सभी श्रोता बहनों को आरू का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, मानसून इस बार काफ़ी लेट से आई है और अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि मानसून ने दस्तक दे दी है, क्योंकि जैसे वर्षा होनी चाहिए थी वैसे हो नहीं रही। गर्मी, तेज़ धूप और उमस से तो हाल बेहाल ही है। बहनों, ऐसे में खूब पानी पीना, उमस की वजह से घर में सीलन ना हो इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सुबह में खिड़की दरवाजे अवश्य खोला करें, जिससे ताजी हवा का आगमन आपके घर आंगन में हो एवं आप ताजी हवा में सांस ले सकें। बहनों, आज है 8 जुलाई और आज हम लोग वैश्विक स्तर पर मना रहे हैं त्वचा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और देखभाल का महापर्व विश्व त्वचा दिवस। बहनों, मानव शरीर का सबसे बड़ा, सबसे बाहरी और सबसे संवेदनशील अंग हमारी त्वचा यानी कि हमारा स्किन है। यह न केवल हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करने वाली एक अभेद दीवार है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व और समग्र स्वास्थ्य का एक आईना भी है। बहनों, अक्सर लोग त्वचा की देखभाल को केवल खूबसूरती या कॉस्मेटिक्स से जोड़कर देखते हैं, जबकि इसका सीधा संबंध हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से है। इसी सोच को बदलने और त्वचा रोगों के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 8 जुलाई को विश्व त्वचा दिवस मनाया जाता है। बहनों, यह दिन हमें याद दिलाता है कि त्वचा की देखभाल कोई विलासिता नहीं बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। बहनों, विश्व त्वचा दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल लीग ऑफ डर्मेटोलॉजिकल सोसाइटीज और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर डर्मेटोलॉजी IFT जैसे वैश्विक संगठनों के प्रयासों से हुई थी। इसे मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: त्वचा रोगों के प्रति जागरूकता फैलाना। बहनों, सोराइसिस, एक्जिमा, विटिलिगो जिसे सफ़ेद दाग भी कहते हैं और त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में समाज में फैली भ्रांतियों और स्टिग्मा को मिटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही समय पर इलाज को बढ़ावा देना, जिससे लोगों को यह समझाना कि त्वचा की मामूली सी दिखने वाली समस्या भी किसी गंभीर आंतरिक बीमारी का संकेत हो सकती है। बहनों, दुनिया के पिछड़े और विकासशील देशों में त्वचा विशेषज्ञों जिन्हें हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं उनकी पहुँच और इलाज को सुलभ बनाना, साथ ही हमारे शरीर का जो सुरक्षा कवच त्वचा है इसके जैविक दृष्टिकोण से त्वचा हमारे शरीर के लिए एक मल्टीटास्किंग अंग की तरह काम करती है। इसके मुख्य कार्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे हानिकारक तत्वों से रक्षा करना भी जरूरी है। यह पर्यावरण में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, धूल, मिट्टी और हानिकारक पराबैंगनी किरणें जिसे हम UV रेज कहते हैं को शरीर के भीतर प्रवेश करने से रोकती है। साथ ही बहनों, गर्मियों में पसीने के माध्यम से और सर्दियों में छिद्रों को सिकोड़कर त्वचा शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखती है। जब सुबह की हल्की धूप हमारी त्वचा पर पड़ती है तो यह शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक विटामिन डी का संश्लेषण करती है। साथ ही स्पर्श, दर्द, गर्मी और ठंडक का एहसास हमें त्वचा में मौजूद तंत्रिकाओं के कारण ही होता है। बहनों, आज की आधुनिक जीवन शैली, बढ़ता प्रदूषण और खान पान में लापरवाही के कारण त्वचा संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ प्रमुख समस्याएं जो त्वचा संबंधी हो सकती हैं वो है एक्जिमा। बहनों, इसमें त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं और असहनीय खुजली होती है। यह अक्सर एलर्जी, रसायनों के संपर्क में आने या आनुवांशिक कारणों से होता है। दूसरा है सोराइसिस। यह एक ऑटोइम्यून स्थिति है जिसमें त्वचा की कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे त्वचा पर चांदी जैसी चमकदार और सूखी परतें जम जाती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर बहनों आता है मुहासे, जिसे हम एक्ने भी कहते हैं। हार्मोनल असंतुलन, तेलीय त्वचा और रोम छिद्रों के बंद होने के कारण युवाओं में यह समस्या सबसे आम है। मानसिक तनाव भी इसे बढ़ाता है। इसके बाद आता है विटिलिगो, जिसे सफ़ेद दाग कहते हैं। जब शरीर में मेलनिन यानी कि त्वचा को रंग देने वाला तत्व बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो त्वचा पर सफ़ेद पेच बनने लगते हैं।
यह कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, लेकिन समाज में इसके प्रति बहुत भेदभाव देखा जाता है। बहनों, त्वचा का कैंसर सूरज की तेज धूप के लंबे समय तक सीधे संपर्क में रहने से त्वचा के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में सनस्क्रीन का उपयोग ना करना इसका एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। बहनों, बदलते मौसम और आधुनिक जीवन शैली का हमारे त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। बहनों, आज के दौर में प्रदूषण गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल हवा को जहरीला बना रहे हैं। ये सूक्ष्म कण हमारी त्वचा के रोम छिद्रों में समाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, जिससे समय से पहले झुर्रियां, कालापन और असमय बुढ़ापा आने लगता है। इसके कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, नींद की कमी और फास्ट फूड का सेवन भी दूसरे कारण हो सकते हैं जो हमारे त्वचा पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। ये जंक फूड बहनों पेट के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, जिसका सीधा असर चेहरे पर मुहासे और बेजान त्वचा के रूप में दिखाई देता है। बहनों, स्वस्थ त्वचा के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि विश्व त्वचा दिवस पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों द्वारा एक सरल लेकिन प्रभावी स्किन केयर यानी कि त्वचा की देखभाल का एक रूटीन जो है उसे पालन करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए दिन में कम से कम दो बार सुबह और रात को सोने से पहले अपनी त्वचा के अनुसार अपने त्वचा की सफाई करें, और इसके बाद चाहे मौसम कोई भी क्यों ना हो और आपकी त्वचा तेलिए ही क्यों ना हो, एक अच्छा लाइट वेट मॉइस्चराइजर त्वचा की नमी को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही बहनों, जब भी घर से बाहर निकले तो निकलते समय नहीं बल्कि घर के अंदर रहते हुए भी कम से कम SPF 30 वाले सनस्क्रीन का उपयोग करें। यह आपको सनबर्न और स्किन कैंसर से बचाता है। इसके बाद बारी आती है हाइड्रेशन की, यानी कि बाहरी क्रीम से ज़्यादा जरूरी है आंतरिक नमी। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं, ताकि शरीर के टॉक्सिन्स जो हैं, जो जहरीले पदार्थ हैं हमारे शरीर में, वो बाहर निकल सके। और बहनों, कहते हैं कि त्वचा का और मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत गहरा संबंध है। वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा तन, यह एक कहावत त्वचा पर भी 100% लागू होती है। बहनों, एक चमकदार और स्वस्थ त्वचा के लिए हमारे आहार में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ होने चाहिए। मौसमी फल जैसे संतरा, अनार, पपीता, हरे पत्तेदार सब्जियां, बादाम, अखरोट और दही को अपनी थाली में अवश्य शामिल करें। चीनी और रिफाइंड ऑयल से दूरी बनाए रखें। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का त्वचा से गहरा संबंध है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जो त्वचा में अत्यधिक तेल के उत्पादन को बढ़ाता है और मुहासों का कारण बनता है। योग, ध्यान और 7-8 घंटे की गहरी नींद त्वचा को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज करती है। बहनों, इस विश्व त्वचा दिवस पर हमें समाज में त्वचा रोगों को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। सफ़ेद दाग या सोयरायसिस से पीड़ित व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। हमें यह समझना होगा कि ये बीमारियां छूने से नहीं फैलती। मानसिक सहयोग और संवेदनशीलता देकर हम पीड़ितों के आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट या सोशल मीडिया पर दिखने वाले रातों रात गोरा बनाने वाले या बिना डॉक्टरी सलाह से मिलने वाले स्टेरॉयड क्रीमों के भ्रामक विज्ञापनों से बचना चाहिए। ये क्रीम त्वचा की ऊपरी परत को अस्थायी रूप से पतली और ख़राब कर देती है। तो बहनों, 8 जुलाई का यह दिन केवल त्वचा की सुंदरता का जश्न

0: बहनों, इस बहुत ही सुंदर और मन को शांत कर देने वाले शिव भजन सुनने के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों, कहते हैं कि छोटा परिवार जो होता है वो सुख का आधार हो जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सीमित संसाधनों से बेहतर जीवन स्तर और खुशहाल माहौल बनाया जा सकता है। कम सदस्य होने के कारण परिवार में आर्थिक तनाव कम रहता है, आपसी प्रेम बढ़ता है और माता पिता हर बच्चे को पूरा समय और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो बहनों, इसी विषय पर एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनते हैं। वार्ता का विषय है छोटा परिवार सुख का आधार। वार्ताकार है आशा रानी।
1: छोटा परिवार सुख का आधार कहा गया है, अभी के समय में अति आवश्यक भी है। छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुख शांति समृद्धि एवं विकास का आधार है। परिवार में खर्च कम पड़ते हैं एवं उनके पालन पोषण में खर्च कम होते हैं। पालन पोषण में सुविधा होती है, संतुलित आहार मिल पाता है, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो पाती है, घर का सारा खर्च समय पर उपलब्ध हो पाते हैं, वस्त्र आदि आसानी से जुटा लेते हैं। अगर हम बड़े परिवारों की ओर देखते हैं तो असुविधा नज़र आते हैं। पर्याप्त मात्रा में अनाज साग सब्जी उस परिवार को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस तरह अगर जनसंख्या की रफ्तार बढ़ती गई तो क्या होगा? छोटे परिवार को अपनाने का संकल्प करना होगा। समाज में दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। अगर इस जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाया गया तो आगे वर्षों में कैसी स्थिति होगी? इसलिए सोच को बदलना होगा। देश की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाना होगा। हम दो हमारे दो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम को तत्परता से पालन करना होगा। भारत विभिन्न धर्मों एवं समुदायों का देश है। परिवार छोटा ही अच्छा होता है। स्वास्थ्य केंद्रों पर भी सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है, जिसकी सहायता से परिवार नियोजन किया जाता है। सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। आज प्रत्येक पंचायत में जनसंख्या के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका एवं आशा को भी परिवार नियोजन संबंधी विस्तृत जानकारी दिया गया है। ग्रामीण स्तर पर सफलता मिल रही है। समाज सेवी संगठन तत्पर है। खुशी रहना सुख से रहना अपने लक्ष्य को हम दो हमारे दो छोटा परिवार का लक्ष्य है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। तभी तो हम सब सुखी संपन्न रह पाएंगे। सबों को शिक्षित होना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना होगा, सामाजिक रूप से पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होना, राजनीतिक रूप से जानकारी होना एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आदि, औरत को अधिक ज्ञान हासिल करना होगा, तभी वो आगे चलकर अच्छे कार्य को कर सकती है। शादी विवाह में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। महिलाएं स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाती है, परिणाम परिवार में सदस्यों की पुरुष दोनों का काम है एकता बनाए रखें। महिलाएं शिक्षित होगी वहीं सुख का आधार होगा। हर दिन महिलाओं को किताब न्यूज़पेपर इन सब में ध्यान लगाकर जानकारी हासिल करना होगा। प्रतिदिन का नियम बना लेना

चाहिए। जो शिक्षित महिलाएं हैं वो अपने परिवार को समय का ज्ञान सिखाती है, समय वापस नहीं लौटता है। महिलाएं वो हैं जो अपने परिवार को समय पर तैयार करती है, समय पर खान पान कराती है, समय का सदुपयोग करती है, समय का ज्ञान कराती है, अपने कार्य को समय पर करती है। जो महिलाएं शिक्षित है वो पास पड़ोसी को भी ज्ञान देती है, परिवार नियोजन हेतु प्रेरित करती है। सुख का मार्ग महिलाओं के हाथ में है, छोटा परिवार सुखी परिवार। महिलाओं को अपने दिमाग से भी काम करना चाहिए जो उचित लगे। महिलाओं को अपने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तभी दूसरों पर दे सकती है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर चर्चा करें कि वे महिलाएं जो अपनी जीवन काल में 5 से अधिक बच्चों को जन्म देती है और जो 1 बच्चों को जन्म देती है, दोनों के स्वास्थ्य क्या एक जैसा होता है? कभी नहीं, दोनों में फर्क होती है। इस महंगाई की दुनिया में प्रोटीन और विटामिन खाद्य पदार्थ खिलाना संभव हो पाएगा? इसलिए छोटे परिवार की पूर्ति करना संभव है। छोटे परिवार को अच्छी तरह से खिला पिला सकेंगे। बड़े परिवार की अपेक्षा छोटे परिवार में कम खर्च अधिक खुशियां हैं। पूरा परिवार संतुलित भोजन प्राप्त कर सकेंगे। जिस घर में अधिक सदस्य है वहां कमाने वाले 2 होते हैं, कैसे पूरा खर्च संभव होगा? बड़े परिवार का खर्च भी अधिक है। संतुलित आहार एवं शिक्षा, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों को पूरा करना संभव हो सकता है? महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इस महंगाई की दुनिया में बड़े परिवार को लेकर चलना बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए सोच को बदलना होगा। कहा गया है स्वस्थ शरीर में स्वच्छ विचार का निर्माण होता है। छोटा परिवार अभी के समय में सभी चाहते हैं। छोटे परिवार का निर्माण स्त्री पुरुष के हाथ में है। छोटे परिवार में पूरा परिवार खुश रह सकते हैं। कामकाजी महिलाओं को शरीर पर खान पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए, बीमार होने से बचना चाहिए, डॉक्टरों का चक्कर खाना न पड़े, बच्चों का पालन पोषण ठीक से हो पाता है, शिक्षा पर भी अधिक ध्यान दे पाती है। छोटे परिवार में बच्चों का भरण पोषण ठीक से हो पाता है, बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पाते हैं। छोटा परिवार सुख का आनंद का घर है। जमीन जगह की कीमत बढ़ती जा रही है, उपज के लिए जमीन जगह चाहिए। सभी जमीन में मकान बन जाएंगे तो उपज कहाँ पर होगी? खेती ही भारत का प्रधान देश है। जमीन रहेगी तभी खेती होगी और पेड़ पौधे होंगे, तभी तो हर प्रकार का अनाज होगा। खान पान, रहन सहन एवं संतुलित आहार भी मुहैया करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की घरेलू या सामाजिक या आर्थिक निर्णय लेने में मदद मिलती है। पारिवारिक शांति बनी रहती है, आपसी प्रेम सद्भाव भी कायम रहती है, कलह का नामो निशान नहीं रहता है। हरेक दृष्टिकोण से खुशहाल परिवार होता है। जहाँ परिवार खुशहाल होगा वहीं आपसी प्रेम भाव होगा, वहीं ईश्वर का वास होगा। स्वच्छ वातावरण रहेगा, अच्छी शिक्षा की सुविधा होगी तो परिवार का विकास निश्चित रूप से होगा। जब परिवार विकासशील होगा तो समाज भी विकासशील होगा। सुख समृद्धि एवं विकास के लिए भेदभाव, छोटा बड़ा, जातिवाद, इन सबों को मन से हटाना होगा। हर एक इंसान का सोच अच्छे होने चाहिए। देश का विकास हो इसके लिए कर्तव्य बनता है छोटा परिवार हो, पढ़ा लिखा शिक्षित हो, बेटी बेटे में फर्क न हो, घर आंगन में खुशहाली हो। अच्छे सोच से अच्छे परिवार का निर्माण होगा। छोटा परिवार ही सुख का आधार है, सुख शांति एवं समृद्धि का आधार।

0: आपसी प्रेम एवं स्नेह का आधार है। छोटे परिवार समाज एवं राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए, तभी छोटा परिवार हो सकता है। महिलाओं का योगदान होना अति आवश्यक है। भविष्य को भूल जाती है और सुख खोजती है। अग्र सोची सदा सुखी, इसलिए आगे क्या चाहिए उस पर विचार करें। बड़ा परिवार अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। बड़े परिवार में समस्याएं भी अधिक होती है। बड़े परिवार में खर्च भी अधिक होती है। परिवारों में उलझने भी अधिक होती है। बड़े परिवारों में कष्ट ज़्यादा होता है। छोटा परिवार अपनी सीमित खर्च में निपट जाता है। परिवार का दुख समाज का दुख होता है। इसलिए परिवार सुखी संपन्न रहे, इसके लिए परिवार छोटा सुखी हो। परिवार में एकता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, तभी परिवार खुश रह सकता है। विचार सभी का अच्छा हो, दूसरों की भलाई की भावना हो, तभी परिवार आगे निकल सकता है।
1: बहनों, अभी वार्ताकार आशा रानी से आपने सुना कि कैसे छोटा परिवार जो है वो सुखियों खुशियों का आधार है। तो हमें क्यों छोटा परिवार ही बनाना चाहिए और कैसे ये हमारे देश के विकास में भी सहायक होता है, साथ ही हमारी खुशियाँ भी इससे बढ़ती है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इससे कुछ ज़रूर सीखे होंगे और अपने जीवन में उसको ज़रूर उसको अप्लाई करेंगे। बहनों, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हमारी त्वचा को प्रभावित करता है। तो चिकित्सा विज्ञान में इसको साइकोडर्मेटोलॉजी कहा जाता है। कहते हैं कि जब हम तनाव या मानसिक दबाव में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जो त्वचा में अत्यधिक तेल बनाता है और चेहरे पर मुहासे, सुस्ती, ये सब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मन से शांत रहना भी और मन से खुश रहना भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ बहनों, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाज़त सभी को। आरुका नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। श्री तिवारी ने विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने विभाग के सभी कामों को तय समय के भीतर पूरा करने और प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI पर वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। ये राज्य आकांक्षी वन श्रेणी में बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ ने इस सूची में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। इसमें लगभग 15 लाख स्कूल, 1 करोड़ से अधिक शिक्षक और 25 करोड़ छात्र हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज बुलाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अपराह्न 5 बजे यह बैठक सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर निरीक्षण को लेकर आज और कल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने सेतु के बेली ब्रिज के स्थान पर किए जा रहे अस्थायी पुनर्स्थापना कार्य के मद्देनजर यह फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IIT पटना की टीम पुल की तकनीकी जांच और निरीक्षण करेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। श्री नवीन पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे एनडीए घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। श्री नवीन 10 जुलाई को पटना में आयोजित एनडीए के 5 घटक दलों की बैठक में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थ यात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। जिन तीर्थयात्रियों का पंजीकरण नहीं हुआ है उनसे आग्रह किया गया है कि वे अपनी यात्रा तिथि की प्रतीक्षा करें। परामर्श में कहा गया है कि पंजीकृत यात्रियों को उनकी निर्धारित तिथि से पहले यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। आज गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, दरभंगा, सारण, सिवान और नालंदा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा जिले के मनिगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 8 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। पुलिस तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका माझी का नाम

0: 4242 पर।
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका माझी का नाम रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका माझी का नाम

0: ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%.
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे
2: दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रामानंद मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रामानंद मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रामानंद भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
3: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
3: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
2: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथ

0: सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर रहा। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म गजब का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म कर्तव्य का गीत। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मोहब्बत का गीत। गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने, धुन बनाई थी बप्पी लाहिड़ी ने। वो सात दिन। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में।

अभी आपने सुना फिल्म रंग का गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम शवण ने। इस गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए रविंद्र संगीत। कलाकार हैं लोपा मुद्रा मित्रा।

अभी आप सुन रहे थे रविंद्र संगीत, कलाकार थी लोपा मुद्रा मित्रा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब से लेकर शाम 5 बजे तक मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। और शाम 5 बजे से इन्हीं मीटरों पर आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।
1: बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
2: बिल्कुल बता देती हैं, लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी। ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है। बार बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
1: तो अभी गीत सुन ले।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
0: जी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना। तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं-18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास जो मैसूर क्षेत्र है ना वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुलाकर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुना गया जो आरामदायक कपड़ा था इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं जिन्हें खट कहा जाता है आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
0: बिल्कुल सही कहा चंचल, और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था और लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया
2: और सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है तो वहाँ की महिलाएं सिले शायद इसे ज्यादा पसंद करती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
2: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
0: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं लाइट शेड के सारे, जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
2: आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का चलन है, तो जैसे और जो चीजें है ना बांधनी के डाले जाते हैं तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
0: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम और ये बहुत हवादार होता है जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। ताना और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं जिसे खट अभी आपने बताया खट कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है, हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है
2: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती हैं देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार होता है ना बहुत
0: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है।
2: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
0: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली कोटा डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
2: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहाँ पर कोटा डोरिया साड़ियाँ ज्यादा बनाई जाती है, वही इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी

0: क्षेत्र है जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी, और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
1: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं ना, कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, क्योंकि बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
0: तो भाई, क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है, तो जहां बारिश नहीं है गर्मी है, वहां के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुंचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं होगा।
2: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया उनको।
3: और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें, जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं तो ये एक आश्वासन है।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के 3 शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
2: बिल्कुल, और देखा आपने चंचल की जो हमारे टीचर्स होते हैं है कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
3: ये जो आपने 3 उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का

0: एक चिकित्सक का और एक माता पिता का। सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या होगा
1: और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी। लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
0: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है। किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा। विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है, तुम निश्चिंत रहो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं, भाई आपका ये काम मैं कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
1: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाए। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल, है ना?
0: सही कहा आपने।
1: और करनी में फर्क हो जाता है।
0: हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़ें। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नियत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नियत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते ही हैं कि आत्ममंथन आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल
1: जी।
0: क्या बनाने वाली हो?
1: देखिए बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसे के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे श्रोता खिरौरी दुधौरी, क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और उसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज आंच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब जामुन की तरह हल्के चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसलें, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आंच धीमा पर तलने में तेल पिएंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास आई है और इसमें हमारे श्रोता ने बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए 1 कप चावल को धोकर 1 घंटा भिगोएं, पानी को निथार कर चावल, 2 चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें 1/2 कप सूजी और कटी हुई सब्जियां जिसमें प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। कच्चे चावल और आलू का चटपटा नाश्ता तैयार करने के लिए ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
0: बिल्कुल।

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ है और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ है,
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए।
0: बिल्कुल, लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विवेक भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपकी साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राढ़ी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी।
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
1: जी,
2: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
1: जी।
2: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में, हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी, बिल्कुल।
2: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूं कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूं, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीजें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
2: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव बहुत याद आता है, वहां की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
2: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल,
2: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है, मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूं, और वहां पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहां मुझे संस्कृत का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूं, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूं मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूं। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से, उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
2: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
2: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं। एक तो है कुल्हड़ की चाय, पहला, जो कि NBT से, राष्ट्रीय पुस्तकालय से छपा है
1: जी,
2: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाजाही है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है, उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
2: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का जैसा उसको कहते हैं व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है। तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है।
1: जी, तो व्यंग का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में। तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
2: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष्म पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें उसमें हजारे प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारे प्रसाद द्विवेदी की भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूँ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा। इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा हो रहा है, जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते।
1: जी, जी।
2: हजारे प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है। ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
2: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
2: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नजर आता है। आप किस यात्रा में कहां कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पलवित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाए, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाए, पाठक से जोड़ पाए। तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था। उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं, मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ। ना मैं वहां जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और
0: जी।
1: मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और कहां से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है, और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
0: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: जी, जी।
0: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी, उसकी समीक्षा में पढ़ रही थी
1: जी, जी।
0: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन अरुबानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है। गिरा अनयन नयन बिनु बाने, ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर की मैं कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बाने, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है, और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिन बानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता कि नयन बिन बानी नहीं है, नयन और बानी है। और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीजें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
0: जी।
1: तो नयन प्रेम के प्रतीक है, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिनु बानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उसे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
0: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है। तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
1: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अजाराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
0: जी।
1: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूंगा।

0: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
1: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
0: जी,
1: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
0: जी।
1: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीजें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि ये हृदय पक्ष है, इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
0: अच्छा
1: जी, पढ़ते हैं लोग। मैं अपने बारे में नहीं कहता, मेरी कुल्हड़ की चाय
0: जी
1: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।

0: करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी
1: जी।
0: है। एक दिन मैं एक सब्जी होती है कुंदरू,
1: कुंदरू की,
0: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं। वो बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती है पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं। तो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
1: जी।
0: तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
1: जी,
0: मध्य क्षामा चकित हरड़ी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
1: जी।
0: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी। और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के छंद को पढ़े होंगे वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
1: जी।
0: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था। मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ
1: जी।
0: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहां से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, तीन कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीजें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी तो जब ये मृत भांडे निकलेंगे तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहाँ से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित निबंध अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहां से फिर मैं ललित निबंध की लाइन में आ गया
1: जी।
0: और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज्यादा प्रिय है या ललित निबंध
1: जी। तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह की निबंध छपते हैं तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: ये
1: हम समझ सकते
0: जी।
1: हैं जी। तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे पगला कहीं
1: कभी
0: का।
1: भी क्या बात
0: जी,
1: है फिल्म पगला कहीं का ये गीत हम सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात
0: जी,
1: कर
0: जी,
1: पाएंगे
0: जी, जी, हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा।

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने
1: जी
0: बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंदाग्नि जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ, मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका, आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा, मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था, तो उनको मैंने पत्र लिखा। तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था, वो 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई, मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया, और हमारे पास उनका कोई आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूँ मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाओ, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
0: अच्छा,
1: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
0: जी
1: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को
0: जी।
1: जब हम

0: ए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
1: जी।
0: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए, और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
1: क्या बात है।
0: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन मैंने किया
1: जी।
0: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी, कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
1: क्या बात है।
0: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकाली है। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज़्यादा, करीब करीब आप मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और को कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फ़ोन पर की, क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
1: जी।
0: तो विशेषांक निकला 120 पेज का। तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है
1: जी।
0: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
1: जी जी जी।
0: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है
1: जी। बिल्कुल,
0: आप कहें तो उसको मैं 2 लाइनें उसकी
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी,
1: कि लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ
0: जी। 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़ करके हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं
1: जी।
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
1: बिल्कुल। तो रायडी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं
0: जी, जी।
1: कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा,
0: ज्यादा ही रहा,
1: ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन वो सब कविताओं पर मिले, चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदन्ति। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वो विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती है। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने जमाने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल। प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो इस संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा, संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर ये प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकारिक भाषा में चमचागिरी कहते हैं, ये शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है
0: जी।
1: कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली, और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के, साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
0: जी,
1: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहाँ तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी वो दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की अवतार थी। इतने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए, खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
0: अच्छा।
1: उनकी पुत्र वधु ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं, वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
0: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
1: जी,
0: हैं
1: जी, हाँ, जी,
0: उसके बाद
1: जी,
0: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं
1: जी। मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
0: जी।
1: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, ये मुझे बहुत पसंद
0: है। बहुत सुंदर
1: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
0: आई सुन जी।

0: राइडी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है, वो आपको कैसी लगी? मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं, वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीजें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम है, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूं और पक्षधर हूं कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं। ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीजें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थाई चीज है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
1: जी
0: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है, और लाल हथेलियां किताब के नाम के माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
1: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियां नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय उनका बड़ा व्यापक रहा है
0: जी।
1: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आजादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे, हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे, उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियां लिखें, स्त्री को आगे ले आएं, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएं। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खासकर के स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, ये योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है। जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है, और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है? कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगी, उनकी जो पात्र हैं, वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं, उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं है। इस चीज को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है, और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है, उसमें साहित्यकारों का योगदान है, और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
0: जी बहुत सुंदर।
1: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं। उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था, कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ। मैं मानता हूं कि जब तक मातृशक्ति, मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था, क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियां लिखी हैं। तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए, और फिर उनके तमाम संग्रह

0: मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
1: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: जी उन्दाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है। मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ। मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी जबरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो। किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया, उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है। ललित निबंध है और गजलें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गजलों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ। बाकी गीत गजल हैं, ऐसी चीजें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आ कहें, मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं है, आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीजें आए तो सोचता ये हूं कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
0: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूं मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल,
1: क्या बात
0: है, नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर राडी जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हाजिर हैं हम लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त संध्या और हाजिर हूं आपके फेवरेट रेडियो शो युववाणी के साथ। साथियों, युवाओं के लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। युववाणी, जहां मिलते हैं युवा विचार, नई सोच और नई उड़ान। यहां जानकारी भी है, प्रेरणा भी और मनोरंजन का भरपूर संगम भी। तो आइए, इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को जानते हैं। साथियों, आज के कार्यक्रम के दिन विशेष में हम चर्चा करेंगे गणित 2.0 दिवस के बारे में। उसके बाद हम दिन विशेष में एक भेंटवार्ता सुनेंगे। साथ ही उसके बाद साप्ताहिक स्तंभ प्रश्न मंच में पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्न के उत्तर को और इस सप्ताह के प्रश्न को जानेंगे। इसके बाद स्तंभ समसामयिकी में हम जानेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स। इसके अलावा फन फैक्ट और डेली ट्रिविया में हम आकाशवाणी संबंधित रोचक तथ्य और प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और बीच बीच में सुनेंगे कुछ सदाबहार फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं एक गीत फिल्म लव से, गायक SP सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ में।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, अब वक्त हो गया है दिन विशेष की चर्चा का, तो आइए आज के दिन विशेष में हम जानते हैं गणित 2.0 दिवस के बारे में। साथियों, गणित 2.0 दिवस हर वर्ष 8 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2009 में गणित और तकनीक के संबंध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। हम जब भी गणित का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले संख्याएं, सूत्र और कठिन सवालों की तस्वीर उभरती है, लेकिन वास्तव में गणित केवल जोड़, घटाव, गुना और भाग तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी भाषा है जो हमें तार्किक रूप से सोचने, समस्याओं का विश्लेषण करने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यही कारण है कि गणित को विज्ञान और तकनीक की रीढ़ कहा जाता है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। हर कदम पर गणित हमारे साथ चलता है। इन्हीं आधुनिक सोच और तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए गणित 2.0 की अवधारणा सामने आई है। इसका उद्देश्य केवल गणित पढ़ाना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि बदलती दुनिया में गणित का उपयोग किस प्रकार नए नए क्षेत्रों में हो रहा है। आज AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, वित्तीय प्रबंधन और चिकित्सा विज्ञान जैसे अनेक क्षेत्रों की नींव गणित पर ही टिकी हुई है। यदि हम अपने दैनिक जीवन पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि गणित हर जगह मौजूद है। चाहे घर का मासिक बजट बनाना हो, बैंक में बचत की योजना तैयार करनी हो, किसी यात्रा की दूरी और समय का अनुमान लगाना हो, या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना हो, हर कार्य में गणित ही हमारी सहायता करता है। प्यारे साथियों, दिन विशेष में आज बस इतना ही। आइए अब हम डेली ट्रिविया के प्रश्न को जानते हैं, जिसका उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तो साथियों, आज के डेली ट्रिविया का प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। बहरहाल, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक भेंटवार्ता, जिसका विषय है नेट GRF की तैयारी कैसे करें। भेंटवार्ताकार हैं राखी रानी और भेंट करता है अवनीश कुमार।
5: आज मार्गदर्शन के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं UGC द्वारा आयोजित नेट परीक्षा में सफल और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की रिसर्च स्कॉलर राखी रानी। इनसे आज बातचीत करेंगे और मार्गदर्शन लेंगे UGC नेट परीक्षा की तैयारी को लेकर। तो राखी रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में
6: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश। मैं

0: वाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बातों को रखने का मौका दिया। मैंने रिसेंटली यूजीसी नेट क्लियर किया है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ।
1: नेट की तैयारी को लेकर हमारे युवाओं को आज आप मार्गदर्शन दें, और पहले तो आप ये बताएं कि नेट की परीक्षा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही आप एग्जाम फॉर्मेट, माध्यम और रिजल्ट के प्रकाशन आदि को विस्तार पूर्वक बताइए।
0: हाँ जी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं। ये साल में दो बार होती हैं। ये टोटल 83 सब्जेक्ट्स के लिए होती हैं। इसी में CSIR नेट भी होता है जो कि पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट के लिए होता है, और UGC नेट जो कि आपका 83 सब्जेक्ट के लिए होता है वो आर्ट्स पेपर, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, ETC मिला के ये सारे एग्जाम होते हैं, जिसमें नेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपका टोटल मार्क्स 55% होना चाहिए, और अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो देन आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप जो नेट का फॉर्म डालोगे एटलीस्ट 2 साल में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाना चाहिए। ये आपके UGC के योग्यता में शामिल है। रिसेंटली जो है इसमें 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन है उनको भी मौका दिया गया, या तो आप ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिए हो, आपका मार्क्स 70% है, आप नेट का फॉर्म डाल सकते हो आप अपने किसी भी पसंद के सब्जेक्ट से, लेकिन आपको PhD उसी सब्जेक्ट से करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अपीयरिंग में भी हो तो आप तभी फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन आपका 70% मार्क्स आना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए। ये है हमारे नेट की योग्यता। अब आप इस एग्जाम को किस फॉर्मेट में देते हो, तो इसमें दो पेपर्स आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 50 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स, पेपर 2 100 क्वेश्चन यानी कि 200 मार्क्स, जिसमें कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप आर्ट्स पेपर से नेट दे रहे हो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप CSIR नेट दे रहे हो जो कि साइंस पेपर के लिए, जिसमें जितने भी साइंस के सब्जेक्ट है वो CSIR में शामिल होते हैं, उसमें निगेटिव मार्किंग है। UGC नेट के एग्जाम का माध्यम क्या है, तो बहुत लंबे टाइम से इसे ऑनलाइन करवाया जा रहा था, लेकिन रिसेंटली जो अभी पेपर होने वाला है ऑफलाइन होने जा रहा है। बहुत सालों के बाद ये ऑफलाइन हो रहा है, और जो कि एक दिन में ही टोटल एग्जाम को कंप्लीट करवा लिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट से। जब ऑनलाइन होता था तो ये कुछ दिनों के ड्यूरेशन में चलता था, जो कि टाइम टू टाइम एक दिन दो दिन के गैप में आपके सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाया जाता था। अब आए कि UGC नेट का रिजल्ट कैसे प्रकाशित होता है, तो UGC नेट का जो रिजल्ट है वो आप जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, जैसे पिछले साल 9 लाख स्टूडेंट ने इस फॉर्म को फिल किया है, तो उसमें से जो खुद के सब्जेक्ट के हैं उसमें से टॉप के 6% को निकाला जाता है। उन टॉप के 6% में कुछ परसेंट आपका UGC नेट का डिसाइड होता है, और जो उनसे जो हाई लेवल का आता है वो JRF का डिसाइड होता है। उसमें भी क्राइटेरिया है कि आप कौन से कैटेगरी से आते हो, आप SC ST से आते हो, आप OBC से आते हो, या फिर आप जनरल कोटा में आते हो, इस हिसाब से टॉप के 6% में डिसाइड किया जाता है UGC नेट के रिजल्ट को। देन आपका वो रिजल्ट एक ही साथ वो दिया जाता है कि आपने नेट क्लियर किया है, आपने JRF क्लियर किया है। लेकिन रिसेंटली इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इस बार से इसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं UGC ने। इसमें 3 कैटेगरी में नेट के रिजल्ट को बांटा गया है, पहले PhD, फिर नेट और JRF। अगर आप PhD के मार्क्स को फुलफिल करते हो तो सिर्फ आप PhD करोगे, लेकिन अगर आप नेट के कट ऑफ को पार किए हो तो आप नेट प्लस PhD दोनों के लिए एलिजिबल हो, और देन अगर आप JRF के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो JRF, नेट और PhD इन तीनों को आप फुलफिल करोगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, आपने बहुत ही विस्तार से सारी योग्यताओं को, एग्जाम फॉर्मेट को, हर चीज को बहुत ही विस्तार से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि नेट की तैयारी को कैसे की जानी चाहिए। आज नेट की तैयारी के लिए युवाओं के मन में विचार तो है लेकिन उनको मार्गदर्शन की कमी है, तो आप कैसे मार्गदर्शन करना चाहेंगे नेट की तैयारी करने वाले युवाओं को?
0: जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि नेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए और इनके लिए मैं कैसे मार्गदर्शन करूं। तो सबसे पहले तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट का UGC के वेबसाइट से जाके सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। देन सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग कुछ इयर्स का, पिछले बैक ईयर में जितने भी 5-6 साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं आप उनको निकालिए और उनको एनालिसिस कीजिए कि कितना आप कर सकते हैं, कितना आप नहीं कर सकते। क्योंकि UGC नेट का जो फॉर्म है नॉर्मली सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है कि जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा या फिर जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग है। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का पहले से आइडिया होता है, ऐसा आपके लिए कुछ भी न्यू नहीं है। तो पहले आप सिलेबस को निकालिए, सिलेबस में सारे टॉपिक को फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालिए, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए या फिर उनको पढ़िए कि आप

0: इसमें से किस टॉपिक को जानते हैं, किस टॉपिक को नहीं जानते हैं, किस टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा जोर देना है, किस टॉपिक को आपको नॉर्मली छोड़ देना है, उसके अकॉर्डिंग आप एक फॉर्मेट तैयार कीजिए। रहा अब पेपर वन जनरली सारे सब्जेक्ट का एक ही जैसे होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए, देन आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि पेपर वन में भी आपके 10 यूनिट आते हैं, पेपर टू में भी 10 यूनिट आते हैं, तो आप उसमें से टॉपिक को फाइंड आउट कीजिए। पेपर टू में मेरा 10 यूनिट में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, पेपर वन में जो टोटल होते हैं, जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया, आपका रिसर्च आ गया, आपका कम्युनिकेशन आ गया, ICT आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, कॉम्प्रिहेंशन, DI, उसमें से लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, इन सारे टॉपिक का आप एक बार सिलेबस देखिए और देन आप उसका PYQ देखिए, उसके बाद उसको लगाना स्टार्ट कीजिए। फिर आप उसमें देखिएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज आपको पढ़ने की जरूरत है, देन आप उसके अकॉर्डिंग अपना कुछ बुक्स खरीद लीजिए। बुक्स में PYQ का अगर एक्सप्लेनेशन दिया हो उसको आप डिस्कस कीजिए, उनके थ्योरी को पढ़िए, कुछ आप ऑनलाइन भी इनके कंटेंट को निकाल सकते हो। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को सेल्फ स्टडी में भी 5 से 6 महीने, या फिर अगर आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है तो आप 5 से 6 महीने के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर भी आप कंप्लीट कर सकते हो। बहुत बड़ी चीजें नहीं है UGC NET। और अगर आपका थोड़ा सिलेबस डाउन है तो फिर आप इसमें 7 से 8 महीने दीजिए, 100% आपकी तैयारी हो जाएंगी।
1: रखी जी, एक सवाल मेरे मन में है कि युवा जो है वो नेट को लेकर क्यों सोचे, कैसे सोचे और इसका फ्यूचर क्या है?
0: जी, सबसे पहले बात की नेट जो है ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए, PhD करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए UGC NET आप फॉर्म फिल करते हो, इनका एग्जाम देते हो, देन इनको कंप्लीट करने के बाद आप आगे का नेक्स्ट का प्रोसेस करते हो। और अभी जो है ना, रिसेंटली जो UGC है उन्होंने कंपलसरी किया है कि अगर आपको PhD करना है आपके लिए नेट कंपलसरी फैक्टर है, आप नेट क्वालिफाई करेंगे देन आप PhD कर पाएंगे। और भी बहुत सारे स्कोप है, इसलिए मुझे लगता है कि नेट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत बेहतर से बेहतर रिसर्च स्कॉलर मिलेंगे, एक अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे जिनकी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑब्वियसली नेट करते हैं तो आपका पर्पस होगा कि आप PhD करेंगे, आप रिसर्च स्कॉलर बनेंगे। अगर आप जैसे बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको जो है PhD करने के लिए कुछ फेलोशिप देते हैं, और अगर आप नेट के अलावा अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं UGC के साइड से आपको 5 साल का फेलोशिप दिया जाएगा, जिसमें कि आप अपने PhD को बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप अपने रिसर्च वर्क को बहुत अच्छे से कर सकते हो और आप इंडिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इंडिया के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को इन्हांस कर सकते हो। इसके साथ साथ आप एक प्राइवेट टीचर भी बन सकते हो, आप गेस्ट लेक्चरर अगर आपने नेट किया है देन आपके यूनिवर्सिटी से गेस्ट लेक्चरर का फॉर्म आया तो आप उसको फुलफिल कर सकते हो, जिससे कि आप रिसेंटली PhD के साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते, PSU में जॉब कर सकते हो, या फिर आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, क्योंकि रिसर्च असिस्टेंट का भी क्राइटेरिया होता है कि आपने नेट क्वालिफाई किया है और आपने 55% मार्क्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल हो। तो बहुत सारे स्कोप है जिसके लिए कि ये एग्जाम देनी चाहिए, क्योंकि खास करके अगर मैं बिहार की बात करूँ तो यहाँ के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है UGC नेट का। अगर डेटा देखा जाए तो बहुत कम है, उनको सारी चीजें पता चले कि नेट क्या है, उनका एग्जाम कैसे देना चाहिए, उन क्राइटेरिया क्या है, तो कहीं ना कहीं वो अपना इसमें एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं और सोसाइटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर को या फिर रिसर्च असिस्टेंट को एक बहुत सम्मानजनक नजरों से देखा जाता है। और हर दिन यूथ के साथ रह के आपको काम करने का मौका मिलेगा, उनके माइंड सेट को जानने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब भी है और आपको इस फील्ड में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ये फील्ड है, एकमात्र यही एक फील्ड है जिसमें कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लाइफ टाइम सीख सकते हो, क्योंकि प्रोफेसर का रिसर्च स्कॉलर का एक्सपीरियंस है जहाँ पे कि आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हो।
1: जी रखी, आपने बहुत सही कहा, जैसे आपने कहा कि बिहार में छात्रों को इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है, खासकर छोटे शहरों में लोग अभी भी नेट की परीक्षा को लेकर बहुत अधिक जागरूक नहीं है, बहुत अधिक जानकारी नहीं है उनके पास। हमें लगता है कि अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और लोग इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और उम्मीद है कि बिहार के साथ साथ पूरे भारत को बेहतर रिसर्च स्कॉलर मिलेंगे। इससे परीक्षा के दृष्टि से भी देखें तो रिसर्च के लिए नेट को अनिवार्य कर दिया गया है, तो इससे बेहतर रिसर्च स्कॉलर भी देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि बेहतर भविष्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे मार्गदर्शन में साझा किया और हमें भरोसा है कि यह बातचीत नेट की तैयारी करने वाले और इसके बारे में सोचने वाले सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक होगा। और हम सभी आकाशवाणी भागलपुर की टीम और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं भी आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसमें कि मैं अपनी बातों को रख सकूँ। इसके लिए मैं बहुत आभार रहूंगी आकाशवाणी का, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा रेडियो शो युववाणी में। साथियों, अब वक्त हो गया है हमारे साप्ताहिक स्तंभ प्रश्न मंच का।

तो आइए सबसे पहले हम पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। साथियों, पिछले सप्ताह का प्रश्न था, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है।

साथियों, इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आकाशवाणी संबंधित रोचक तथ्य। साथियों, क्या आपको पता है कि साल 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो उससे ठीक पहले देश के विभाजन और स्वतंत्रता के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आकाशवाणी के माध्यम से ही दिया था। साथियों, अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को जानते हैं। भारत 8 और 9 जुलाई को कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और डिजिटल समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार कर रही है। इसका उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना और आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। साथियों, समसामयिकी में आज बस इतना ही। अब वक्त हो गया है डेली ट्रिविया के उत्तर को जानने का। साथियों, डेली ट्रिविया का प्रश्न था, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया है, जिसका उत्तर है 1956। साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब आप अपनी रेडियो दोस्त संध्या को दीजिए विदा। नमस्कार।

युववाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। पहला गाना हमने फिल्म 1942 आ लव स्टोरी से लिया है। कविता कृष्णमूर्ति ने इसे गाया है। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत तैयार किया है राहुल देववर्मन ने।

अकेले हम अकेले तुम इस फिल्म का गीत सुनते हैं कुमार सानू एवं अलका याज्ञिक के युगल स्वर में। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं अन्नू मलिक।

विनोद राठौर एवं अलका याग्निक को अब आइए सुनते हैं फिल्म बाजीगर में। गीतकार गौहर कानपुरी, संगीतकार हैं अन्नू मलिक।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कुमार शानू एवं अलका यागी का गाया फिल्म चमत्कार का गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीतकार हैं अनु मलिक।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण, आइए डालते हैं एक नज़र हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष तथा कल के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों पर। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम विशेष भेंटवार्ता में आज आप सुनेंगे मृगेंद्र प्रसाद सिंह से की गई भेंटवार्ता। विषय होगा समेकित कृषि के लाभ। आपसे बातचीत करेंगे कुसुमाकर दुबे। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार होंगे उदय नारायण राय। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। और रात 10:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कुछ जानकारियां कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सेवा आरंभ होगी प्रातः 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनते हैं सामयिक कृषि वार्ता। 6:10 का समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के लिए। 6:05 पर होता है दैनिक चिंतन मनन। 6:35 पर कल आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। 6:40 पर रामचरितमानस गान की क्रमिक कड़ी सुनवाई जाएगी। प्रातः 7 बजे से 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें प्रातः 7 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में कल गायक कलाकार होंगे गांधी कुमार मिस्त्री। 7:20 पर कथा सागर कार्यक्रम में आप सुनेंगे शिव कुमार शिव की लिखी कहानी। शीर्षक होगा मुर्दा। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 9:06 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल गायिका होंगी सीमा बनर्जी। 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे सतीश मोदी का लिखा नाटक परिणय पथ।

प्रस्तुत करता होंगी नौमी शांति है ब्रह्म। 11 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नई फिल्मों से। 11:30 पर कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनते हैं गुलदस्ता। 12 बजे महिला श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होता है ग्राम नारी लोक। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। दिन के 1 बजे लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग में कल गाय कलाकार होंगे कपिल देव ठाकुर। 1:30 आप सुनेंगे धारावाहिक गंगा के सुरताल की 12वीं कड़ी। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। 3 बजे तरंग कार्यक्रम में फनकार होंगे कविता पौडवाल एवं जसवंत सिंह। 3:20 पर आप हर रोज सुनते हैं समूह स्वर में देशभक्ति गीत। और 3:25 से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर होता है फिल्म संगीत। 6:00 ग्रामीण श्रोताओं के लिए आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर लोक गीतों के कार्यक्रम में गायिका होंगी रेणु भारती है। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार होंगे राकेश कुमार। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 9:30 कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन राग जय जयवंती में। और 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कार्यक्रमों की कुछ संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:00 हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अन्नो का नमस्कार
1: और सभी को आरु का भी नमस्कार। अन्नो भाई आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार आरु बहन, तब सुनाइए हाल समाचार, सब ठीक ठाक है ना?
1: बिल्कुल, हाल समाचार तो ठीक है अन्नो भाई, लेकिन वही बरसात का मौसम आ गया है। वैसे हम कह नहीं सकते हैं कि मानसून अभी अपने पूरे जोश से आया है, मतलब जैसे आना चाहिए वैसे नहीं आया है, फिर भी बरसात का समय है तो थोड़ा बहुत जो बरसाती बीमारियां होती है तो कह सकते हैं उसका अटैक जो है आसपास में लोगों में देखने के लिए मिल रहा है।
0: बिल्कुल जी, देखिए आरोबहन, अब बरसात का ऋतु का आगमन हो ही चुका है जैसा आपने कहा भी, ऐसे में विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। होता यह है कि अभी जो है मौसम में परिवर्तन अचानक होता है, कभी तेज धूप निकली होती है, उसके बाद कुछ ही देर बाद जो है रिमझिम बारिश होने लगती है, फिर तेज धूप होने लगती है। इस तरह से हमें जो है बीमार पड़ने की हमें ज्यादा संभावना हमारी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल, ये तुरंत सर्दी, तुरंत गर्मी और जो उमस होता है, फिर वर्षा हुई तो फिर दिन ठंडा हो जाता है और आप देख सकते हैं कि घर में जो पानी आता है वो भी ठंडा हो जाता है। तो ये जो तुरंत तुरंत जो स्विच करना पड़ता है ना, इधर ठंडा से गर्मी, गर्मी से ठंडा, इस वजह से जो संतुलन है जो हमारे शरीर का, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा जी। और साथ ही बरसात यानी अभी के मौसम में जो है आरोहण, गंदा पानी, नमी और मच्छरों की संख्या बढ़ने से भी कई प्रकार की बरसाती बीमारियां भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें मुख्य रूप से मलेरिया, डेंगू जैसे रोग जो है इस बरसाती मौसम में होने की संभावना ज्यादा रहती है।
1: बिल्कुल अन्नो भाई, आसपास के साफ सफाई ना करने से हमारे आसपास मच्छर पनपने लगते हैं और ऐसे में डेंगू मलेरिया जैसे रोग, जैसा कि भी आपने कहा, उसकी संभावना काफी बढ़ जाती है जी।
0: बिल्कुल आरोहण, देखिए डेंगू जो है वो एक वायरल रोग होता है जो एडीज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है, और यह मच्छर जो है

0: किसी डेंगू संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद यदि दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उससे दूसरे रोगों को भी जो है डेंगू होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: और कई लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने और साथ में खाने से भी फैलता है, पर ऐसा नहीं होता है। यह एडीज मच्छर के काटने से ही फैलता है।
1: बिल्कुल। और बहुत सारी बीमारियां जो है इस बरसात में मच्छरों की वजह से होती है। वैसे अन्नू भाई, इस मौसम में उमस और जगह जगह पानी जमा होने के कारण बैक्टीरिया, वायरस और मच्छरों को पनपने का पूरा मौका मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: जिसकी वजह से जो हम लोग हैं इतना बीमार पड़ते हैं। और मच्छरों से होने वाली बीमारियों में जो मुख्य बीमारियाँ हैं जिससे काफ़ी परेशानी होती है और बहुत दिक्कत होती है अगर किसी को हो जाती है, वो है डेंगू। और यह साफ पानी में पनपता है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि अभी आपने कहा एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसमें तेज बुखार, जोरों में तेज दर्द, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं।
0: जी।
1: और इसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है वो आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें प्लेटलेट्स कम होने लगती है, जो कि अगर ज्यादा कम हो जाए तो जानलेवा भी हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: और फिर दूसरे नंबर पे आता है मलेरिया। यह एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें ठंड लगकर तेज बुखार आता है और शरीर में कंपन होती है।
0: बिल्कुल।
1: और फिर तीसरी बीमारी जो मच्छर से होती है वो है अन्नू भाई, चिकनगुनिया।
0: जी।
1: इसमें भी तेज बुखार के साथ साथ जोरों में गंभीर और लंबे समय तक दर्द होने वाला दर्द होता है और ये भी बहुत कष्टकारी होता है। और बरसात में सिर्फ मच्छरों से बीमारियां नहीं होती है अन्नू भाई, दूषित पानी और भोजन से होने वाले भी कुछ रोग होते हैं।
0: बिल्कुल। जैसे टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, ये सारी बीमारी जो है बरसात में संक्रमण के कारण और दूषित जल का सेवन करने के कारण जो है इस तरह की बीमारी हमें होती है।
1: और ये टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, जो दूषित पानी या बाहर का खुला खाना खाने से होता के कारण इसका खतरा जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है। और इसमें भी अन्नू भाई बहुत तेज़ बुखार और पेट में दर्द होता है।
0: बिल्कुल।
1: फिर जो पानी से और दूषित खाने से जो होने वाली बीमारी है, दूसरे रूप में आता है हैजा और डायरिया। ये भी साफ सफाई की कमी और दूषित पानी से उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है, जिसे शरीर में पानी की कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: और फिर एक और जो बीमारी होती है जिसे हेपेटाइटिस ए और ई, या हम जॉन्डिस भी कहते हैं, पीलिया हिंदी में कहते हैं, यह भी दूषित खाना और पानी पीने से लीवर में होने वाला संक्रमण है, जिससे त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती है। और ये भी कोई ये सारी बीमारियां जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अन्नू भाई, अगर इसका सही तरीके से देखभाल ना किया जाए, इलाज ना करवाया जाए और परहेज ना किया जाए तो बहुत जानलेवा हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही, मतलब एक जगह पर हुआ तो एक दो जन, मतलब किसी को भी होने की संभावना हो सकती है और कोई भी इसके चपेट में आ सकता है।
0: बिल्कुल। देखिए आरोपण होता यह है कि जैसे अभी बरसात का मौसम आया तो लोग सावधानी सतर्कता उतनी नहीं रखते हैं जितनी रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इस कारण से अब जैसे वे घर से बाहर निकले, आसपास कूड़ा भी फैला देते हैं और साथ ही साथ दूषित पानी का सेवन कर लेने से, जैसे आपने कहा कि हैजा टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती है, उसी तरह से अगर हम अपने आस पास घर के माहौल के पास जो है अगर जमा पानी को जो है सुरक्षित ढंग से उसकी निकासी नहीं करेंगे तो फिर टाइफाइड के और तो फिर जो है मलेरिया और डेंगू जैसे रोग हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि अपने आसपास जितने भी प्रकार के साफ सफाई आप कर सकते हैं वे करें, और दूषित जल का प्रयोग, दूषित खाना का सेवन, बासी खाना का प्रयोग न करें तो वह सबसे ज्यादा कारगर होगा। ताजा भोजन इस समय करें तो वह ज्यादा सुपाच्य होगा, और ज्यादा भी तली भुनी चीजों का सेवन न करें तो वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल। और अन्नू भाई, सिर्फ मच्छर और जो दूषित खाना और पानी होता है उसी से बीमारियां नहीं फैलती है, बल्कि इस बरसात में हवा और छुए जाने वाले मतलब कहते हैं ना छुआ छूत वाला रोग जिसको कहते हैं, वैसी बीमारियां भी बहुत फैलती है। इसमें सबसे पहले आता है वायरल फीवर और फ्लू, जो मौसम बदलने के साथ इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण सर्दी, खांसी और जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याएं आम हो जाती है। और जैसे कोई किसी के सामने छींक रहा है या बोले तो खांसी किया, तो ये दूसरे को भी होने की संभावना,
0: इससे संक्रमण होने का संभावना जो है
1: बढ़ जाता है। इसके बाद आता है जो हवा से फैलता है वो है कंज, वो जो आंख में होता है, आंख आना जिसको कहते हैं। इसमें बरसात में आंखों का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है और इससे आंखें लाल हो जाती है, खुजली होती है और आंखों से भी पानी आने लगता है।
0: बिल्कुल
1: जी। और फिर त्वचा के भी बहुत सारे संक्रमण होते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, जिसे दाद या एथलीट फुट कहते हैं, ये कपड़ों या जूतों के गीले रहने

0: और पसीने के कारण उंगलियों के बीच त्वचा की परतों में फंगल इन्फेक्शन होने के कारण होता है। इस सब के बचाव बस यही है अनु भाई कि जैसे अभी आपने बताया, पानी जमा ना होने दें घर के आसपास, कूलरों, गमलों या टायरों में पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि
1: जी
0: मच्छर ना पनपे। और मच्छरदानी और जो मच्छर मच्छर को भगाने वाले दूसरे चीज़ें होती है उनका उपयोग करें
1: जी
0: और खान
1: और
0: पान का ध्यान रखें। जी
1: बिल्कुल।
0: बोलिए।
1: और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का अगर आपको जो भी लक्षण दिखाई दे, अब जैसे डेंगू के मुख्य रूप से लक्षण ये होते हैं आरोहण,
0: हाँ
1: कि अचानक तेज बुखार हो जाता है, उसके साथ साथ तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे भी दर्द होता है,
0: बिल्कुल।
1: और शरीर और जोड़ों में तेज दर्द जिसे कि हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है वो भी होता है, और कमजोरी, और साथ ही साथ त्वचा पर जो है लाल चकत्ते जैसे दाने दिखते हैं, और
0: जी
1: मतली या उल्टी होने लगता है ज़्यादा मात्रा में। और अगर गंभीर रूप से किसी को डेंगू की शिकायत हो जाती है तो उस अवस्था में नाक या मसूड़ों से खून भी आने लगता है, पेट में तेज़ दर्द होने लगता है, लगातार उल्टी आने लगती है, और सांस लेने में कठिनाई भी होने लगती है,
0: बिल्कुल
1: और प्लेटलेट्स भी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में तमाम प्रकार के जितने भी लक्षण अगर किसी में विद्यमान होते हैं या दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले यह कोशिश की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द उन्हें अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर इलाज के लिए जरूर वहां लेते जाना
0: बिल्कुल।
1: चाहिए।
0: और कभी कभी क्या होता है ना अन्नो भाई, जैसे कोई भी बीमारी अपने शुरुआती चरण में होते हैं, मतलब बहुत
1: जी
0: ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, तो लोगों को थोड़ा बहुत जो मेडिसिन की जानकारी होती है दवाइयों की,
1: जी
0: तो लोग वो सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं, खुद से दवा लेने लगते हैं, जो कि कभी कभी बहुत हार्मफुल हो
1: जी
0: जाता है। तो ऐसे में क्या करें, सेल्फ मेडिकेशन, खुद ही दवाई ना लें, डॉक्टर से परामर्श करके ही, डॉक्टर को दिखा के ही और सही तरीके से जांच करवा कर ही दवा खाएं, जिससे कि आपको कुछ दूसरी चीज़ें होने का खतरा ना हो, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ना हो।
1: बिल्कुल। अब जैसे डेंगू के बारे में जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं आरोहण, तो कई लोग ये भी करते हैं कि डेंगू जैसे रोग होने के बाद जो है पूरी तरह से घबरा जाते हैं। उतना भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको डेंगू हो ही गया है तो जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल में जाएँ, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ORS और नारियल पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और बुखार के लिए जो है डॉक्टर से अवश्य जो है सलाह परामर्श लें, अपने मन से किसी भी प्रकार का दवाई का सेवन ना करें, तो यह सबसे ज़्यादा कारगर होता है।
0: बिल्कुल। और जो जैसे सर्दी खांसी, जो हवा से फैलने वाले संक्रमण होने वाले जो बीमारियां हैं, उससे बचने के लिए अपना हाथ तो साफ रखें
1: जी।
0: ही, दूसरा बात मास्क का प्रयोग करें, जिनको
1: बिल्कुल
0: हो गया है वो भी और जिनको ना हुआ है वो भी, जिससे कि ये जो फैलता है ना बहुत ज्यादा वो
1: जी
0: ना नहीं होगा।
1: बिल्कुल। और आरोहण हम लोग और भी बातचीत जारी रखेंगे, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा भी देवी गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: दूसरा वर्ण
1: जी, पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को सुन लेते हैं।
0: जी,
2: बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: जी, इतना अच्छा देवी गीत हम लोग अभी कलाकार नूतन कुमारी से सुना, इनके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी
0: आरोबहन, अभी बरसाती मौसम का समय हो ही चला है,
1: जी
0: कई प्रकार की व्याधियां बीमारियां भी होती रहती है।
1: बिल्कुल
0: ऐसे में हमें विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है और समय समय पर अपने मन को भी जो है अच्छे तरीके से संभालने की भी आवश्यकता होती है। तो हम लोग प्यारा सा एक लोक भजन पहले सुन लेते हैं और उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों की भी चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल।

टुक टू है शिव नहीं हर मोर जानो कटू है शिव नहीं हर मोर टूटली मरई।

0: आरो बहन, जैसा कि हम लोग कार्यक्रम के शुरुआत में ही जो है बातचीत कर रहे थे कि अपने आसपास की सफाई करने से बरसाती रोग जो है उसकी संभावना कम हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: हमें प्रतिदिन अपने घरों के साथ साथ जो है आसपास की भी सफाई करनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और स्वच्छ भी रहें। और अगर हम स्वच्छ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी अगर स्वच्छ रखते हैं तो इससे हमारा देश भी स्वच्छ होगा और देश भी स्वस्थ होगा। तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, इस विषय पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं वार्ताकार सुबोध स्वर्णकार जी से।
1: जी,
2: स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्र स्तरीय अभियान है। साफ सफाई के संदर्भ में देखा जाए तो यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर के दिन सर्वप्रथम गांधी जी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती में जाकर झाड़ू लगाई। कहा जाता है कि वाल्मीकि बस्ती दिल्ली में गांधी जी का सबसे प्रिय स्थान था। वे अक्सर यहां आकर ठहरते थे। इस अवसर पर अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, गांधी जी ने आजादी से पहले नारा दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया, लेकिन अभी इनका क्लीन इंडिया का सपना अधूरा है। समय आ गया है कि हम 125 करोड़ भारतीय अपनी मातृभूमि को स्वच्छ बनाने में प्रण करें। क्या साफ सफाई केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी है? क्या हम सभी की जिम्मेदारी नहीं है? हमें यह नजरिया बदलना होगा। पुरानी आदतें बदलने में समय तो लगता है लेकिन असंभव नहीं। सबके लिए स्वच्छता एक वैश्विक विकास प्राथमिकता मानी जानी चाहिए। 1 अप्रैल 2012 से संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण सृजन में तेजी लाना है। स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश के 10 नए विरासत स्थलों ने अपने स्वच्छता मानकों को उदाहरणीय स्तर तक बढ़ने के लिए कार्य योजना बनाई है। हैदराबाद में 2 दिनों के विचार विमर्श के बाद कार्य योजना तैयार की गई। इस विचार विमर्श में पूरे देश से आए 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए सभी 30 स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की ओर से अपने स्थानों को प्लास्टिक से मुक्त बनाने का संकल्प आए प्रतिनिधियों ने व्यक्त किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1895 में जब ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और एशियाई व्यापारियों के साथ उनके स्थानों गंदा रखने के आधार पर भेदभाव किया था, तब से लेकर अपनी हत्या के 1 दिन पहले तक गांधी जी लगातार सफाई रखने पर जोर देते रहे। कुछ क्षण के लिए हम इन बातों पर गहराई से सोचें। आखिर क्यों हो स्वच्छ भारत? याद कीजिए बापू का नवजीवन में लिखा, उन्होंने लिखा है कि हमारी कई बीमारियों का कारण हमारे शौचालय की स्थिति और किसी जगह करने की बुरी आदत है। बाद में उन्होंने ये भी कहा है, जहां स्वच्छता होती है वहां देवता निवास करते हैं। बीते दिनों इस बात को

आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वच्छता और व्यक्ति भाव से सबसे बड़ा लाभ अच्छी सेहत के रूप में मिलता है। हमारे देश में ज्यादातर आम बीमारियां ऐसी हैं जो माहौल में कतई नहीं फैल सकता है। अगर हम इसे सफल क्रांति में तब्दील कर देते हैं तो इलाज पर लोगों का खर्च काफी कम हो जाएगा तथा इस तरह से वे अपनी बचत का कहीं और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे। महात्मा गांधी जिन्हें आदर्श माना जाता है, वो गंदगी के खिलाफ थे एवं स्वयं सफाई अभियान चलाते थे। भारत विकासशील देश से विकसित देश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बाजारवाद में भारत ने खुद को स्थापित कर लिया है। अध्ययन बताते हैं कि कुपोषण भोजन के साथ साथ सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच न होने से उपजता है। गंदगी और अस्वच्छता के वातावरण में रहे छोटे बच्चों के मल में पनपने वाले बैक्टीरिया होता है। बेहतर स्वच्छता मिलने से शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। स्वच्छता का अर्थ न केवल आसपास के फैले कूड़े कचरे को हटाना है, बल्कि इसका आशय शौचालय, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता और निकासी प्रणाली से शौचालयों को जोड़ना भी है। साथ ही नगरीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कूड़ा कचरा एकत्र करने की सुविधा का नहीं होना भी स्वच्छता को प्रभावित करता है। आवासीय परिसर के बाहर स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों और रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता की स्थिति खराब रहती है। बार बार दिए जा रहे निर्देशों का पालन नहीं कर हम उसे छोड़े चले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर क्या कारण है कि साफ सफाई हम भारतवासियों के लिए कभी महत्व का विषय नहीं रहा। आखिर क्यों तमाम प्रयासों के बाद भी हम साफ सुथरे नहीं रहते और रखते हैं। गंदगी के कारण औसतन रूप से प्रत्येक भारतीय को प्रतिवर्ष लगभग 6,500 का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। बदलाव के इस दौर में यदि हम स्वच्छता के क्षेत्र में पीछे रह गए तो आर्थिक उन्नति का कोई महत्व नहीं रहेगा। रिपोर्ट में स्वच्छता पर निवेश के फायदे भी की भी चर्चा की गई है। अतिरिक्त स्वच्छता और साबुन से हाथ धोने जैसे साफ सफाई के तरीके अपनाए जाने से 2006 में ही अकेले 3.46 लाख मौतें नहीं होती, 33.8 करोड़ बीमार के मामले नहीं आते और कम से कम 1.48 खरब रुपये सालाना आर्थिक फायदा होता। इस बात को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हवाले से कहा कि गंदगी के कारण हर वर्ष भारत के प्रत्येक नागरिक को करीब 6,500 रुपये का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ता है। कहते हैं बीमारी कहकर नहीं आती, साथ ही आर्थिक आधार भेदभाव नहीं करती। निर्माण स्वच्छता समान रूप से हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हर समय कोई सरकारी संस्था या बाहरी बल हमारे पीछे नहीं लगा रह सकता। हमें अपनी आदतों में सुधार करना ही होगा और स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना ही होगा। साथ साथ
दंड प्रक्रिया द्वारा

0: द्वारा इसमें सफलता लाई जा सकती है, तभी हमारी ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकेगी।
1: जी, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए वार्ताकार सुबोध स्वर्णकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रायोजित कार्यक्रम पारामेडिकल है पारस सुनने का वक्त हो चला है, तो आइए हम लोग सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम पारामेडिकल है पारस।
2: जी,
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: पूरे बिहार के लोग, जी हाँ, पूरे बिहार के लोग जो हमारा ये कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस सुन रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। इस कार्यक्रम में साथियों आपका सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है, चल ही नहीं रहा, आपका मार्गदर्शन भी कर रहा है, खास करके वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है और हेल्थ के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने जब आपके राजेश के साथ इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी, तो ये बताना महज काम था कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में आप अपना करियर अगर जो आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ गुजरते वक्त ने इसके अनेकों आयाम खोल दिए, आज बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैथोलॉजी है, बीएससी ओटी है, पैरामेडिकल में जो है अलग अलग कोर्सेज हैं, इवन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, जीएनएम है, एएनएम है, ढेर सारे कोर्सेज हैं जिसको लेकर अगर आपने पढ़ाई की तो आपके लिए रोजगार के अवसर सुलभ हो जाएंगे। और इसमें हम यानी श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल वाले लोग और आपका राजेश मिलकर आप तक सही और सटीक बातें पहुंचाने का कोशिश करता है, प्रयास करता है और एक नंबर भी देता है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगे तो निश्चित रूप से आप उस नंबर का इस्तेमाल कीजिए, बात कीजिए। नंबर नोट कीजिए पहले, 9155588889855588888 और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233, ये नंबर है, इस पर आप जानकारियां ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट दिया था मेडिकल पढ़ने के लिए, क्वालिफाई नहीं कर पाए या कर गए, हाँ कर गए, और किसी कारण से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया ना, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था और सुविधाएं भी हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर इलाके में है, पुलिस स्टेशन जो है जक्कनपुर का उसके ठीक सामने है। तो चलिए विस्तार से एक बार फिर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि किस विषय पर आज बात करेंगे। हम लगातार वैसे विषय पर लगातार बात करते हैं जो बहुत वाइब्रेंट होता है, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब किस मुद्दे पर बात करनी है।
5: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
4: हाँ।
5: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता
4: है, जानकारियों का अभाव है।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
4: जी,
5: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
4: जी।
5: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए, सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
4: जी।
5: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
4: जी,
5: है। तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है।

0: अच्छा, ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है, जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
1: जी, एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
0: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
1: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है, और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक और बढ़ ही रही है। मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं, इसलिए हमने पूछ लिया।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा, यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं, डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए, जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए, हर समय हमेशा रहा गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है, अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सीट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल, ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी, अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे।
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जवाब से आवश्यकता नहीं है, अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में, अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है, अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है, तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है,
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है, कोई भी विषय हो जाए, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी।

0: अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जो है ना, इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों, आपको हम ये बताना चाहते हैं, जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से?
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल, मैं तो पहले ही, इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोग और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
0: उसकी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह है, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
0: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
0: दोनों में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ समान है,
1: हाँ।
0: उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया, ऐसा समझिए ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
0: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
1: ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन व्यवसाय
0: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन, हाँ,
0: जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपसे बातें होंगी अगले एपिसोड में। तो बिहार वालों, हाँ युवा साथियों, कुछ समझ में आया, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं पूरे बिहार से, ज्यादातर सुपौल, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, इन जगहों से फोन कॉल आते हैं। हालांकि ज्यादातर फोन कॉल ऐसे होते हैं जो सलाह मांगते हैं कि हमें किस ओर जाना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपकी रुचि जिस ओर जाइए, आपके लिए एक उन्नत भविष्य होगा, मन लगाकर पढ़िए, पैरामेडिकल को चुनिए। नंबर नोट कीजिए 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर 9162413233। जी हाँ, थैंक यू श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। तो साथियों चुनिएगा जरूर, आपके लिए बुधवार को आते हैं और आपका साथ मिला तो आते ही रहेंगे। तो राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: जी
4: जी, इसी के साथ क्यों ना कुछ मौसम सूचना अपने किसान भाइयों को दे दिया जाए।
3: बिल्कुल,
4: तो मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में यानी कि 8 से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% तथा दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का भी अनुमान है। कुछ समसामयिक सुझाव भी है अन्नो भाई, जैसे धान के लिए है कि पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेडाज्म 2.0 ग्राम किलोग्राम प्रति बीज से उपचारित करें तथा 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुराई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी एवं राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों जैसे सबोर मोती धान, सबोर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती हेतु उचास भूमि का चयन करें। मडुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मडुआ RU 8 एवं RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1 किस्मों की बुआई कर सकते हैं।
3: बिल्कुल,
4: अरहर के लिए भी उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 एवं राजेंद्र अरहर 2 किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटास तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का के लिए भी कुछ समसामयिक सुझाव है, जैसे कि खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सरी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर एवं 50 किलो पोटास का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है।
3: बिल्कुल आरोपण, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में हमारे किसान अपने कृषि कार्य में जोर शोर से लगे हुए हैं। खाद्यान्न फसल के साथ साथ वे अपने जीविकोपार्जन के लिए सब्जियां और फलों की भी खेती कर सकते हैं, पर कृषि करने के साथ साथ फल और सब्जियों का संरक्षण करना भी बहुत जरूरी होता है। संरक्षण यानी कि लंबे समय तक खराब होने से बचाकर सुरक्षित रखना ताकि फल सब्जियों के स्वाद, पोषण और गुणवत्ता सही रूप से बनी रहे। इस विषय पर विस्तार से जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं वार्ताकार डॉक्टर विनोद कुमार जी से।
4: बिल्कुल,
5: हमारे शरीर के उचित पोषण हेतु फल एवं सब्जियों का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। फल एवं सब्जियों से हमें विटामिन एवं खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये मौसमी होते हैं एवं शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वर्ष भर इनका सेवन तभी कर सकते हैं जब हर मौसम में उससे संरक्षित पदार्थ तैयार कर रखें। ध्यान रखें कि जिस समय फल एवं सब्जी सस्ते तथा बहुतायत में उपलब्ध हों, फलों से जेली, जैम, स्क्वैश, मुरब्बा तथा रस संरक्षित पदार्थ बना सकते हैं। सब्जियों से सुखोता, चटनी, अचार या नमक के घोल में संरक्षित कर सकते हैं। फल एवं सब्जियों से संरक्षित पदार्थ कैसे बनाएं इसके बारे में जान लें। फलों से अमरूद की जेली, फलों को टुकड़ों में काट कर उसके वजन से 1.5 गुना पानी डालकर तेज आंच पर उबालें। जब भाप के भली भांत गल जाए तो पतले कपड़े से छानकर रस निकालें। इस रस में पेक्टिन नामक पदार्थ रहता है। इस पेक्टिन चीनी, साइट्रिक एसिड तथा पानी के मिश्रण से ही जेली बनती है। जाड़े एवं बसंत ऋतु के अमरूद में अधिक पेक्टिन रहती है। प्रति 1 किलोग्राम रस में 600 ग्राम से 750 ग्राम चीनी डालकर इसे तेज आंच पर पकाएं। चीनी घुल जाने पर रस को कपड़े से छान लें, पुनः पकाते जाएं। जब काफ़ी उबलने लगे और तापक्रम 102 से 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो प्रति किलोग्राम चीनी के लिए 6 ग्राम साइट्रिक एसिड थोड़ा पानी में घोलकर डाल दें। साइट्रिक एसिड के बदले 5-6 रसदार नींबू का रस निचोड़ कर डाल सकते हैं। 107 डिग्री सेंटीग्रेड पर जेली तैयार हो जाती है। इसकी पहचान के लिए काट के चलौने से पकते हुए जेली की कुछ मात्रा लेकर हवा में घुमाएं एवं गिरावें। यह बूंद बूंद न टपक कर पतली जेली के रूप में गिरे तो जेली तैयार समझें। इसे आंच पर से उतार लें। थोड़ी देर के बाद ऊपर का झाग चम्मच से काट कर निकाल दें। जेली को गर्म अवस्था में ही चौड़े मुंह वाली बोतलों में भर दें तथा जम जाने पर पिघले मोम की परत ऊपर डालकर ढक्कन लगाकर रखें। जैम, फलों को छीलकर खाने वाले भाग गूदा को निकाल लें तथा इसको तौल लें। गूदा के तौल की 3/4 मात्रा चीनी तौल लें। यदि फल कड़ा हो तो थोड़ा पानी मिलाकर आग पर इसे नरम कर लें। चीनी डालकर पकाएं। जब तापक्रम 102 से 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, प्रति किलो चीनी की मात्रा के लिए 5 ग्राम साइट्रिक एसिड थोड़ा पानी में घोलकर मिला दें और पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए या तापक्रम 106 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो आग से उतार लें। उतारने के बाद प्रति किलोग्राम जैम में 0.5 ग्राम सोडियम बेंजोएट नामक पररचित थोड़ा पानी में घोलकर जैम में मिला दें। इसे चौड़ी मुंह वाली कांच की बोतल में भर दें। इसके ऊपर पिघले मोम की परत डालकर ढक्कन लगाकर रखें। रस का संरक्षण। रस के संरक्षण हेतु फलों को भली भांत धोकर रस निकाल लें तथा छान लें। रस को गर्म करें लेकिन खोलने के पहले उतार लें। इसके संरक्षण के लिए ठंडा होने पर 1.2 ग्राम पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड थोड़ा पानी में घोलकर मिलावें। बोतल को गर्म पानी से अच्छी तरह साफ कर रस को भरकर काग लगा दें। काग के ऊपर पिघले मोम की एक परत डाल दें। इसके सुरक्षित स्थान पर रखें। रस का उपयोग पीने या शरबत बनाने में कर सकते हैं। फलों का स्क्वैश। प्रायः सभी रसदार फलों से स्क्वैश बनाया जा सकता है। फलों से सर्वप्रथम रस निकाल लेते हैं तथा उसे छान लें। प्रति 1 किलो नीबी रस के लिए 2 किलो चीनी तथा अन्य फलों के लिए 1.5 किलो चीनी लें। सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। मटर के दाने को छिमड़ी मतलब फली से छुड़ा लें। टमाटर को समूचा ही रखें। नमक के घोल का मिश्रण बनाने के लिए प्रति लीटर पानी के लिए नमक 50 ग्राम पोटाशियम मेटावाई सल्फाइड 1 ग्राम चाय की चम्मच का 1/5 भाग एसिटिक एसिड 12 मिलीलीटर 2.5 चाय की चम्मच की आवश्यकता होती है। सभी को मिलाकर घोल बना लें। प्राय जितनी सब्जी है उसकी 2 गुनी मात्रा को घोल व्यवहार होता है। मटर के दाने के बराबर मात्रा में घोल लगता है। शीशे के बोयाम में सब्जी डालकर इस घोल से बोयाम के मुंह तक भर दें। बोयाम के मुंह पर रुई की परत के ऊपर पिघले मोम की परत डालकर ढक्कन बंद करें। जब आवश्यकता हो तो सब्जी निकालकर 3 से 4 घंटे पानी में रख धो लें। शीघ्रता के लिए गर्म पानी में धोएं। बोयाम खाली होने पर पुनः घोल से भर दें। इस तरह के संरचना में मात्र 1 रुपये प्रति किलो सब्जी पर खर्च है। अतः बताई गई विधियों को अपनाकर हम आसानी से अपने घरों में फल एवं सब्जियों का संरक्षण कर वर्ष भर इनका स्वाद ले सकते।
3: जी, फल एवं सब्जियों का संरक्षण कैसे करें, इस विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे थे वार्ताकार डॉक्टर विनोद कुमार। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। कल फिर उपस्थित होंगे ढेर सारी जानकारी लेकर कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। अभी विदा दें, सबको अन्नों का नमस्कार
4: और सभी को आरू का भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का किया शुभारंभ। कहा, देश का औद्योगिक विकास झारखंड के योगदान के बिना अधूरा। झारखंड विधानसभा में आंतरिक संसाधन तथा केंद्रीय सहायता समिति की राजस्व कमेटी की टीम ने आज रामगढ़ का किया दौरा। अध्यक्ष विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा, विधानसभा को समिति देगी रिपोर्ट। राज्य सरकार ने संथाल परगना की सड़क परियोजनाओं के लिए 221 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी। दुमका से पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा तक 52 किलोमीटर की सड़क का होगा कायाकल्प। जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण। और धनबाद में हुई रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक। पलामू, चतरा और धनबाद के सांसदों ने उठाए रेलवे से जुड़े जनमुद्दे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का शुभारंभ किया और विकसित झारखंड का विजन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड को केवल खनन आधारित राज्य नहीं बल्कि तकनीक, अनुसंधान, नवाचार और औद्योगिक विकास के अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पहचान उसके प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ यहाँ के युवाओं की प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता और कुशल मानव संसाधन से बनेगी तथा झारखंड की वैश्विक मंचों पर भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने निवेशकों से दीर्घकालिक साझेदारी का आह्वान करते हुए स्थानीय संसाधनों और परिस्थितियों के अनुरूप विकास मॉडल अपनाने तथा शोध एवं आधुनिक तकनीक पर विशेष जोर दिया।
1: झारखंड के संदर्भ में लगभग हम ये कह सकते हैं कि इस देश की अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो झारखंड के बिना ये पूरा होता दिखता नहीं। आज हम झारखंड से पूरे देश को कई सारी खनिज संपदाओं के साथ ज्ञान भी दिया है। हमारे राज्य से देश दुनिया में बड़े पैमाने में ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपनी योगदाने दी हैं, तकनीकी क्षेत्रों में भी दी हैं।
0: झारखंड विधानसभा में आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की राजस्व कमेटी की टीम ने आज रामगढ़ का दौरा किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष विधायक रामेश्वर उरांव ने बताया कि यह समिति विभिन्न विभागों के वित्तीय संबंधित चीजों की जांच कर इसकी रिपोर्ट विधानसभा को भेजेगी।
2: कमेटी का नाम है इंटरनल रिसोर्सेस एंड सेंट्रल एड। हमारा काम इतने है कि इंटरनल रिसोर्सेस कितने यहाँ से हैं, किस किस विभाग से कितना राजस्व मिलता है यहाँ से जो राज्य सरकार को जाता है, और सेंट्रल सरकार का जो सहायता मिलती है किस मद में मिला, किस हेतु मिला, वो खर्च बढ़िया से हुआ कि नहीं हुआ।
0: राज्य सरकार ने संथाल परगना की सड़क परियोजनाओं के लिए बड़े पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें दुमका से पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा तक 52 किलोमीटर गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे का कायाकल्प शामिल है। इसके तहत सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा तथा सड़क की चौड़ाई 7 मीटर से बढ़कर 15 मीटर की जाएगी। इस पर कुल 221 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। गढ़वा जिला प्रशासन SIR अभियान को लेकर काफी गंभीर है और जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से इस अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्र ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गढ़वा जिले में मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने का कार्य पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ जारी है। इधर गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन कार्यों की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 61% गणना प्रपत्रों का वितरण किया जा चुका है और 10 जुलाई तक 100% गणना प्रपत्रों का वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के वर्तमान शैक्षणिक स्थिति को लेकर राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज रांची विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक की, उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय की विभिन्न कमियों में सुधार करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
3: आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के द्वारा रांची विश्वविद्यालय का समीक्षा बैठक रखा गया था कि बैठक में जनजाति समुदाय से संबंधित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी से लेकर के विद्यार्थी तक की बात हम सबमिट किया है। कि अगर बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रमोशन की अगर हम बात करें विशेष रूप से तो प्रमोशन सिस्टम ही यहाँ नहीं है।
0: जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के मुख्य नामजद आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच आज जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। धनबाद रेल मंडल संसदीय समिति की आज हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न रेलवे मुद्दों को उठाया। इस बैठक में नई ट्रेनों के परिचालन, ट्रेनों के ठहराव, विस्तार, फेरे बढ़ाने, यात्री सुविधाओं के विकास और लंबित रेल परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद को रेलवे जोन बनाने की मांग को प्रमुखता से उठाया।
4: धनबाद के इस जोन से ही सबसे ज्यादा राजस्व देता है और धनबाद का जोन दूसरे प्रदेश में है, वहाँ रहे हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर धनबाद में भी रेलवे जोन बनना चाहिए क्योंकि पूरे भारतवर्ष में धनबाद एक कोयला का नगरी है और यहाँ पे हर तरह का ट्रेन मालगाड़ी का सबसे ज्यादा आवागमन है, यहाँ से ज्यादा माल ढुलाई भी होता है, यहाँ सवारी भी बहुत ज्यादा है।
0: बैठक में पलामू सांसद बीडी राम, चतरा सांसद कालीचरण सिंह और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी अपने सुझाव दिए। हजारीबाग नगर निगम की बोर्ड बैठक में पदेन सदस्य के रूप में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल शामिल हुए। बैठक में उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और स्पष्ट कहा कि शहर के विकास की पहली प्राथमिकता मजबूत सड़कें, बेहतर नालियां और प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र स्थित सलगी पंचायत के रोचो महुआ टोली में संचालित संवसीरा हायर सेकेंडरी स्कूल के आवासीय परिसर में कल रात

0: कमरे में सो रही चार छात्राओं को सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। साथ ही दो का इलाज सदर अस्पताल लोहरदगा में चल रहा है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रत्येक बुधवार आयोजित होने वाले जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत डोरंडा थाना परिसर में लोगों की शिकायतें सुनी गईं। थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद ने कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया। मौसम। राज्य में मॉनसून सक्रिय होने से मौसम केंद्र रांची ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत अन्य प्रभावित इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का किया शुभारंभ। कहा, देश का औद्योगिक विकास झारखंड के योगदान के बिना अधूरा। झारखंड विधानसभा में आंतरिक संसाधन तथा केंद्रीय सहायता समिति की राजस्व कमेटी की टीम ने आज रामगढ़ का किया दौरा। अध्यक्ष विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा, विधानसभा को समिति देगी रिपोर्ट। राज्य सरकार ने संथाल परगना की सड़क परियोजनाओं के लिए 221 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी। दुमका से पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा तक 52 किलोमीटर की सड़क का होगा कायाकल्प। जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया न्यायालय में आत्मसमर्पण। और धनबाद में हुई रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक। पलामू, चतरा और धनबाद के सांसदों ने उठाए रेलवे से जुड़े जनमुद्दे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:11 हुए हैं। विशेष भेंट वार्ता कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं मृगेंद्र प्रसाद सिंह से की गई भेंट वार्ता। विषय है समेकित कृषि के लाभ। आपसे बातचीत कर रहे हैं कुसुमाकर दुबे। यह एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता है।
2: श्रोताओं नमस्कार। विशेष भेंट वार्ता कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं मृगेंद्र प्रसाद सिंह। आप एक सफल किसान हैं। आपने सघन बागवानी में और समेकित कृषि में अपना एक मुकाम बनाया है, एक पहचान बनाई है और आप किसान श्री भी हैं। 2007 में आपको ये पुरस्कार बिहार सरकार से मिला था। ये एक बड़ा सम्मान है और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में हैं। आपका हार्दिक स्वागत है मृगेंद्र जी।
3: जी।
2: और अपने श्रोताओं के लिए आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं समेकित कृषि के लाभ, इस विषय पर। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। जानते तो हैं ही कि आप बागवानी में भी बहुत नाम कमाए हुए हैं, लेकिन पहले बात कृषि करते हैं कि हमारे श्रोताओं को, ऐसे श्रोता जो किसान नहीं भी हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो किसान हैं, उनकी विशेष जानकारी के लिए बताइए समेकित कृषि है क्या।
3: जी, आज हम देख रहे हैं अक्सर जमीन बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे टुकड़े में होते जा रहा है। लोगों को अब जमीन का जो क्षेत्रफल है वो घटते जा रहा है।
2: जी जी।
3: तो इस घटते क्रम में
2: जी
3: समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है जिसमें कि आप एक इकाई क्षेत्र में कृषि के कई विधाओं को ऐसा सामंजस्य कीजिए कि एक का इनपुट दूसरे में चला जाए और उसका जो मेन उत्पादन है वह आपको लाभ मिल जाए।
2: अच्छा,
3: मतलब जैसे
2: जी, जी
3: जैसे कि गाय है, तो गाय को पाले हम सर
2: जी।
3: तो गाय को पाल के उससे दूध ले लिए, अब उसका अवशेष है गोबर, उसको हम इनपुट कहेंगे।
2: अच्छा।
3: उस गोबर को हम दे दिए बायोगैस में।
2: ठीक।
3: बायोगैस में अभी दीन बंधु बायोगैस प्लांट चला हुआ है सबसे नया
2: जी।
3: तो बायोगैस में अगर आप दे दिए तो घरेलू ऊर्जा के लिए उपला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, धुआं लगता है, आंख खराब होता है, हमारी पत्नी का आंख खराब होता है, बर्तन मंजना पड़ता है कालिक से
2: जी।
3: लेकिन गैस जब जलाइएगा तो एक तो सबसे पहले घरेलू ऊर्जा मिल गया
2: जी।
3: और वह आपके गाय के गोबर से मिल गया जिसको आप उपला बना के जलाते हैं। अब वह बायोगैस से भी जो सैलरी निकला उस सैलरी को बर्मी कंपोस्ट में डाल दिए उसी जगह, तो बर्मी कंपोस्ट मिल गया। तो रासायनिक खाद से कई एक गुना आपके जमीन को जो है सो बर्बाद होते जा रहा है।
2: हाँ,
3: दिन प्रतिदिन
2: हाँ
3: इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, जल वायुमंडल। और यह अगर बर्मी कंपोस्ट आप बना के खेत में डालते हैं तो आपके जमीन का मिट्टी का भी सेहत बदल गया। यानी कि इसी तरह से ऐसा उसमें आप कंपोनेंट यानी विधा स्थापित एक इकाई क्षेत्र में कीजिए जो एक का इनपुट दूसरे में जाए।
2: अच्छा,
3: यही है कंसेप्ट। और इससे फायदा क्या है कि एक छोटे से इकाई में अगर 2-4-5 विधा 7 विधा आप दे दिए तो मजे में 1-2 लाख रुपया मात्र आधा एकड़ 1 एकड़ के जमीन भूभाग में।
2: अच्छा,
3: आप लाभ कमा सकते हैं। एक तो फायदा यह है लाभ की, दूसरी फायदा है कि आप कई विधा को आप अपनाए एक ही इकाई क्षेत्र में, आपका रोजगार भी मिला और आप कई बातों से स्वावलंब भी हुए, खाद के मामले में बाजार पर निर्भर नहीं हुए।
2: जी जी जी।
3: हाँ, और एक छोटा सा पोखर बना लिए उसी जगह।
2: अच्छा,
3: मछली भी पाल लिए।
2: अच्छा,
3: और मुर्गा फार्म भी खोल दिए तो मुर्गा फार्म का जो बीट हुआ वो मछली खाएगा। हाँ, तो इसी तरह का कंसेप्ट है समेकित कृषि प्रणाली का कि एक इकाई क्षेत्र में कई विधाओं को आप छोटे से क्षेत्र में स्थापित करके और आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। आपका एटीएम भी वो कहलाएगा, कहे कि जब मन हुआ बकरी उसमें 10-20 का तालाब में पाल दिए। मांस के लिए सबसे वैरायटी जैसे है कि ब्लैक बंगाल है, तब मान लीजिए 20 गो बकरी आप अगर उसमें
2: जी जी
3: पाल लिए तो 20 बकरी से कम 40 गो बच्चा होगा।
2: अच्छा।
3: और 6 महीने के बाद अगर 5-6 हजार में ही एक बच्चा बिके तो 40-25-2 लाख-2.5 लाख
2: जी
3: ये आपको लाभ होगा। तो ये एक इकाई क्षेत्र में ऐसे ऐसे मुर्गी हुआ, बकरी हुआ, गाय हुआ, बर्मी कंपोस्ट हुआ, बायोगैस हुआ, मछली हुआ, तो ये अगर बना लेते हैं तो ये मुश्किल से 5 कट्ठा यानी 15-16 डिसमिल में आपका स्थापित हो जाएगा और यह 2-4 लाख रुपये का आमदनी का घर हो जाएगा। यही है समेकित कृषि प्रणाली।
2: तो
3: अगर बड़ा है, 1 एकड़ है 2 एकड़ है तो फिर उसमें कुछ आम लगा दीजिए, सघन बागवानी में कुछ अमरूद लगा दीजिए, कुछ अभी टिश्यू कल्चर का केला G9 है G9 केला लगा दीजिए, 1 नंबर का केला होता है।
2: ओ
3: माना करीब करीब 5-4 फीट का घौध होता है और उसमें G9 में टिश्यू कल्चर वाला में लाभ है कि ऊपर से नीचे तक का जो छिमड़ी है वह एक समान होगा, खाने में मीठा स्वादिष्ट। तक थोड़ा केला लगा दिए, थोड़ा चारा दे दिए जो हमारा गाय और बकरी खाएगी। यही है सर कृषि समेकित कृषि प्रणाली। इसको आज अगर हम किसान अपनावें तो हमारा आय का साधन, पर्यावरण जो बिगड़ रहा है वह संभल जाएगा और कुपोषण मिट जाएगा और हम स्वावलंब हो जाएंगे।
2: तो आपने ये तो किया हुआ है
3: जी। हाँ सर,
2: आप रहने वाले कहाँ के हैं?
3: जी हमारा मकान पड़ता है सर भागलपुर जिला के अंतर्गत एक साकुंड प्रखंड है, वहाँ एक अंबा बस्ती है, वहीं हम निवास करते हैं और वहीं हम अपना घर पर ही अभी ये बकरी और क्या कहते हैं मुर्गा और आपका गाय और बर्मी कंपोस्ट बायोगैस इतना अभी हम सेटलमेंट किए हैं। और खेत में तो वैसे 900 गाछ हमने अपना लगाया है सघन बागवानी के तहत, हर एक वैरायटी का आम है। अब अभी तो अब खाने लगे हैं, अब तो लगा के उसका स्वाद भी ले रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है
2: जी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई थी?
3: पढ़ाई सर हम BA Part 1 तक पढ़े, टेक्निकल में चले गए ITI किए मैशनिस्ट से, लेकिन अकाल हो गया 1967 में। और उस समय एक हमारे दिमाग में ढुक गया कि अगर बोरिंग करके हम 3 बीघा यानी 2 एकड़ जमीन भी में अगर खेती करते हैं तो उस समय मास्टर को दरमाहा 60 रुपया 40 रुपया मिलता था
2: जी।
3: तो हम समझे कि उससे तो कई गुना इसमें लाभ है। ये होम सिकनेस में ट्रेनिंग करते हुए नौकरी छोड़ दिए, इंटरव्यू में बरौनी में फर्टिलाइजर में रिफाइनरी में हम इंटरव्यू गेन कर गए थे, जॉब करते लेकिन उसको छोड़ दिए और खेती में तभी से आ गए। अब आज तो हिंदुस्तान के जितने भी रिसर्च सेंटर या खेती के सेंटर हैं करीब करीब सब घूम के हर जगह से प्रशिक्षण सम्मान पाए हैं और आज अपने मजे में खेती कर रहे हैं। सर एक उदाहरण सा बन गए हैं, एक छोटा सा किसान है लेकिन स्वावलंब से जीवन सीना तान के करते हैं, लोगों को बताते
2: हैं। आपके बाल बच्चे कितने हैं?
3: बाल बच्चे 2 लड़के हैं, 4 बच्ची थी, 2 लड़के का भी शादीशुदा बच्चा बुतरू अब हो गया है
2: जी, जी।
3: और 4 बच्चियों का भी शादी कर चुके हैं, मकान घर बना लिए हैं।
2: तो आपकी उम्र लगभग 60 साल हो गई होगी?
3: नहीं, 60 से ऊपर है, 65-66 वर्ष हो रहा है।
2: 66, तो आप एकदम स्वस्थ हैं और हट्टे कट्टे हैं?
3: जी हाँ, इसका भी राज है सर, अनाज कम खाते हैं।
2: अच्छा।
3: और तेल मसाला पर ध्यान कम देते हैं और ज्यादा फल
2: अपना उगाते हैं तो रासायनिक खाद डालते नहीं होंगे सब?
3: एकदम नहीं, जैविक खेती। अब तो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, खेत में डालते हैं, रासायनिक खाद का हम एक कणवा भी व्यवहार नहीं करते हैं सर खेत में।
2: और कीटनाशक का करते हैं कि नहीं?
3: कीटनाशक का भी नहीं करते हैं, गौमूत्र से। और बहुत से ऐसे है, पंचपर्णी है, 10 पर्णी है जो हम खुद अपने से बना लेते हैं, उसी का हम फसल पर स्प्रे करते हैं।
2: तो ये पंचपर्णी वगैरह से या गोमूत्र से क्या कीट मर जाता है सर? नाश हो जाता है?
3: एकदम मर जाता है। उसके बाद फिर एक ट्राइकोडर्मा बना है बैक्टीरिया से ही
2: जी,
3: उसका व्यवहार करते हैं फफूंद नसी रोग से बचने के लिए।
2: अच्छा, तो पूरी तरह से जैविक कृषि?
3: पूरी तरह से जैविक कृषि।
2: कुछ ये भी कर लेते होंगे, सब्जी उगा लेते होंगे?
3: सब्जी भी उगाते हैं सर।
2: तो वही जैविक वाली सब्जी? जैविक वाली भी होंगे?
3: आम भी जैविक है, उसमें भी रासायनिक खाद का हम कई बार आज तक नहीं किए हैं, जब से लगाए हैं तब से
2: जी। तब तो आप खुद भी स्वस्थ रह रहे हैं और दूसरों को स्वस्थ रखना चाहते हैं?
3: जी हाँ, हम यही, हमारी इच्छा ही यही है कि देश स्वस्थ हो, हम स्वस्थ रहें, समाज स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, पर्यावरण स्वस्थ रहे।
2: आम के साथ क्या होता है ना कि आम जैसे आपकी बागवानी भी है और आम बाहर बेचते हैं आप, बाजार में बेचते हैं, तो कार्बाइड डाल के लोग पकाते हैं उसको और उससे सेहत पर असर पड़ता है पूरा
3: जी।
2: इस बारे में आप किसानों को प्रेरणा नहीं देते हैं या उन लोगों को जो आपके बाग के आम ले जा रहे हैं कि भैया कार्बाइड मत डालो?
3: कार्बाइड असल है कि लाभ लेने के फेर में सर
2: जी,
3: बिजनेसमैन जो व्यापारी करते हैं वो इथरेल और ये कार्बेट ये सब का व्यवहार करके, अब इथरेल डाल देता है, रंग थोड़ा पीला हो गया।
2: अच्छा।
3: देखने में लावण्य लगा, उसको पैसा अधिक मिला। तो ये सब जो है सो ये किसान तो नहीं रोक सकता है, ये व्यापारी रोक सकता है।
2: अच्छा।
3: और व्यापारी जो है सो रोकेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा।
2: हाँ, तो अगर आम में मान लीजिए कार्बाइड नहीं डाला जाए तो भी पक जाएगा?
3: तो भी पक जाए, मैच्योर्ड आम अगर तोड़ा जाएगा तो स्वतः पकता है, गाछ से भी गिर जाता है। मैच्योर्ड आम तोड़ने के बाद तो 2 दिन से 3 दिन में घर में रख देने के बाद भी वो पक जाएगा सर, और उसका स्वाद भी बढ़िया होगा, पेट में गैस नहीं बनाएगा।
2: अच्छा, आप खेती भी करते हैं और इस समेकित कृषि के मतलब अंतर्गत
3: जी
2: आपके खेत पे कुछ कुछ फसल भी बहुत लगाते होंगे?
3: जी हाँ, गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं, मसूर लगाते हैं, चना लगाते हैं, मूंग है अभी खेत में
2: जी,
3: और पहले ऊख भी लगाते थे लेकिन मिल के कारण ऊख को
2: जी
3: हटा दिए।
2: तो ये जो खेती करते हैं तो उसमें भी जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं?
3: जैविक खाद हर एक जगह सर, हमको अपना वर्मी कंपोस्ट है, हम अपना व्यवहार करके वर्मी कंपोस्ट से 25-50 हज़ार रुपया साल में यर्न भी कर लेते हैं
2: जी। तो आप दूसरे किसानों को ट्रेनिंग भी देते होंगे?
3: जी हाँ, समूचे जिला में सर मास्टर ट्रेनर के रूप में एग्रीकल्चर विभाग से आत्मा के विभाग आत्मा भागलपुर की ओर से या आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ हम साधन सेवी के रूप मास्टर ट्रेनर के रूप में पाठशाला में जाते हैं। और एक आपके सेंट्रल के हैं ये दृष्टि विभाग है
2: जी, जी।
3: उनके उस विभाग से पर साल हम यहाँ भी ट्रेनिंग दिए और तमिलनाडु और उड़ीसा में जाके भी एक एक महीना जाके ट्रेनिंग दिए, जो उन लोगों का पाठशाला चल रहा था।
2: तो तमिलनाडु और उड़ीसा के किसानों को जब आप सिखाते हैं तो वहां तो भाषा की समस्या आती है,
3: वहां दुभाषिया था सर। हाँ। और वो हम जो बोलते थे वो किसानों को समझाते जाते, लेकिन प्रैक्टिकल तो जो हम करते थे वो समझता था।
2: हाँ।
3: और सब बहुत बढ़िया खुश, बहुत बढ़िया से वो लोग समझते थे और बड़ा आदर सत्कार किए कि नहीं हमारा ट्रेनिंग बहुत सफल रहा
2: जी।

0: जी हाँ,
1: अच्छा
0: वो तरीका सफल तरीका है जिसको मैंने जाके वहाँ देखा।
1: जी, तो आप देश के बहुत सारे अंचल में गए, एक बात बताइए कि भागलपुर का आम विशेष करके जरदालू दूसरी जगहों पर बिकता है कि नहीं?
0: जी हाँ, इसका डिमांड तो हर जगह हो गया कि यहाँ की मिट्टी का एक यह असर है कि जो जरदालू में फ्लेवर और स्वाद और रस आपके खास करके भागलपुर जिला के में भी सुल्तानगंज, शाहकुंड और नाथनगर का लोग जाने दुनिया भर में, इसके लिए प्रयासरत हम लोग हैं।
1: तो चलिए आगे आप सफल हों, आप आए यहाँ और आपने श्रोताओं के लिए इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: समेकित कृषि के लाभ। मृगेंद्र प्रसाद सिंह से की गई ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता आप सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रहे थे कुसुमाकर दुबे। विशेष भेंट वार्ता का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: का बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथिन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथिन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथिन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
1: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
5: और इस गीत के बाद
6: छाया गीत।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद ने पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध और तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कम बारिश होने से प्रभावित बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 178 जिलों को की हो रही है विशेष निगरानी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने कल गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध और तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विस्तार और विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं कैबिनेट ने टाउनशिप के सुनियोजित विकास के लिए सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चयन को स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद ने अगले 5 वर्षों में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत सरकारी और सरकारी नियंत्रण वाले भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के मरम्मत और नए बेली ब्रिज के निर्माण के लिए 126 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर किए। कैबिनेट ने पटना से मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और गया तक प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने की स्वीकृति दी है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को नामित किया गया है। इस परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा। मंत्री परिषद ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के विस्तार के लिए दानापुर के भुसौला में 26.76 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। साथ ही कैबिनेट ने मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर जिले में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 5-5 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिपरिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक परियोजना और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 154 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस पर 79 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत आएगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस पहल से आधुनिक मत्स्य अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अंकेक्षण के अंगीकरण को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा 7 निश्चय के तहत

0: संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनका मंत्रालय कम बारिश के कारण उत्पन्न परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि अल नीनो के प्रभाव से कम बारिश वाले बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 178 जिलों की निगरानी की जा रही है। श्री सिंह ने बताया कि सरकार किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: मित्रों, अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है उस पर लगातार हमारी नजर है और कल तक 24% बारिश कम हुई है और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे उनकी संख्या घटकर 178 रह गई है। कुछ जिलों में अच्छी बारिश होने के कारण स्थितियां बदली है। हम 178 जिलों पर अभी नजर रखे हुए हैं और ये जिले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में है।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। श्री तिवारी ने गोपालगंज में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण का कार्यक्रम भी जल्द जारी किया जाएगा।
2: टीचर ट्रांसफर नीति लागू है, विभाग में उसको लेकर के सारी प्रक्रियाएं अब अंतिम दौर में और अगले कुछ दिनों में ही शेड्यूल जारी हो जाएगा और ये स्थानांतरण अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से अपारदर्शी ढंग से और ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही हो जाए, इसके लिए हमने कहा है और एक शेड्यूल जारी होगा, उसके आधार पर शिक्षक अपना आवेदन करेंगे और ट्रांसफर पाएंगे कि 25 जुलाई तक हम TRE4 की अधियाचना BPSC को भेज देंगे।
0: शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI पर वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। ये राज्य आकांक्षी वन श्रेणी में बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ ने इस सूची में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालयों में 927 पदों पर जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत अधिसूचना और पदवार विवरण शीघ्र जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि नई टोल नीति के तहत स्टेट हाईवे पर सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले पर पूरी बात रखती है। उन्होंने बताया कि अगले 2 महीने के अंदर उन पथों को चिन्हित कर लिया जाएगा जिस पर टोल टैक्स लगेगा।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल पीले नंबर प्लेट यानी व्यावसायिक व्हीकल पर ही टैक्स लगेंगे और जितने भी सफेद नंबर प्लेट हैं यानी नॉन कमर्शियल उस पर नहीं लगेंगे और आने वाला 2 महीना में सड़कें चिन्हित भी हो जाएंगी कि कहां टोल लगना है।
0: भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर निरीक्षण को लेकर आज और कल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने सेतु के बेली ब्रिज के स्थान पर किए जा रहे अस्थायी पुनर्स्थापना कार्य के मद्देनजर यह फैसला किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IIT पटना की टीम पुल की तकनीकी जांच और निरीक्षण करेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में

0: अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
0: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, सुपौल और पूर्णिया जिले में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक किशनगंज के चरघरिया में 178.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
3: राज्य के गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सारण एवं सिवान जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर, मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि अब राजस्व विभाग के सभी काम पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए दस्तावेजों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी।
4: अब जो भी कार्य संपादित होगा वो ऑनलाइन होगा, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ही हेरा फेरी होने की संभावना रहती थी, इसलिए हम लोगों ने सभी तरह के ऑफलाइन पर रोक लगा दिया। कुछ जिला में गलत सिग्नेचर करके कुछ पेपर को उपयोग किया जा रहा, इसलिए अब ऑनलाइन और डिजिटल सिग्नेचर, सारे काम ऑनलाइन राजस्व विभाग के होंगे।
2: जनता दल यूनाइटेड ने बिहार प्रदेश संगठन की नई टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 74 सचिव बनाए गए हैं। विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को एक बार फिर पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित की है। आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार से मृतक के परिजन को अंतरिम राहत के रूप में मुआवजा देने पर विचार करने को भी कहा है। हालांकि मुआवजे की राशि तय नहीं की गई है और इसे राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम राहत का भुगतान बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा और इससे मामले की जांच या अंतिम निर्णय प्रभावित नहीं होगा। पूर्वी चंपारण जिले के भोपतपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने जाली भारतीय मुद्रा के कारोबार से जुड़े रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को 1,26,00,000 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 25,00,000 रुपए के ट्वाई नोट, 13,00,000 रुपए नकद, सोने के 38 बिस्किट, हथियार, गोलियां और एक वाहन बरामद किए गए हैं। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है।

0: दरभंगा जिले के मनिगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 8 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। मधुबनी जिले के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने अभियान चलाकर 60 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति से हथियार के बल पर 2,55,000 रुपए लूट लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने पाटलिपुत्र हरिहरनाथपुर मगध और तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कम बारिश से प्रभावित बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 178 जिलों की हो रही है विशेष निगरानी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने कल गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्वी चंपारण जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आलोक कुमार का है और इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार।
1: भारतीय नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरपुर थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक यूक्रेनी महिला नागरिक को गिरफ्तार किया है। महिला पर वैध यात्रा और आव्रजन दस्तावेजों के बिना भारत में रहने तथा हरपुर सीमा के रास्ते अवैध रूप से नेपाल जाने का प्रयास करने का आरोप है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान करीब 2000 बैग उर्वरक जब्त किए गए हैं तथा नकली डीएपी खाद बनाने के गोरख धंधे का भी खुलासा हुआ। मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। मोतिहारी में जिला उर्दू भाषा कोषांग की मासिक समीक्षात्मक बैठक प्रभारी पदाधिकारी सह सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण मोहम्मद साजिद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। सभी उर्दू कर्मियों को समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, नियमित विद्यालय भ्रमण करने, सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में अनुवाद कर सूचना पट पर प्रदर्शित करने तथा उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार को और प्रभावी

0: बनाने के निर्देश दिए गए। जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डा मैदान से जल्द छोटे विमानों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत मोतिहारी को क्षेत्रीय हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। विशेषज्ञों की टीम हवाई अड्डा मैदान का निरीक्षण कर चुकी है। तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद लगभग 25 एकड़ भूमि पर हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।
1: और अब प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल, इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: वैशाली जिले में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर घर खाद्यान्न वितरण सेवा शुरू की गई है। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने हाजीपुर प्रखंड में इस पायलट परियोजना का शुभारंभ करते हुए पात्र लाभुकों को उनके घर पहुंचकर खाद्यान्न उपलब्ध कराया। जिला प्रशासन के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य बुजुर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उनके घर तक पहुँचाना है। जिले में 14 अगस्त तक चलने वाले टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों को समन्वित प्रयास से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील आबादी की 100% स्क्रीनिंग टीबी के लक्षण वाले लोगों की समय पर जांच तथा निक्षय मित्रों के माध्यम से मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। वैशाली जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 1 से 24 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 7 से 21 जुलाई तक विभिन्न प्रखंडों में मेगा आउटरीच शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि योजना से जुड़े लंबित ऋण आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देशन में गैस एजेंसियों के स्टॉक आपूर्ति और लंबित बुकिंग की नियमित समीक्षा की जा रही है। साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय है। नमामि गंगे मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को गंगा संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, जन जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की नियमित समीक्षा और पर जोर दिया। भारत जी रामजी योजना के प्रभावी पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर भी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार, स्मार्ट जॉब कार्ड, बायोमेट्रिक उपस्थिति तथा पंचायतों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। हाजीपुर में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सम्मान में सौर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सबसे अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वर्ष आयु के 31 पूर्व सैनिकों और नारियों को वार्षिक पूरा राशि प्रदान की गई। वहीं जिले के विभिन्न पंचायतों में पंचायत दिवस

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:52 हो चुके हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज इस कार्यक्रम में गायक कलाकार हैं उदय नारायण राय। आरंभ में इनके स्वर में आपको सुनवाते हैं सूरदास की ये भक्ति रचना।

गुरु नानक देव की इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी अब यहीं संपन्न होता है। आज गायक कलाकार थे उदय नारायण राय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। पहला गाना हमने फिल्म बाजी से लिया है। गीता दत्त की आवाज़ है, गीत के बोल साहिर लुधियानवी के, और संगीत तैयार किया है सचिन देववर्मन ने।

लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार के गाया फिल्म आराधना का एक गीत आपको सुनवाते हैं। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है सचिन देव बर्मन ने।

लता मंगेशकर को ही अब आइए सुनते हैं फिल्म खिलौना में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोहम्मद अजीज एवं आशा भोसले को अब आइए सुनते हैं फिल्म मुद्दत में। गीतकार इंदिवर, संगीतकार हैं बाप्पी लाहड़ी।

लता मंगेशकर एवं मुकेश का गाया फिल्म मेरे हमसफर का शीर्षक गीत आपको सुनवाते हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर को अब आइए सुनते हैं फिल्म आरती में। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं रोशन। यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीकंधा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इवनिंग न्यूज और फिर उर्दू खबरें। इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: रिपोर्ट।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
3: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
4: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
0: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषि जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
5: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
6: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
2: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
2: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्तेस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को

0: लिंडा नोस्कोवा खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज शाम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुंच गए हैं। मकानात, बेघर अफराद और शहरों की ऑस्ट्रेलिया की वजीर क्लेयर ओनील ने उनका वहां पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की अहम बुनियाद है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: आज मेलबोर्न की पूरी फजा जोशो खरोश से भर गई जब ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय बिरादरी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में जमा हुई। इस पुरवकार तकरीब में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें मौसीकी और रक्स के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया। सकाफती प्रोग्राम के आगाज से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय बिरादरी के अफराद से मुख्तसर मुलाकात की और उनके साथ गुफ्तगु भी की। तकरीब का आगाज एक मुनफरिद और अलामती मौसीकी से हुआ। इसके बाद मेलबोर्न में मुकीम मारूफ कथक डांसर संचिता एब्रोल ने दिलकश कथक रक्स पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब का अख्ताम ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा के 10 रुकनी ग्रुप की शानदार मौसीकी से हुआ, जिसने एआर रहमान के मारूफ नगमे माँ तुझे सलाम को शानदार अंदाज में पेश किया, जिससे वहां मौजूद तमाम लोग जज्बात से सरशार हो गए। मेलबोर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
0: अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत करेंगे। वो भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओस के फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारियों के इज्तिमा से खिताब करेंगे। इससे कबल दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। दोनों रहनुमा नवी सदी के मंदिर गए, जहां वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के इहाते में एक मुश्तरका प्रेस बयान में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो ने मंदिर इहाते के तहफ्फुज़ और अहिया में भारत की मदद के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने दौरे को इंतहाई रूहानी और यादगार तजुर्बा करार दिया।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: भारत और रूस ने आज अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा ब्रिक्स ईएजी और शंघाई ताउन तंजीम समेत मुख्तलिफ कसीर जहती फोरम्स पर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक भारत रूस मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग नई दिल्ली में मुनाकिद हुई। मीटिंग की मुश्तरका सदारत वज़ारत ख़ारिजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज और रूस के नायब वजीर ख़ारिजा दिमित्री ल्यूबिंस्की ने की। दोनों ममालिक ने हर किस्म की दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों, खासतौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने दहशतगर्दों, दहशतगर्द तंजीमों, उनके दरपर्दा ग्रुपों और नेटवर्क्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर दिया। सरफेन ने इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी की सूरत हाल पर अपने ख्यालात का तबादला किया और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और दहशतगर्दी के मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए बाहमी तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कुवैत के वली अहद शेख सबह अल खालिद अल हम्द अस सबह से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वली अहद को नेक तमन्नाएं पहुंचाईं। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और कुवैत के दरमियान दो तरफा तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए वली अहद के अज़्म को सराहा। उन्होंने खलीजी खित्ते के ताज़ा हालात वाक़ियात से आगाह करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे DRDO ने आज ओडिशा के चांदीपुर में वाके मरबूत आजमाइशी रेंज से तवील फासले के गाइडेड रॉकेट पिनाका का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा कि रॉकेट का कामयाब तजुर्बा सारिफ की जानिब से मुकर्रर करदा 60 किलोमीटर की कम अज कम रेंज पर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब आजमाइश पर DRDO, भारतीय फौज और दिफाई पैदावारी सनद को मुबारकबाद दी। उन्होंने इसे घरेलू सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड रॉकेटों के डिजाइन और तैयारी की सलाहियत में एक अहम संग मील करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हालिया दिनों में मुल्क के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके बायस बारिश की कमी वाले अजला की तादाद 262 से कम होकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में एलनीनो के मुमकिन असरात पर मुनक़िदा आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि जून में 33% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई थी, ताहम जुलाई में मानसून की सूरत हाल बेहतर हुई है और मानसून की मजमू बारिश में कमी घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जुलाई में मजीद बारिश होगी, जिससे खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि अब तक 350 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर खरीफ फसल की बुआई मुकम्मल हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 91 लाख हेक्टेयर कम है। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों को मशवरा दिया कि वो बारिश में ताखीर के असरात कम करने के लिए कम मुद्दत में तैयार होने वाली और कम पानी वाली फसलों जैसे मकई, बाजरा और मूंग की काश्त करें। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने शदीद बारिश, सैलाब जैसी सूरत हाल और चट्टानों के टुकड़े गिरने से मुतासिर मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला से आज बातचीत की और उन्हें मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जनाब शाह ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और केरलम के वजीर आला VD सतीशन से बात की। इस दौरान भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के वसी और मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि शिमाली बहिर अरब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बकाया हिस्सों की जानिब आइंदा 2 दिन से 3 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने की खातिर मौसम साजगार है। IMD ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आइंदा 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली NCR में आज कुछ बारिश हुई, जिससे गर्मी और हब्स के बाद लोगों को राहत मिली। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन के मरहले को कामयाब के साथ मुकम्मल कर लिया करने पर कौमी एरोस्पेस लेबोरेटरीज को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब नायडू ने कहा कि सारस वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन से मुताबकत रखते हुए अंदरूनी मुल्क डिजाइन करदा मुल्क का पहला हल्का ट्रांसपोर्ट तैयारा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये घरेलू सतह पर तैयारे बनाने के इस संग मील से उड़ान नजरिए को मजीद तकवियत हासिल होगी, जिसका मकसद मेड इन इंडिया तैयारों में दूर दराज और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों को मजबूत करना है। आज शाम कौमी राजधानी के रोहिणी सेक्टर 16 के इलाके में एक इमारत ढह गई। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक मलबे के नीचे 4 से 5 अफराद के दबे होने का खदशा है और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। NDRF की 2 टीमें भी बचाव और राहत कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने कहा है कि आज सुपहर 4:20 पर उन्हें इस हादसे की एक कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद जाय हादसे पर 6 गाड़ियां रवाना की गईं। इब्तदाई मालूम के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत के कुछ फ्लैट्स में तामीर नौ का काम जारी था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए मुंजमित कर दिए।

0: abnormal warming of Pacific Sea off the coast of Peru. यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का. और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है. तो पूरे पैटर्न को. और दूसरी बात है ये एक तरह का टेली कनेक्शन है. टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत और वहां की प्रेशर को टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है. तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है. पहले भी आ चुके हैं और जब जब भी आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को मतलब ये मौसम को प्रभावित कर देता है. क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलनीनो था मानसून खराब हुआ और ऐसे साल भी हैं कि एलनीनो था और मानसून फिर भी ठीक था. और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलनीनो होने वाला है. हालांकि अभी जो है जितने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए. तो ऐसा होता तो ये सुपर एलनीनो होगा और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे. और इस सबको मौसम विभाग ने एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती है, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा. और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है. यानी कि 10% की कुछ कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया. इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा हालांकि केरल में 1 तारीख को जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया. हाँ मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा.
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ देन रबी. खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है. हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है और वो इसलिए जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र है वो भी खरीफ में कवर होते हैं. वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है. और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा. ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है. और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है, मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा. तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई. और उसका नतीजा ये है कि देखिए जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया. अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है. तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो. अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो स्टोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है. और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है. तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है इसकी वजह से. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा. एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए कि आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है. तो ये इस तरह की

0: पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है। तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब बारिश नहीं होगी, कम होगी, तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो है जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना, वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमोसफेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पर भी वार्मिंग होगी, तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटीजेंसी प्लान की, आप भावेश जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि कंट्री 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयारी है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार है। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप भी ऐसी हो जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के बाद पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पैसे सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेराइटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंगली है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है
1: जी,
2: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है, क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी।
2: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब बताया कि भाई एलिनो है, इस बार मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो है बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पे क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहां कभी फसल नहीं खराब होती, आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए, क्रॉप को जैसे मान ली 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी।
2: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, पर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
2: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, पर मेरा ही मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं। इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
0: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें उन्होंने डेवलप की है, बट इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वो इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करे कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है। उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां

0: तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है हमारा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज है या पॉन्ड्स है या लेक्स है उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स है के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पे कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ ये है कि पिछले कुछ बरसों में कई चीजें हुई है, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी और फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं ही नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
0: बिल्कुल, इसलिए हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है, क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना है, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है, पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश की बात करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा, तो वो एक बड़ी अच्छी बात हो। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है, और आपने कहा फोन उससे भी मिलता है, और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में मिला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर, जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है ये मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा, शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों को तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो, टीवी, अखबार भी है,
2: और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है और ये कियोस्क भी है। और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज शुद्ध मानता हूं वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था। और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई, मगर मैं अब ये कह रहा हूं ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए। और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है। यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में। तो उनको पहले से सूचित करना, भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए। या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में। आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजर देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है। और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहां से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहां से केमिकल मिलेंगी, कहां से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा। और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
0: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हो, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है। और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून का क्या होता है, कि मानसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है, कि उसका जो हमारा मानसून का पीरियड है जून टू सेप्टेम्बर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहां जरूरत है वहां उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं, और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे

0: अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद। धन्यवाद।
0: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। चर्चा का विषय है।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

0: और आज की फिल्म है
1: धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले।
0: दरअसल सुनना सुनाना तो हमें आपको है ही, बस थोड़े से आपके लिए क्लू छोड़ जाते हैं ताकि आप भी थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें और पहचानें कि आज के कार्यक्रम के लिए हमने किस फिल्म का चयन किया है।
1: धीरे

सन 1972 में बनी फिल्म गोरा और काला, जी हाँ यही है उस फिल्म का नाम जिसके गाने आज हम आपको सुनवा रहे हैं और जिसकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। सन 1972 में आई इस फिल्म को पहली बार प्रदर्शित किया गया 22 दिसंबर सन 1972 को। इसके निर्देश निर्माता थे राजकुमार कोहली। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, रेखा, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी और जगदीप को कास्ट किया गया था। फिल्म का संगीत तैयारी करने की जो भूमिका थी वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दिया गया था। इस फिल्म के विषय में कही जाती है कि यह 1971 की तमिल फिल्म नरुम नेरुप्पम की रीमेक है। इस फिल्म के निर्देशक थे नरेश कुमार। सुनते ही इस फिल्म का अगला गाना।

फिल्म के गीत लिखने की जिम्मेवारी डाली गई आनंद बख्शी पे। इस तरह से संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी की जोड़ी ने कुल मिलाकर मुकेश, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और उषा मंगेशकर को चयनित किया इस फिल्म के गीत गाने के लिए। और फिल्म में एक से बढ़कर एक ऐसे गीत तैयार किए गए जो सुनने वालों के लिए कर्णप्रिय थे। गोरा और काला जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि फिल्म एक ऐसी पृष्ठभूमि पर आधारित थी जहां एक तरफ गोरा था और एक तरफ था काला। लेकिन फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि दोनों एक ही माता पिता के दो संतान थे, जिसमें एक का रंग था गोरा और दूसरे का रंग बाद में किसी तरीके से काला हो गया था। कहानी आपको बाद में सुनाएंगे, अभी सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गीत।

कहानी को अगर संक्षेप में सुना जाए तो बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले तो ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। कल्पना पर आधारित इस कहानी में भारत के एक सुदूर राज्य का कोई एक सम्राट है जो तब बहुत खुश होती है जब उसकी पत्नी जो है जुड़वा बेटों को जन्म देता है। लेकिन इससे पहले कि वह परिवार पूरा पूरा खुश हो पाता और अपनी खुशी की जश्न में मना पाता, अपनी खुशी की घोषणा कर पाता, जोरावर जो मदनपुरी जिसकी भूमिका में थे और शमशेर जिसकी भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई थी ने महल पर कब्जा कर लिया, वह उसके दुश्मन होते हैं और उसे तुरंत मार डालते हैं। उसके वफादार कर्मचारी जो पृथ्वी होते हैं और जिसकी भूमिका प्रेमनाथ निभाते हैं और दिलावर बच्चों के साथ भाग जाते हैं। एक बेटा बाद में रक्त विकार का शिकार हो जाता है जिससे उसकी त्वचा का रंग खराब हो जाता है, उसका बायां हाथ भी लकवाग्रस्त हो जाता है और उसे एक डाकू के पास छोड़ दिया जाता है। दूसरे पुत्र का पालन पोषण सेना प्रमुख पृथ्वी सिंह ने किया है जबकि सम्राज्ञी अभी स्वयं बंदी है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हम भी आपको इस फिल्म के गीतों से धीरे धीरे रूबरू कराते हैं।

वर्षों बाद जो दोनों बच्चे होते हैं वे धीरे धीरे बड़े होते हैं और जिसकी मुख्य भूमिका राजेंद्र कुमार ने निभाई है। डकैतों वाले बेटे को काली सिंह कहा जाता है जबकि दूसरे को कर्ण कहा जाता है। जुड़वा बच्चों को धीरे धीरे एक दूसरे के विषय में, एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में पता चल जाता है। वे फिर से मिलते हैं और अपनी माँ को मुक्त कराते हैं जो पहले से ही कैद में होती है। लेकिन एक चीज जो जुड़वा भाइयों के बीच दरार पैदा करती है वह दरार की वजह है खूबसूरत राजकुमारी अनुराधा, जिसकी भूमिका में थी हेमा मालिनी। दोनों भाई उससे प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें अपने पसंद के बारे में बता पाए, शमशेर सिंह ने उसका यानी राजकुमारी का अपहरण कर लिया। वह अब नए शासक के रूप में पदभार संभालता है। भाइयों को अब शमशेर से लड़ना होगा और फिर फैसला करना होगा कि कौन अनुराधा से शादी करेगा।

आपको फिल्म गोरा और काला की कहानी कैसी लगी, आप हमें जरूर पत्र लिखकर अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। हम आपको इस फिल्म के आखिरी गीत के साथ छोड़े जाते हैं।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम पुराने फिल्मों से। पहला गाना हमने फिल्म गंगा जमुना से लिया है। मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है। गीत के बोल शकील बदायूनी ने लिखे हैं और संगीत तैयार किया है नौशाद ने।

0: थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन घाक दिनक दिन ताक तिनक तिन घा।
1: आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफ़ी को सुनिए फिल्म नाच उठा संसार में। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोहम्मद रफ़ी एवं आशा भोसले को अब आइए सुनते हैं फिल्म मेरे सनम में। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसके लिए संगीत तैयार किया है ओम प्रकाश नय्यर ने।

और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म नैना का एक गीत। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, आवाज श्रद्धा पंडित की है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से अब यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे पहले हिंदी में, फिर 11:05 पर अंग्रेजी में। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया

वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्टा कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्टा कोस्त्यूक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।